0: श्रोताओं, हम बोल रहे हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र से 102.8 FM और न्यूज ऑन AIR इस लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप पर भी। अब से बस कुछ ही पलों बाद यानी ठीक सुबह 6 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और RKBK के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई

रोकी जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्प्टन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यो और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, भर्तृहरि के नीति शतकम के अनुसार धन की केवल तीन ही गति होती है, दान, भोग और नाश। जो मनुष्य धन को परोपकार में नहीं लगाते या स्वयं नहीं भोगते, उनके धन की केवल तीसरी गति होती है, अर्थात धन का विनाश हो जाता है। तात्पर्य ये कि हमें धन का सदुपयोग करना चाहिए। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर में सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरितमानस गान भाग 247। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आज इस श्रृंखला की 12वीं कड़ी सुनिएगा। कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोणु मजुमदार, संवादिका ममता सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत 7:30 से सुनिएगा हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 से त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 से चित्रलोक। सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राजेंद्र कुमार पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

श्रोताओं, आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 से आपको सुनवाएंगे आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राजेंद्र कुमार पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 बजे से पिटारा के अंतर्गत सुनेगा बॉम्बे टॉकीज। इसके अंतर्गत लेखिका निर्देशिका सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से विविधा के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे सेवा।

निवृत्त केंद्र निदेशक, गीतकार और शायर राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। दोपहर 12:05 से यादों की महफिल, दोपहर 1 से सुरीला सफर, दोपहर 2 से आपको सुनाएंगे त्रिवेणी, 2:30 से आपको सुनवाएंगे सदाबहार नगमे। दोपहर 3 से मन चाहे गीत, 3:30 से आपको सुनवाएंगे नाट्य तरंग, इसके अंतर्गत सुनिएगा नाटक सूखा पेड़, लेखन लोकेंद्र शर्मा का, निर्देशन लोकेंद्र शर्मा का। शाम 4 से पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, इसके अंतर्गत रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का 4th भाग सुनिएगा, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। शाम 5 से छाया गीत का पुनर्प्रसारण, 5:30 से आपको सुनवाएंगे तराने नए पुराने। झरोखा शाम में आप सुनते हैं 6:30 से, 6:35 से संध्या रंजन।

शाम 7 बजे से फौजी साथियों का कार्यक्रम विशेष जयमाला सुनिएगा। इसके अंतर्गत सैनिकों की शौर्य गाथा, इसके अंतर्गत महावीर चक्र से सम्मानित शिपॉय इमलियाकुम एओ की शौर्य गाथा सुनिएगा। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज में अकॉर्डियन वादन रेवा चंद्र शर्मा का। रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत हास्य नाटिका कॉलोनी कल्याण मंडल, लेखन MP लेले, निर्देशन स्वतंत्र कुमार ओझा का। चित्रलोक कार्यक्रम रात 8:15 से। रात 9 बजे से आपके लिए रात्रि 9:30 से आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक बिमल रॉय पर, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। रात 10 बजे से छाया गीत आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। और रात 10:30 से सुनेगा ढलती जाए रात। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंदर कार्यक्रम विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान भाग 247।

अगस्त्य मुनि के एक परम ज्ञानी शिष्य थे सुतीक्ष्ण। उन्हें ये विश्वास नहीं होता था कि उन्हें भक्ति, वैराग्य अथवा ज्ञान कुछ भी प्राप्त है। चित्रकूट से पंचवटी जाते हुए श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण के दर्शन जब मुनि सुतीक्ष्ण को प्राप्त हुए तो अपने आश्रम में ले आकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने आराध्य की पूजा अर्चना की। फिर भी उन्हें संतोष नहीं होता था कि वे किस प्रकार प्रभु की विनती करें। नील कमल के समान श्री राम का शरीर है, जिस पर मुनियों जैसा वेश और सिर पर जटाओं का मुकुट सुशोभित है। सुतीक्ष्ण की कामना है कि मोहरूपी वन को भस्म करने वाली आग तथा संत रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य के समान प्रभु सदा मुनिगण की रक्षा करें। संशय रूपी सूर्य को ग्रसने के लिए प्रभु गरुड़ हैं। अत्यंत कठोर तर्क से उपजने वाले विषाद का वो परिष्कार करते हैं। यद्यपि उनका निर्मल, व्यापक तथा अविनाशी रूप भक्तों के हृदय में सदा निवास करता है, फिर भी मुनि सुतीक्ष्ण प्रभु के वनवासी रूप को ही अपने हृदय में बसाना चाहते हैं।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान भाग 247।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 12वीं और अंतिम कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। पंडित जी आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: पंडित जी। ये जो बांसुरी दिख रही है, पांच तरह की बांसुरी है इसमें, तो ये जो एक तो शंख बांसुरी है
2: जी,
1: और एक सबसे छोटी वाली बांसुरी को क्या कहेंगे?
2: ये हाई पार सप्तक।
1: गजब,
2: यहाँ तक चला गया। इसके ऊपर भी मैं जा सकता हूँ।
1: हाँ।
2: थोड़ी सी शार्प हो जाएगी।
1: अरे गजब।
2: मैं पीछे।
1: हाँ।
2: सिक्किम का जो ये है
1: जी, बिल्कुल।

0: जी क्या बात है, बढ़िया। और उससे जो बड़ी वाली है उस वो कौन सी?
1: ये पन्ना बाबू की बनाई हुई मेन क्लासिकल सोलो इसमें बसता
0: जी।
1: पन्ना बाबू के बांसुरी जो बनाई है ये, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं थोड़ा सा हंस ध्वनि आपको सुना रहा
0: हूं। जी जी सुना।
1: और बंदिश मेरे गुरुजी की है
0: जी। प्लीज
1: कल्पेश भाई आप शुरुआत करिए।

0: राघन सिद्ध ध्वनि पे ये बांसुरी की तान थी, अद्भुत थी, मोहित कर दिया, मंत्रमुग्ध कर दिया आपने। तो हम आखिर में विदा के रूप में विदा नहीं करेंगे, बल्कि आप इस कड़ी को, इस श्रृंखला की विदा में आमद करेंगे कि आप फिर आते रहिए।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे शास्त्रीय संगीत में एक परंपरा है, राग भैरवी से अंत करते हैं
0: जी।
1: आज की कड़ी आखिरी कड़ी है, इसी उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि फिर आना है
0: जी।
1: तो भैरवी में एक जगजीत सिंह जी के भी बहुत सारे सुपरहिट गजलों में मैंने बजाया, उस स्टेज में गाते थे फयाज खान साहब को याद करके
0: जी।

अद्भुत तान छेड़ी आपने पंडित जी, और साथ में जो गायन का सुर भी साधा, बड़ा ही मोहक था, बहुत अच्छा लगा। तीन ताल में निबद्ध ये बंदिश थी, अजीत जी ने बड़ी खूबसूरती से इसे अंजाम दिया, और आज ये इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी है। अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस कड़ी को, इस श्रृंखला को खत्म ना होने दें, और कड़ियाँ इसमें जोड़ते जाएँ और मालाएँ पिरोते जाएँ, लेकिन समय की बाध्यता है। तो आज इस आखिरी कड़ी में हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, सबको धन्यवाद कहते हैं। अजीत पाठक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े मनोयोग से आप

0: तबला संगत की, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद, नमस्कार। कल्पेश जी, आपने बहुत ही मोहक ढंग से बांसुरी पर संगत कर रहे थे पंडित जी के साथ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: रोनू दादा, आज इस श्रृंखला में जितनी कड़ियां पिरोई गई हैं, इन कड़ियों में जो बांसुरी की तान आपने छेड़ी है, जो जानकारियां दी हैं, इसके लिए मेरे पास फिलहाल शब्द नहीं है। बस इतना श्रोताओं को बता दें कि ये अद्भुत श्रृंखला है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका ममता जी, हम लोग भी यहाँ पर आकर बहुत प्रसन्न हुए और लगा ही नहीं कि कैसे पूरा दिन बीत गया। और हम चाहते हैं कि विविध भारती के स्टूडियो में बार बार आएं और इसी तरीके से माँ सरस्वती की सेवा करें।
0: जी, हम सबका सौभाग्य है, पूरे विविध भारती परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, नमस्कार,
2: धन्यवाद।
3: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 12वीं और अंतिम कड़ी। इस श्रृंखला के लिए आमंत्रित कलाकार थे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की ममता सिंह ने। आपको बता दें, बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, आपको ये श्रृंखला कैसी लगी? हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से अपने उद्गार हम तक अवश्य पहुंचाएं। आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharti.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
2: भूले बिसरे गीत इस प्रोग्राम के प्रायोजक है विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में। दो बीघा जमीन फिल्म के गाने के साथ शैलेंद्र के बोल और तर्ज बनाई है सलिल चौधरी ने।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए तलत महमूद की आवाज में सुजाता फिल्म का गाना। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं SD बर्मन।
6: mm-hmm.

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम जारी रहेगा सुबह 7:20 से, लेकिन उससे पहले यानी ठीक 7:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के पुणे केंद्र से प्रसारित होने वाले मराठी समाचार। प्रतीक्षा कीजिए।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में आया तूफान। इस फिल्म का गाना असद भोपाली हैं, गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब आज के भोले पिसे गीत कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में दारा सिंह फिल्म का ये गाना।

0: भूले बिसरे गीत इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में सूरज फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में गूंज उठी शहनाई फिल्म का गाना। इसे लिखा है भरत व्यास ने और संगीत से संवारा है वसंत देसाई ने।

लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ससुराल फिल्म का गाना, बोल हैं शैलेंद्र के और तर्ज शंकर जयकिशन की।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम आप आए बाहर आई।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित APMC सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और RKBK के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
5: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरिया लेमाव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने

0: कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रटनगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
1: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे जॉइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है। हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं।

0: इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मानसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा संपन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार। आज त्रिवेणी में उस तैयारी की बात जो भीड़ में भी अलग से पहचान बनाती है। ये तो सच है कि भीड़ में भी केंद्र बिंदु बन के ज्यादातर तैयारी पहली तैयारी पहनावे की होती है। ये सच है कि सुरुचिपूर्ण पहनावे और रखरखाव से व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है और पहले पहल ध्यान भी आकर्षित करता है। लेकिन असली प्रभाव का पता तब लगता है जब कोई सूटेड बूटेड व्यक्ति या सजी सवरी महिला मुंह खोलते हैं, यानी बात करते हैं। बात करने का सलीका सिर्फ समाज में ही नहीं, घर में भी कमाल का असर दिखाता है। क्रोध में आपाद मस्तक डूबा घर का कोई सदस्य भी प्यार मनुहार से मान जाता है। यही तो है संवाद कौशल, यानी बातचीत का ढंग। बात कहने की कला का मतलब ना तो बातें बनाना है और ना ही बातों में उलझाना है, बल्कि अपनी बात इस तरह रखना है कि सुनने वाले व्यक्ति पर उसका पूरा असर हो। ये तभी होगा जब विचार स्पष्ट, शब्द और टोन संयत हो और अपनी बात कहने के साथ ही दूसरे को भी कहने का मौका मिलेगा।
1: सुनिए,
2: कहिए, कहिए,
1: सुनिए, सुनिए,
2: कहिए, कहिए ना।

0: सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए सुनिए
1: कहिए हाँ हाँ
0: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: पहले सोचो फिर बोलो, बचपन की ये सीख बड़े काम की है, क्योंकि इसी से समय स्थान और परिस्थिति का ध्यान रखकर बोलने की आदत पड़ती है। सामने सामने बातें हो रही हो या मंच से अपनी बात कही जा रही हो, बोलते वक्त समय पर नजर रहे, साथ ही किस तरह बात करनी है इसका भी ध्यान रहे, तभी तो बातों में वजन आता है। बिना सोचे समझे बोलने के बजाय चुप रहकर सुनना कहीं अच्छा है। बहुत पुरानी या पहले की बातों पर ध्यान देना यूं तो जरूरी है। उदाहरण के लिए अतीत का जिक्र किया जा सकता है अगर कोई सलाह देनी हो, लेकिन बातचीत का संदर्भ वर्तमान से जुड़ा रहे तभी बातों का असर होता है।

बातचीत में टोन यानी लहजा भी बहुत खास भूमिका निभाता है। कैसे किसी को संबोधित किया जाता है, किसी बात पर कैसे असरदार ढंग से हामी भरी जाती है या बिना किसी को चोट पहुंचाए असहमति प्रकट की जाती है, ये जताने में टोन साथ देती है। बात संयत ढंग से मीठे लहजे में कही जाए तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी बात रखी जा सकती है। तुलसीदास जी ने कहा भी है, कोयल काको देत है कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो कर लेत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे 14 फेरे। इस फिल्म का गाना राजीव भल्ला, रिया दुगल और राशि हरमलकर की आवाज़ों में। लीजिए अब सुनिए मनाली चतुर्वेदी की आवाज़ में एक्टिंग का भूत। इस फिल्म का गाना, गीतकार हैं काशी कश्यप और संगीतकार हैं काशी रिचर्ड।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में तू झूठी मैं मक्कार इस फिल्म का गाना। अमिताभ भट्टाचार्य हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: रानी सिंह।
1: अभी आप सुन रहे थे छलांग फिल्म का ये गाना। लीजिए अब सुनिए स्नग्धजीत भौमिक की आवाज़ में छिपकली फिल्म का गाना। सोहम मजुमदार हैं गीतकार और संगीतकार हैं मीमो।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।
5: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
6: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
5: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
6: सच?
5: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
6: समझ गया।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए अब सुनिए श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाजों में प्रसून जोशी का लिखा और शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम भाग मिल्खा भाग।

दोस्तों, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ होप, यानी अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस। आशा हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, आशा अंधकार में एक दीपक के समान हमारा जीवन पथ आलोकित करती है। आज चारों ओर तनाव है, भागदौड़ है, प्रतिस्पर्धा है, ऐसे में आशा हमारा संबल बन जाती है। एक आशावान व्यक्ति अपनी सकारात्मक ऊर्जा से सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश का भी भला करता है।

0: अभी आप सुन रहे थे के सलीम मर्चेंट और साथियों की आवाज़ों में इकबाल फिल्म का गाना। इरफान सिद्दकी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा था सलीम सुलेमान ने। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए हैप्पी फिर भाग जाएगी फिल्म का ये गाना।

दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स यानी रेत और धूल भरी आंधी से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 से मनाना शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण पर रेत और धूल भरी आंधियों के असर के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस चुनौती से निपटने के लिए वृक्षारोपण, भूमि संरक्षण, जल संरक्षण आदि आवश्यक हैं। इस वर्ष की थीम है स्रोत से प्रभाव तक, रेत एवं धूल भरी आंधियों से भूमि और जीवन की रक्षा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए देहाती डिस्को फिल्म का ये गाना

अभी आप सुन रहे थे दिव्या कुमार की आवाज में देहाती डिस्को फिल्म का गाना। गीतकार थे प्रणव वत्स और संगीतकार थे गणेश आचार्य। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश अमर आरशी बादशाह और नेहा कक्कड़ की आवाजों में। गीतकार हैं अमरीक सिंह और कुमार, और संगीतकार हैं जसलीन रॉयल। फिल्म का नाम बार बार देखो और उसका ये डांस नंबर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
2: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
3: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
2: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
3: सच?
2: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
3: समझ गया।
4: जरा सुनिए कैसी बना ये गाना।
5: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
4: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
5: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
4: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आई हूँ आज के फनकार।
1: तेरे प्यार का

दोस्तों, फिल्में बॉक्स ऑफिस से चाहती हैं प्यार का आसरा, लेकिन सभी फिल्मों के खाते में सफलता के सिक्के नहीं खनकते। आज जिस तरह से बॉक्स ऑफिस से फिल्में धराशायी हो रही हैं और त्राहिमाम त्राहिमाम की गूंज सुनाई दे रही है, तो कौन विश्वास करेगा कि एक जमाने में उन्होंने सम्मोहित कर रखा था दर्शकों को, जो हैं हमारे आज के फनकार। बूझिए तो भला,

0: मुझे।
1: अब तो पहचान गए होंगे, हमारे आज के फनकार हैं जुबली कुमार यानी अभिनेता राजेंद्र कुमार। इतनी सुनहरी है राजेंद्र कुमार की दास्तां कि आपकी इस रेडियो सखी का एक मन तो ये हुआ कि बस एक लाइन से फिल्मों के नाम गिनाएं और सुनवाते जाएं उनकी फिल्मों के सुरीले नगमे।

दोस्तों, मैंने कहा कि आपकी रेडियो सखी का मन तो ये हुआ कि फिल्मों के नाम बताएं और गीत बजाते जाए, पर भला ये सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार की दास्तां कहाँ रहती। तो फिर सुनिए, राजेंद्र कुमार तुली जन्मे तो 20 जुलाई 1929 को थे सियालकोट में, जो अब सरहद के उस पार है। फिल्मों से उनका नाता जुड़ा विभाजन के बाद, जब परिवार आया मुंबई और जब राजेंद्र कुमार निर्देशक एच एस रवैल के सहायक बन गए। शुरुआत केदार शर्मा की फिल्म जोगन के छोटे से रोल से हुई, पर सही मायनों में तूफान और दिया बतौर नायक उनकी पहली फिल्म थी।

0: और तूफान की।
1: सचमुच राजेंद्र कुमार का करियर दिए और तूफान की लड़ाई की तरह थी। फिल्म जोगन से जो दिया जला उसे सितारा बनने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगा। सन 1957 में राजेंद्र कुमार महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में नजर आए।

0: भैया।
1: अपने जमाने के तमाम चर्चित अभिनेत्रियों के पीछे लहराते हुए गीत गाने का मौका मिला था इस अलबेले नायक राजेंद्र कुमार को। आइए हम भी भीगें प्यार की इन मस्त फुहारों में और चले उस फ्लैशबैक पर जहां हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार के साथ अलग अलग तारिकाएं। फिल्म संगम, राजेंद्र कुमार और बैजंती माला।

0: दोस्तों बात चल रही है राजेंद्र कुमार की उस मोहब्बत भरी छेड़छाड़ की जो उन्होंने रजत पट पर की थी अपनी नामचीन अभिनेत्रियों के साथ। फिल्म आरजू, राजेंद्र कुमार और साधना।
1: वो नाजुक लबों से

0: इन सदाबहार गानों का जिक्र चल रहा है तो आपको ये बता दें कि अभिनेता राजेंद्र कुमार ने सन 1963 और 1966 के बीच लगातार 6 हिट गोल्डन जुबली फिल्में दी थी और इस दौरान उनकी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई थी। इसे कहते हैं किस्मत।
1: सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे।

0: कुल मिलाकर अपनी फिल्मी यात्रा में राजेंद्र कुमार एक ऐसे आधार स्तंभ बन गए जिसे डिगाना आसान नहीं था। एक लंबे समय तक मेलोड्रामा यानी अति नाटकीयता, त्रासदी और आंसू बहाव फिल्मों का दौर जारी रहा, जिनका संगीत ऊंचे पायदानों पर टिका रहा। बीच बीच में बाद के दौर की कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुईं। विडंबना देखिए कि सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार के सिंहासन को जिस रोमांटिक आंधी ने हिलाया, उसका नाम था राजेश खन्ना, जिन्होंने बाद के दिनों में राजेंद्र कुमार का बंगला भी खरीद लिया।
1: हुस्न वाले

0: गीतकार और निर्देशक सावन कुमार की यादों में राजेंद्र कुमार आज भी बसे हैं। साजन बिना सुहागन फिल्म की एक घटना को याद करते हुए सावन कुमार कहते हैं,
1: एक दिन राजेंद्र कुमार जी का बर्थडे था और मैं उनके घर गया तो उनकी वाइफ मुझे जानती थी, बोली भाई साहब आइए आप बैठिए, मैं उनको खबर करती हूँ। तो उनको खबर किया तो वो कहने लगे सावन जी को यहीं भेज दो। तो पीछे मैं गया जहाँ वो बैठे हुए थे तो वहाँ राज कपूर साहब बैठे थे उनके साथ। तो मैंने देखा इतने बड़े आदमी का बर्थडे है, कोई है नहीं, और चंद बुके पड़े थे फ्लावर्स के भी। तो मैंने इधर उधर देखा, मैंने अपना बुके दिया और उनको विश किया कि भैया हैप्पी बर्थडे आपको, तो मैं आपके लिए, उन्होंने कहा एक और गिफ्ट लाया हूँ और वो है कि एक पिक्चर आप मेरी कर रहे हैं। जबकि वो चार साल से घर बैठे थे, कोई फिल्म नहीं थी उनके पास, जुबली स्टार थे। तो सबसे पहले राज कपूर साहब खड़े हो और उन्होंने मुझे गले लगा लिया कि भाई तुमने आज मेरे दोस्त को ऐसा बर्थडे गिफ्ट दिया है जो मैं नहीं दे सका, मेरी हिम्मत नहीं है इस वक्त इनके साथ फिल्म बनाने की, अगर तुम बना रहे हो तो मेरी दुआ है तुम्हारी फिल्म गोल्डन जुबली होगी। तो मैंने उनसे फिर कहा कि राज साहब आप मेरी पिक्चर का क्लैप दीजिए। उन्होंने कहा कि क्लैप नहीं दूंगा मैं, सिल्वर जुबली की ट्रॉफी बांटने आऊंगा इस फिल्म की। और उनकी मुबारक जुबान जो है ना, अल्लाह ने

0: पवन कुमार साहब, अभिनेता राजेंद्र कुमार को आप किस रूप में याद करना पसंद करते हैं, किस रूप में वो आपको याद आते हैं?
1: वो खाली एक अभिनेता ही नहीं थे, बड़े अच्छे इंसान थे और मेरे लिए तो बड़े भाई की तरह थे। उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया, अपने एक्सपीरियंस, अपनी बातें बता बता के सारी चीज़ें। मैंने अपने आप को बड़ा एजुकेट किया इस तरह से। ऐसे कई बार राज साहब से बातें होती थी तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। पर राजेंद्र कुमार जी के साथ मैंने 3 फिल्में बनाई और हमने वो 3 फिल्में इतना अच्छा लगा उनके साथ काम करते हुए। ऐसा लगा नहीं को किसी बहुत बड़े स्टार के साथ काम करूँ या बहुत बड़े आदमी के साथ काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा और हर वक्त वो एक फिलोसोफर, गाइड और फ्रेंड, अच्छे दोस्त की तरह हमेशा साथ रहे मेरे।
0: साजन बिना सुहागन, साजन की सहेली और ओ बेवफा, ये फिल्म थी ना? हम ये जानना चाहते हैं कि शूटिंग के दौरान या फिर जब वो डांस करते थे या डायलॉग डिलीवरी होती थी तो उस वक्त वो कैसे होते थे? मतलब बड़े संजीदा होते थे या हंसमुख?
1: बिल्कुल संजीदा इंसान नहीं थे वो, बिल्कुल हंसमुख और कॉमेडियन कैरेक्टर थे लाइफ के अंदर।
0: अच्छा।
1: हमेशा हंसते रहना और हंसी मजाक करते रहना, मैंने कभी उनको जिंदगी में सीरियस होते देखा ही नहीं।
0: संवाद अदायकी के बाद
1: वो एक कैरेक्टर है ना जो प्ले करते हैं, फिर वो जिस तरह का कैरेक्टर था वो फिल्मों में काफी संजीदगी के रोल किए हैं उन्होंने और साजन बिना सुहागन में भी उनका बड़ा संजीदा रोल था, तो वो तो एक एक्टर की क्वालिटी है ना, उसको किस तरह से परफॉर्म करता है वो। बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे और उनके साथ एक और बात थी खास की नूतन जी भी सुपरस्टार थी और वो भी सुपरस्टार थे, कभी दोनों ने साथ नहीं काम किया था। तो वो पहली फिल्म थी जब नूतन जी भी एक्चुअली रिटायर हो चुकी थी फिल्मों से, तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि आप ये फिल्म कीजिए। तो जब वो सुपरस्टार थे दोनों ने साथ काम नहीं किया, जब वो स्टार नहीं रहे थे दोनों, फिर एक पिक्चर में साथ काम किया, फिर वो पिक्चर गोल्डन जुबली हुई।
0: पहले राजेंद्र कुमार एक सदाबहार नायक रहे, फिर चरित्र अभिनेता बने, फिर 80 के दशक में बने प्रोड्यूसर और अपने बेटे कुमार गौरव को फिल्म संसार में उतारा। फिल्म थी लव स्टोरी।

कुल मिलाकर भारतीय फिल्मों के अति भावुक ढांचे में से राजेंद्र कुमार के रूप में एक ऐसा नायक निकल कर आया था जिसने अपनी फिल्मों के जरिए हमें हंसाया और रुलाया।

एक नायक को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है उससे जुड़े किसी दर्शन को याद किया जाए। और आपकी रेडियो सखी के लिए वो दर्शन ये है।

0: आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेता राजेंद्र कुमार पर। शोध और आलेख आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: सीमा जी, निर्देशक और नाटककार रंजीत कपूर की बात अगर हम करें, अनु कपूर साहब की बात करें और निखिल कपूर की आप बहन हैं और जाने माने अभिनेता ओमपुरी साहब से आपने विवाह किया, इन सब चीजों को, इन सब बातों को आप कैसे देखती हैं?
1: छोटा सा प्रश्न आपने पूछा है लेकिन वो पूरा जीवन उसमें समेटा हुआ है मेरा। मेरे भाई जो है तीनों अपनी अपनी विधा में लेकिन कला क्षेत्र में ही है। सबसे छोटा जो ब्रदर है वो बहुत अच्छा शायर है, उसने कई फिल्मों में गाने लिखे हैं। मेरी हर सीरियल का टाइटल सॉन्ग वो ही लिखता है और हर सीरियल और फिल्म का टाइटल वो ही रखता है। और अनु भाई एक्टर हैं, आप ही जानते ही हैं। रंजीत भाई जो हैं वो निर्देशक हैं, राइटर हैं। तो सब अपनी अपनी जगह बादशाह हैं अपने अपने फील्ड में जी। और जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं तो आप एनरिच होते चले जाते हैं। अच्छा, हम बहन भाइयों का करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू हुआ, ऐसा नहीं था कि कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसे सब साथ ही चल रहे थे, साथ ही संघर्ष कर रहे थे और अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी क्षेत्र किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन उसके बावजूद कला से जुड़ा हुआ।

0: जी जी,
1: तो इसलिए हम लोग अपने अपने रास्तों पे, जो कंटकीर्ण रास्ते थे उन पे चलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे।
0: तो कभी भाई बहनों में कोई कंपटीशन रहता होगा?
1: कंपटीशन शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, एक अंग्रेजी में शब्द है जिसे हिंदी में प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। ईर्ष्या के बिना आप एनवी करते हैं, आप किसी से ये कहते हैं कि आपको इतना ज्यादा क्यों आता है, है ना, मन में ये सवाल होता है। और मुझे हमेशा मेरे जो जितने भी मैं अपने दुश्मन मानती हूँ ना, वो बहुत ऊंचे, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी में दुश्मन भी बनाओ तो बहुत बड़ा बनाओ, वरना आपको उसके बराबर होना पड़ता है। तो मेरा कंपटीशन हमेशा दुनिया के महान डायरेक्टर से है, दुनिया के महान राइटर से। कंपटीशन से मतलब प्रेरणा।
0: जी जी,
1: आपको वहां जाना है, इतनी ऊंचाई पे जाना है। तो भाइयों से भी वही रहा है कि इनको इतना ज्यादा आ रहा है, मुझे क्यों नहीं। तो उसके बाद ना आपको एक फोर्स मिलती है कि आप और ज्यादा पढ़ें।
0: बिल्कुल, एक हेल्दी कंपटीशन रहा हमेशा।
1: जी जी,
0: तो ओमपुरी साहब भी आपकी जिंदगी में आए, आपने उनसे विवाह किया, किन शब्दों में आप अपनी बात रखना चाहेंगी?
1: देखिए, 11 साल हमारा अफेयर चला और तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और तब पुरी साहब स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके बाद जब 11 साल के बाद हमने डिसाइड किया शादी करना, तब उनको थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ था। तो शादी हुई। पुरी साहब एक ऐसे कलाकार हैं जो, अगर मैं अपने लोगों की तारीफ अपने मुंह से करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दुनिया के इन्हें गिने जो कलाकार होते हैं, मैं पुरी साहब को उनमें रखती हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा उनसे प्रेम है, मेरी शादी हुई थी या जो भी, लेकिन ना बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैं देखती हूँ। क्योंकि देखिए, जिस कलाकार की नकल की जा सके वो स्टार हो सकता है, वो कलाकार नहीं हो सकता।
0: जी।
1: पुरी साहब की आप डायलॉग डिलीवरी की, उनके आप किसी भी चीज की नकल नहीं कर सकते, है ना। तो वो हर कैरेक्टर में ढल जाते थे। और मैंने उनका एक जो बहुत ही सशक्त पक्ष देखा है, वो ये देखा है कि एक छोटा सा, मैं एक सीरियल बना रही थी तो उन्होंने कहा, अरे ये रोल मैं करता हूँ, खुद कह के। मैंने कहा, पुरी साहब आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, इतने महान मतलब नाम है आपका इंटरनेशनल लेवल पे, ये आप क्यों? नहीं नहीं सीमा, छुट्टी है, मैं करूंगा। मैं, वो बैठ नहीं सकते थे।
0: हाँ।
1: उनकी प्रॉब्लम थी कि उनको काम
0: फ्री नहीं,
1: हाँ फ्री नहीं बैठ। तो मैं ऐसे काम करते हुए गई तो वो बैठे हुए नोट्स बना रहे थे। मैंने कहा, क्या, कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन से? बोले, नहीं तुम्हारा वो करना। मैंने कहा, इतनी छोटी सी सीरियल का एक छोटे से उसमें भी आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप देखिए डेडिकेशन काम के प्रति, के इतना आपने जिंदगी हो गई है, आपके 40 साल हो गए हैं काम को करते हुए, जिसमें आपने इंटरनेशनल अवार्ड ले लिए हैं, नेशनल अवार्ड ले लिए हैं, इसके बावजूद छोटा सा काम है लेकिन उसके नोट्स बना रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं और उस पर आप डिस्कस कर रहे हैं कि सीमा मैं ऐसे करूं, मैं ये पहन लूं या वो कर लूं, इसको, इस कैरेक्टर को ऐसे बना लूं। तो आपको ये सीखने को मिलता है, जैसे लता जी वगैरह को भी मैंने देखा है कि कोई भी काम जब वो करते हैं तो वो अपने आप को तिफले मकतब समझते हैं कि मैं अभी पहली क्लास में हूँ, और यही उनके जो विनम्रता है उनको महान बनाती है।
0: जी, जी।
1: और वही पुरी साहब में था।
0: जी, जी।

0: ओमपुरी साहब के अभिनय के बारे में तो हम आपसे क्या कहें, मतलब उनकी आवाज, उनकी अभिनय प्रतिभा, उनका चेहरा हर बात पर मतलब संवाद बोलता था, उनका चेहरा, उनकी आंखें, जो उनकी जज्बात, फीलिंग्स, वो पर्दे पर साकार हो जाती थी। आपको उनकी कौन सी फिल्में पसंद थी?
1: मुझे परफॉर्मेंस वाइज तो देखिए वो सब में बहुत न्याय करते थे अपने किरदार के साथ, लेकिन एक सौभाग्य मैं कहूंगी कि हरियाणा फिल्म फेस्टिवल था, यमुनानगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार थी, रंजीत भाई की फिल्म चिंटू जी थी और पुरी साहब की फिल्मों का सिंहावलोकन था, रिट्रोस्पेक्टिव था, तो उसमें हम तीनों ही वहां थे। तो मैं पुरी साहब की एक फिल्म मैंने नहीं देखी थी, तो मैंने कहा कि चलिए मैं देखूंगी आज आपकी ये फिल्म। बाकी फिल्में देखी थी, वो थी माय सन द फैनेटिक, अंग्रेजी फिल्म थी। तो मैं जब वो फिल्म देखी, यकीन मानिए मैं एक तो जारो कतार रो रही थी, और मैंने ना जैसे ही फिल्म ख़त्म हुई है ना, मैंने उनके पैर छू लिए। मैंने कहा क्या ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पुरी साहब हैं, मैं वो किरदार को देख रही थी। मतलब मैं आपको शायद शब्दों में ना समझा पाऊं कि वो परफॉर्मेंस जो थी ना उनकी, वो दुनिया से बाहर की परफॉर्मेंस थी।
0: जी, जी जी।
1: तो वो फिल्म मेरे लिए सबसे उनकी महत्वपूर्ण है।
0: इसके अलावा उनकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होंगी।
1: सारी फिल्में तकरीबन देखी हैं।
0: हाँ।
1: तो अब देखिए ना उनके फ्लेवर देखिए आप, एक तरफ अर्धसत्य करते हैं, आक्रोश करते हैं, गूंगे का रोल है, आंखों से बोलते हैं, है ना, और एक तरफ चाची 420 करते हैं, है ना, मालामाल वीकली करते हैं, और सीरियसली आपको सीरियस रह के आपको हंसाते, उसमें कहीं बफूनरी की जरूरत ही नहीं है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली। तो उनका रेंज आप, क्योंकि देखिए रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, तो वो कलाकार थे, मतलब अल्टीमेट कहूंगी इनको मैं,
0: और इंटरनेशनल
1: जी
0: लावल के कलाकार, उनकी मतलब कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम उनके अभिनय से प्रभावित नहीं हुए।
1: फिल्म कमजोर हो सकती है, फिल्म की स्क्रिप्ट कमजोर हो सकती है, फिल्म का डायरेक्शन कमजोर हो सकता है, लेकिन वो उनको जितना किरदार दिया गया वो कमजोर नहीं है।
0: बिल्कुल। आपको संगीत में भी बहुत रुचि रही है ना, और आपकी चूंकि माताजी स्वयं क्लासिकल सिंगर रही हैं, तो आपके खून में भी सिंगिंग रही होगी, तो किस रूप में आप देखती हैं संगीत को?
1: अगर आप इंडियन संगीत की बात करते हैं, भारतीय क्लासिकल संगीत की बात करते हैं और वेस्टर्न क्लासिकल की बात करते हैं, तो मुझे दो चीजें हैं। वेस्टर्न क्लासिकल जब मैं सुनती हूँ तो मुझे ह्यूमन इमोशन

0: दिखाई देते हैं। इंसान के जो जितने भाव हैं उसके जितने भी भावनाएं वो दिखाई देती हैं। और जब आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आपको दिव्य रोशनी दिखाई देती है। तो दो चीजों का ये मेरे लिए दिव्यता जो है वो म्यूजिक है।
1: जी,
0: मैंने भी सीखा है नसीर अहमद खान साहब से दिल्ली में, तो मैं सीखती थी। लेकिन जैसे बोल रही हूँ ना कि म्यूजिक मेरे लिए डिवाइन है, दिव्य है, उसको मैं प्रोफेशन नहीं बना सकती, उससे कमाई नहीं कर सकती। इसलिए मैंने अभिनय और म्यूजिक को कभी प्रोफेशन नहीं बनाया, वो मेरे लिए आत्मा की चीज है, उसको सुनती हूँ।
1: तो अगर हम आपसे कुछ गुनगुनाने को कहें तो आप कुछ पसंद करेंगी गुनगुनाना?
0: गुनगुनो ये तो आपने
1: क्योंकि यहाँ वो प्रोफेशन से नहीं जुड़ा है
0: एक लाइन गुनगुनाती हूँ
1: जी।
0: मेरी माताजी गाया करती थी ये गाना, बचपन में सुना था, लता जी का है,

0: वाह, बहुत सुंदर। तो सीमा जी, चूंकि आपके जीवन में रंगमंच और कला शुरू से थी, तो आपके जीवन में लेखन और थिएटर की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई और आपने लिखना कब शुरू किया?
1: मैं जब 15-16 साल की थी तो मैं छुप के कविताएं लिखती थी।
0: अच्छा, छुप कर? क्यों
1: छुप कर? ये कि मुझे, देखिए ना, माँ इतनी बड़ी शायरा थी और वो मुशायरों में जाती थी, उन मुशायरों में साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी जैसे बड़े बड़े शायरों के बीच, और माँ जिस तरह की शायरी करती थी उनके आगे हम कुछ नहीं। और मैंने तो फ्री वर्स में अतुकांत लिखना शुरू किया था, तो इसलिए मुझे लगता था कि तो बड़ी बेकार सी चीजें हैं, लेकिन मन में उद्गार आते थे तो उसको कागज पे उतार लेती थी। तब से शुरू किया मैंने।
0: जी जी, तो सबसे पहले क्या लिखा आपको याद है कि जब लेखन की शुरुआत हुई होगी तो सबसे पहला क्या लिखा गया होगा?
1: ऐसे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती हूँ कि पहला कौन सी रचना थी, लेकिन वही 15-16 साल की उम्र में मैंने अपने माता पिता पे एक 4 लाइनें लिखी थी। तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काढ़ दो, ताकि मई जून की तपती गर्मी में भूख और प्यास से बेहाल, जब मैं उस छांव का आश्रय पा सकूं, तो मुझे लगे भूले भटके प्यासे राही का पड़ाव यहीं तक, बस यहीं तक।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा, आपकी पसंद का एक गीत सुन लिया जाए?
1: जी बिल्कुल।

0: एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि 1988 से आपके टीवी धारावाहिक शुरू हुए और साथ ही आपने सरकारी मंत्रालयों के लिए भी डॉक्यूमेंट्रीज लिखी काफी, इन सभी पर थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं।
1: जी, कॉलेज से मैं निकलने के बाद पढ़ी रही थी उन दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी और कहते हैं ना, जहां जहां पड़े पग संतन के वहीं वहीं भंटा ढार। तो जैसे ही मैंने अलीगढ़ में एडमिशन लिया उन दिनों राइट्स बहुत होने लगे, फसाद, तो हमें भागना पड़ता था वापस। तो वो 3 साल का 4 साल में हो गया बीए। तो उस बीच मुझे दिल्ली आना पड़ता था क्योंकि अलीगढ़ से दिल्ली पास था, तो मैं दिल्ली आ जाती थी। इसलिए मैंने 83 में सबसे पहले पपेट थिएटर ज्वाइन किया
0: जी
1: दिल्ली
0: हाँ,
1: में
0: जी।
1: तो वो इंटरनेशनल लेवल का था, जो हमारे ट्रेडिशनल पपेट्स होते वैसा नहीं था, मॉडर्न पपेट्री हम करते थे और इंडिया को हमने कई कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है। जो इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल्स होते थे उसमें मैं जाती थी, हमारे डायरेक्टर थे तब दादी पदम जी, तो उनके संरक्षण में, उनकी देखरेख में मैंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल पपेट थिएटर किया। उसके बाद चूंकि पपेट थिएटर में आप फाइनेंशियली सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि जिंदा रहने के लिए आपको कमाना भी बहुत जरूरी है, तो फिर मैंने एक सीरियल डाली दूरदर्शन में और उस समय एक ही चैनल हुआ करता था दूरदर्शन, और दूरदर्शन में वो सीरियल हो गई किले का रहस्य
0: जी।
1: और चूंकि नौसिखिया थे इस फील्ड में आता नहीं था ज्यादा, तो काफी पैसे का भी लॉस हुआ, सब हुआ, लेकिन ठोकर खा के सीख लिया, तब से ये यात्रा है शुरू। जब दूसरे प्राइवेट चैनल्स आ गए तो उन पे भी लिखना और डायरेक्शन कर ही रहे थे, प्रोडक्शन भी कर रहे थे, तो वो सिलसिला चलता रहा।
0: और सरकारी मंत्रालयों से जुड़ने के लिए फिर
1: जी कई मैंने बनाई है डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे अभी आपसे जिक्र कर रही थी महानदी के किनारे, तो छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन है महानदी, नदी जो है वो

0: बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो महानदी जब मैं बना रही थी तो अच्छा बजट था उसका, तब तक लता जी ने संन्यास ले लिया था
1: जी
0: गाने से
1: जी,
0: तो तब मुझे अवसर मिला कि मैं उन तक जा पाऊँ। उससे पहले फिल्म नहीं बनाई थी मैंने कोई, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो मैंने हृदयनाथ मंगेशकर जी, जो उनके छोटे भाई हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने संपर्क किया, और नीरज जी, गोपाल दास नीरज, उनसे गीत लिखवाया महानदी पे, और हृदयनाथ जी से मैंने कहा कि मुझे लता जी से गवाना है गाना।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सीमा जी, जब आप ये लिखती हैं, जब कोई किरदार गढ़ती हैं, किसी विषय को उठाती हैं, लेखन करती हैं, तो आपकी कहानियों में, आपकी किरदारों को लिखते समय पटकथा में किन बातों का आप ख्याल रखती हैं? जैसे अभी आपने महानदी का जिक्र किया, तो उस समय की पूरे इतिहास को समेटना कोई आसान काम नहीं होता है। किस तरह से पूरी चीजों को समेट कर इतने खूबसूरत तरीके से आप पेश करती हैं?
1: जी देखिए, क्या है, हर विषय का कालखंड और वो अलग होता है। तो ऐतिहासिक जो विषय होते, जैसे अभी अवंतिका बनाई, तो वो पूरा इतिहास को लेके बनाया। लेकिन वही जब आप फिल्म बना रहे होते मिस्टर कबाड़ी, तो वो आज की है। इसमें किरदारों को जो उठाने का आपने प्रश्न किया है, ये बहुत अच्छा और सार्थक प्रश्न है। हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हम थिएटर कंपनियों में, छोटे छोटे गांवों में, हमारी थिएटर कंपनी दो दो मूविंग थिएटर कंपनी थी, दो दो महीने एक एक गांव में रहते थे। तो हम एक एक गांव में और शहरों में, कस्बों में हम लोग बहुत रहे हैं। अगर मैं आपको गिनाना चाहूं तो जितने साल मेरी उम्र है उसके कम से कम 5 गुना ज़्यादा कस्बे हम लोगों ने बदले हैं।
0: क्या बात है।
1: तो जब हम अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों से लेके अपर क्लास के लोगों तक, कलाकार से लेके बिल्कुल मजदूर वर्ग के लोगों तक, जब आप उनसे बातचीत करते हैं, और अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं, अगर आप थोड़े से प्रज्ञावान हैं और आप चाहते हैं कि कुछ बनना है आपको, तो आप उन किरदारों को जिंदगी में आप आत्मसात करते हैं। फिर जब आप लिखने बैठते हैं तो पता नहीं कहाँ से कोई एक ठेले वाला है ना, कोई एक अचार बेचने वाला, कोई एक है ना, वो किरदार आते चले जाते हैं, वो जीवंत हो जाते हैं लेखनी के जरिए और आपके सेलुलॉइड के जरिए।
0: तो आपकी रचनाओं में जो आपकी किरदार है वो बहुत जीवंत हैं। आप किसी भी सीरियल को उठाकर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म को देख लीजिए, तो ये सब क्या आपके स्वयं के जीवन से जुड़े हुए कोई पहलू हैं? या जैसा कि अभी आपने कहा कि इतनी सारी जगह में रही हूँ, आसपास की घटनाओं से, लोगों से प्रेरित ज्यादा रहे?
1: बहुत ज्यादा। आपके कलाकार जो भी पात्र हैं वो आपके आसपास ही होते हैं, उनको फिर आप एक कैरेक्टर दे देते हैं, उस कहानी में ढाल लेते हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, शोले फिल्म सबको समझ में आएगी कि शोले में आप जगदीप जी को देखते हैं कि वो टाल पे बैठे हैं। अब जब आप टाल पे बैठने वाले इंसान का कैरेक्टर आप गढ़ रहे हैं, तो आपको भाषा भी उसकी वैसी ही लेनी पड़ेगी, ना कि वो जमींदार साहब की भाषा अलग होगी, उसकी भाषा अलग होगी, उसका नाम अलग होगा, है ना। गायत्री देवी आप नाम अगर है तो वो थोड़ी सी रॉयल फैमिली से ही होंगी
0: जी।
1: लाजवंती होंगी तो वो कुछ और होंगी, लीलाबाई होंगी तो वो है ना। हाँ
0: बिल्कुल सही कहा। तो यानी कि हर किरदार को जब हम जीते हैं तो उसी के अनुरूप उसके बैकग्राउंड को भी महसूस करते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से है
1: जी।
0: आपके जीवन में कौन सा ऐसा किरदार है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया अब तक?
1: मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार एक प्रथा पे है, मध्य प्रदेश, मालवा और राजस्थान में एक प्रथा है, अभी भी थोड़ा बहुत चलन है तो काफी कम हो गई है, कि पति अपनी पत्नी को बेच सकता है, नाता बैठना बोलते हैं। तो वो किरदार कैसे गढ़ा, जब मैं पुरी साहब से बिछड़ गई थी बीच में, तो मैं झालावाड़ गई, झालावाड़ राजस्थान में, जहाँ माताजी पढ़ाती थी, उर्दू टीचर थी, वहाँ पर कहीं और जब ठिकाना नहीं होता है ना भावनाओं का, तो माँ ही याद आती है। माँ की गोद ही ऐसी जगह है जहाँ आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप 9 महीने उसके पेट में रहे हैं, उसी से सांस ली है, उसी से खाया है, उसी से पिया है, तो आप निश्चिंत थे वो 9 महीने, आप तो निश्चिंत थे,
0: बिल्कुल
1: ना चिंता थी आपको सांस कैसे लूं और खाना कैसे खाऊं। तो उस समय जब मैं जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, भावनात्मक रूप से, सोशली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो मैं माँ के

0: पास चली गई। जब मैं वहाँ गई तो हमारे यहाँ एक बाई काम करती थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, शारदा नाम मैंने रखा है उसका। तो शारदा एक दिन मुझसे बोली, वो 300 रुपया महीना उसकी उस समय तनख्वाह थी झाड़ू पोछे की, तो मुझसे बोली कि भाई साहब मुझे 5,000 रुपये उधार दे सकती हैं क्या। तो मैंने कहा तुम्हारी 300 रुपये तनख्वाह में तुम घर चलाती हो, दो और घर होंगे ज़्यादा, 600-700 रुपये में घर चलाती थी वो। 5,000 रुपये, पहली बात तो ऐसा क्या संकट आ गया, दूसरा कैसे चुकाओगी 5,000। उस समय ऐसे है कि कोई भाई मुझसे 5,00,000 रुपये आज मांगे, तो कह लेंगे नहीं मुझे ना नाते की झगड़े की रकम भरनी है वरना मुझे बेच दिया जाएगा। तो मैं तो इस मामले में बिल्कुल ही वो थी, मैंने कहा बेच दिया जाएगा मतलब, मैं समझी नहीं। तो उसने मुझे बताया कि पंचायत से मेरे आदमी ने खा, पंचायत टाइप होती, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो बेच रहा है मुझे, दूसरे के नाते बिठा रहा है, तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो मुझे 5,000 रुपये देने। मैंने वो तो 5,000 दे दिए, उसको तो भगवान ने बचाया, मैं तो एक बहाना थी,
1: माध्यम बनी।
0: लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आई कि हम इतने सक्षम नहीं है कि हजारों लाखों शारदाओं को बचा सके। तो फिर वो कैरेक्टर मेरी स्क्रिप्ट बन गया
1: जी,
0: और इसलिए मैंने हार्ट फिल्म लिखी।
1: जी जी, एक ज्वलंत विषय है ये जिस पर आपने अपनी फिल्म में विषय उठाया, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: शंकर जयकिशन की फिल्म है प्रोफेसर, आवाज देकर
1: हमें तुम बुलाओ। क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं इसकी।
0: जी

0: ये भी लिख दो, वो भी लिख दो, ये लिख दे, लेकिन जैसे ही आप निर्देशन में लाते हैं उस स्क्रिप्ट को, तो आपकी लिमिटेशन हो जाती है। आपको किरदार सामने खड़े होते हैं, उनको कितनी दूरी पे जाना है, कैमरा कैसे करना है, वो सिमट जाता है, है ना, आपका जो कैनवास है वो सिमट के फिल्म का पर्दे जितना हो जाता है। राइटर का तो कैनवास आकाश है
1: जी।
0: लेकिन निर्देशन में एक चीज है कि सृजन का जो राइटर और निर्देशक का जो एक मजा है लिखने का और उसको बनाने का, क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अभी तो शब्द है कागज पे, अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं, निर्देशन में जाना चाहते हैं, और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह। तो ये यात्रा दुरू होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि डायरेक्टर को बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उसको म्यूज़िक का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको कैमरे एंगल का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको लेंसेज का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको एक्टिंग का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस कैसे ले।
1: बिल्कुल,
0: तो मुश्किल काम होता है लेकिन मजा आता है।
1: जैसे आपने कहा कि उसे हर एंगल का ज्ञान होना चाहिए, इसके पीछे क्या पहले आपने कुछ कोर्स किए या आप किसी के अंडर में रही, इतना एक वाइड जैसे एंगल देखने के लिए क्या एक निर्देशक की तैयारी होती है?
0: देखिए क्या हुआ कि पपेट थिएटर से निकलने के बाद सबसे बड़ा मसला था सर्वाइवल का, कि आप रोजी रोटी, दिल्ली में रहना है और मकान का किराया भी देना है, खाना भी खाना है, रहना भी है, और इतने सक्षम नहीं थे कि माता पिता भेज सकें, और आप 3 साल का 4 साल का FTII में जाके कोर्स कर सकें, तो जो भी सीखा जिंदगी से सीखा, ना तो किसी के अंडर में मैं असिस्टेंट रही, ठोकरे खा खा के सीखा, लेकिन सीखा खुद से ही सीखा, और अभी भी सीख ही रहे हैं,
1: हर पलम सीखती
0: जी,
1: ही है।
0: जी।
1: तो जीवन के संघर्ष को कैसे देखती हैं आप?
0: बहुत संघर्ष रहा है, जीना जो है ना वो अपने आप में ही एक संघर्ष है, तब से शुरू हो जाता है जब हम कंसीव होते हैं, जब हमारा है ना, तब से ही संघर्ष शुरू हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही दुनिया में आते हैं तो आपका संघर्ष है, रोटी कमाने का संघर्ष है, अपने आप को स्थापित करने का, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बिना समझौता किए, आपने एक प्रिंसिपल बना रखे हैं, उनसे समझौता किए बिना आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा सा मुश्किल रास्ते हो जाते हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि उन रास्तों से होके हम गुजर गए। समय लगता है, थोड़ा लंबा होता है।
1: तो आप जिस दुनिया में हैं, चाहे थिएटर की दुनिया से वो शुरुआत हुई और ग्लैमर वर्ल्ड तक आप पहुंची, आज भी आप वहां स्टैब्लिश हैं, आप बराबर काम कर रही हैं, तो थिएटर की दुनिया से लेकर ग्लैमर की दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, या आप खुद एक महिला के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रही हैं, क्या संघर्ष होते हैं वहां महिला को अपने आप को स्थापित करने के और बने रहने के?
0: महिला होना ही अपने आप में एक संघर्ष है। हम बहुत सारी गुलामियों को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी गुलामियों। एक जमाने में, प्राचीन काल में, तो स्त्री बहुत स्वतंत्र थी
1: जी।
0: फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे ही आते गए आताताई आते गए, तो स्त्रियों को सुरक्षा के लिए उसको पीछे कर दिया गया, और वो फिर हमारी मानसिकता बन गई। आज भी मैं देखती हूँ, मेरा जो संघर्ष रहा है वो शायद, मैं बहुत फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली रही हूँ कि मुझे किसी ने उस तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की, या फिर मेरा प्रोफेशन ऐसा था जिसमें कोई चांस नहीं था कि एक्सप्लॉइट, या मेरा अपना व्यक्तित्व ऐसा रहा होगा कि थोड़ा डरते भी थे लोग, क्योंकि मैं मुंह फट थी थोड़ा सा इस मामले में, बोल देती थी,
1: आउटस्पोकन
0: थी कि भाई ऐसा है कि अगर ऐसी बात है तो आप रखिए अपने पास, मुझे नहीं चाहिए काम। लेकिन और लोग इतनी सौभाग्यशाली नहीं होते हैं, मजबूर कर दिया जाता है उनको, या तो वो उस फील्ड को छोड़ देती हैं, या फिर कहीं सरेंडर कर देती हैं। तो ये तो स्त्री के साथ चलता ही रहा है। और दूसरा, एक और मानसिकता है समाज में,

0: कि अगर कोई स्त्री सक्सेसफुल हो गई है तो जरूर किसी ना किसी तरह के समझौते करके ही ऊपर आई है
1: जी।
0: ये एक अजीब सी मानसिकता है। उसमें मुझे एक सवाल हमेशा लोगों से ये खड़ा होता है कि भाई तुम सिर्फ समझौते देखते हो, चाहे लता जी हो, आशा जी हो, हेमा मालिनी हो, मतलब किसी मधुबाला हो, मीना कुमारी हो, या आप लेखिकाएं हो
1: जी,
0: उन सबके ऊपर ये लांछन लगते आए हैं, आप उनका टैलेंट नहीं देख रहे,
1: उनकी मेहनत
0: और उनकी प्रतिभा। आप कोई दूसरी लता मंगेशकर बता दीजिए ना, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज से हो सकता है क्या? नहीं, जब तक आपके अंदर प्रतिभा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर एक डेडिकेशन नहीं होगा अपने प्रोफेशन को लेके, तब तक आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते। वरना तो ऐरा गैरा नतू खैरा कोई भी बन जाएगा
1: जी,
0: स्टार
1: जी,
0: नहीं बनते है ना
1: जी। तो कितनी महिलाएं हैं जो आज लेखिकाएं हैं या निर्देशिकाएं हैं या किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी कंपनी में है, किसी भी महकमे में वो काम कर रही है, वो अपनी मेहनत और मशक्कत के बाद जब किसी पद या प्रतिष्ठा पर पहुंचती हैं और उनको ये इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि भाई होगा कहीं कुछ ना कुछ, वरना इतनी ऊंचाई पर पहुंचना एक महिला के लिए इतना आसान तो नहीं है, तो बड़ा दुख होता है। आज भी जब ये बातें कही जाती हैं तो
0: बहुत दुख होता है, और दुख नहीं शर्म आती है उन लोगों की मानसिकता पे। और मुझे एक बात की और शर्मिंदगी है कि इसमें पुरुष तो है ही शामिल, स्त्रियां भी शामिल हैं ये लांछन लगाने में, तो वो बहुत गलत है। हमको हमारी मानसिकता, समाज की मानसिकता को बदलने की बहुत जरूरत है
1: जी। चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं
0: जी।

ये था सुप्रसिद्ध राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन।

0: है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। जयंत जी,
0: जी
1: विविध भारती की एक रचनात्मक पहल है सृजन भारती।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते हैं
1: हाँ।
0: कि इसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रस्तुतिकरण होता है।
1: हाँ, तो पिछले दिनों एक कार्यक्रम विशेष आयोजित किया गया था जिसमें सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक श्री राजेश रेड्डी ने अपनी शायरी से हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था।
0: जी मंदाकिनी जी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्ष थी जानी मानी कवियत्री और अभिनेत्री दीप्ति मिश्रा जी।
1: जी बिल्कुल,
0: इस कार्यक्रम में गण्यमान्यों की उपस्थिति थी जिनमें विविध भारती के सेवानिवृत्त कर्मचारी खास तौर से कमला कुंदर जी आई थी, कार्यक्रम अधिकारी कमलेश पाठक जी उपस्थित थी, सेवानिवृत्त उद्घोषिका निम्मी मिश्रा जी उपस्थित थी।
1: जी हाँ।
0: और इस कार्यक्रम के अंतर्गत रेड्डी साहब का साक्षात्कार किया था हम सबके चहेते उद्घोषक यूनुस खान ने।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो विविधा में आज हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं इस विशेष बातचीत के संपादित अंश। नमस्कार, सृजन भारती में आप सभी लोगों का विविध भारती परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि सृजन करना आमतौर पर नवीनता या नवाचार का संकेत होता है, तो विविध भारती ने सृजन भारती के जरिए नवाचार करने का संकल्प लिया है और ये संकल्प आगे चलता रहेगा। आज इसी कड़ी में सृजन भारती के माध्यम से हम जुड़ेंगे जाने माने शायर राजेश रेड्डी साहब और हमारी मुख्य अतिथि कवियत्री और अभिनेत्री दीप्ति मिश्र जी से। शायर जिंदगी की आम समस्याओं को सरलता से कह देने वाले होते हैं। रेड्डी साहब विविध भारती में केंद्र निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं और खासतौर से मुझे खुशी है आज की इतने बड़ी शख्सियत के बारे में मुझे कुछ कहने का मौका मिल रहा है। एक शानदार शख्सियत और एक संजीदा शायर राजेश रेड्डी साहब उन शायरों में से हैं जिन्होंने गजल की नई पहचान को और मजबूत किया है। आपकी गजल को जाने माने गजल गायक जगजीत सिंह जी ने भी अपनी आवाज दी है और आपके 3 संग्रह आ चुके हैं, उड़ान, आसमान से आगे और वजूद।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मंदाकिनी जी। ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि रेड्डी जी अपने ही घर में लौटे हैं। विविध भारती में बहुत सारा वक्त रेड्डी जी के साथ बीता है और बहुत सारी यादें हैं। इस आयोजन का नाम हमने रखा है ये जो जिंदगी की किताब है, ये इसलिए क्योंकि ये रेड्डी जी की एक बहुत ही मशहूर गजल जिसे जगजीत जी ने गाया है। तो रेड्डी जी की गजलों की खासियत ये है कि उनकी गजलों का हर शेर बहुत वजनदार हुआ करता है और वो पूरी दुनिया में अपनी बेहतरीन गजलों के लिए जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत रेड्डी जी आपका।
3: धन्यवाद धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।
2: आज आपसे बातचीत तो करेंगे ही, साथ में आपके अशार भी सुनेंगे, तो यहाँ बहुत सारे पुराने साथी आपके समय के भी मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपको विविध भारती में अपने घर में लौटते हुए?
3: नहीं, बहुत अच्छा लगता है और मैं तकरीबन 14 साल बाद लौटा हूँ।
2: क्या बात है, वनवास खत्म हुआ है।
3: रिटायरमेंट के बाद आज पहली बार दाखिल हुआ विविध भारती में।
2: वाह,
3: और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूरा परिवार जिसके साथ मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा और कुछ पुराने साथी मौजूद हैं, निम्मी जी, कमलेश जी, कमला जी और यूनुस और ममता, तो उस जमाने में भी खूब हमारे साथ एक्टिव रहे। पूरी टीम का जो क्रिएटिव टीम का जो हिस्सा थे बड़े, जिनके बल पर हम बहुत कुछ सोच पाए कर पाए। अब मेरा सौभाग्य था, मेरी खुशकिस्मती थी कि वो जो विविध भारती का एक मेरे अपने करियर का आखिरी दौर था, लेकिन मेरे अपने करियर का एक पीक भी था वो, कि जिसे मैं अपने अच्छी टीम के साथ और भरपूर टीम के साथ जिन्होंने अपना 100% जो हम सोचते थे उसके साथ किया और लोगों ने पसंद किया और विविध भारती की टीम को, विविध भारती के इस पूरे परिसर को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज ये फिर मौका मिला मुझे।
2: क्या बात है। सर, किसी एक गजल से शुरू करते हैं ताकि एक महफिल जो है उसकी एक बुनियाद बन जाए।
3: तरन्नुम से पेश करता हूं शुरू में ही ये गजल। जगजीत सिंह साहब ने मेरी कई गजलें गाईं, लेकिन ये गजल मैं इसलिए सुना रहा हूं कि ये उनके आखिरी एल्बम की पहली गजल है जो रिकॉर्ड हुई, लेकिन रिलीज होने से पहले ही एल्बम वो इस दुनिया से चले गए। तो उनकी याद में, उनके सम्मान में मैं ये गजल पेश कर रहा हूँ।

0: वाह क्या बात है।
1: इस परिंदे में जान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। खशियत जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
0: वाह वाह
1: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान
0: क्या बात
1: बाकी है, जाने कितनी उड़ान। और ये शेर देखें, जिंदगी का क्रम,
0: इरशाद।
1: इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान
0: वाह वाह
1: बाकी है,
0: क्या बात,
1: जाने कितनी उड़ान। और इस गजल का आखिरी शेर, खास शेर, हर युग का सच है लेकिन इस युग का कुछ ज्यादा सच है।
0: जी
1: सर देखें, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, अजय भाई, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में जुबान।
0: क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह वाह।
1: सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में जुबान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। काश के ये जगजीत जी की आवाज में जो रिकॉर्ड हुआ ये रिलीज हो जाए तो हम सभी के लिए ये एक अनमोल चीज बन जाएगी। मुझे लगता है कि आपकी दास्तान को शुरू से शुरू करते हैं। जयपुर में वो कौन सा दौर था जब आपने लिखना शुरू किया था? दीप्ति जी कहती हैं कि जब इश्क होता है तब लोग लिखते हैं,
2: जब दिल टूटता है
1: ये सवाल दीप्ति जी ने पिछली मुलाकात में भी पूछा था, एक गोष्ठी में। मेरे साथ ये हुआ कि दिल लगा तो फिर लगता ही चला गया मतलब ये था कि वो हम लोग एमए में साथ थे और अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, लेकिन उनके साहस ने इस सपने को सच बनाया
0: जी,
1: और अब वो मेरी अर्धांगिनी हैं। और अब मेरी जो सृजन यात्रा में उनका बड़ा योगदान है, मुझे उन्होंने घर की जिम्मेदारियों से एक तरह से मुक्त रखा है, अपना लिखना पढ़ना मैं करता रहता हूँ, तो ये उनका मुझ पर बहुत बड़ा वो है, सहयोग भी एहसान भी। तो दिल टूटने का जवाब यह है
0: उनके लिए कुछ लिखा है सर आपने?
1: पढ़ दूं? ये एक मेरी शुरुआत गीत से हुई थी वो, और फिर बाद में गजल में आया, तो ये शुरुआती गीतों में से एक है

0: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपने अभी ये एक जिक्र किया कि गीतों के जरिए आपने लेखन की दुनिया में प्रवेश किया था। मुझे ये पता है कि एक गीत आपका ऐसा है जो नीरज जी से बड़ी प्रशंसा उस गीत ने पाई थी, हम चाहते हैं कि उसका जिक्र यहाँ हो।
1: तो वो गीत मैं पढ़ रहा हूँ, ये गीत मैंने जब मैं शुरुआत में गीत लिख रहा था जयपुर में मंचों पर कवि सम्मेलनों में जा रहा था, तो ये गीत मैंने उदयपुर के कवि सम्मेलन में पढ़ा था जहाँ नीरज जी उस वक्त उनकी क्या शान थी और क्या जलवा था, तो उन्होंने ये वो मुख्य कवि थे और मैं एक तरफ से शुरुआती लोगों में से था। तो ये गीत जब मैंने पढ़ा तो उन्होंने अपने गले की माला मेरे गले में डाली और एक सम्मान और एक प्यार एक आशीर्वाद मुझे दिया, तो मैं वो गीत पढ़ रहा हूँ। जिंदगी की बस्ती में

0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। विविध भारती की आपके दौर की बात कर ली जाए, रेडियो का जो आपका सफर है आकाशवाणी का, उसमें आज मुझे एक दिलचस्प बात यह पता चली कि आपने समंदर के किनारे भी काम किया, रेगिस्तान में भी काम किया, पहाड़ों पर भी काम किया। तो विविध भारती का जो मामला है, विविध भारती में आप लगातार कई बार रहे और इस दौरान काफी सारी चीजें हैं जो हैं आपने शुरू की, जैसे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम है वो आपकी देन है, सरगम के सितारे आपकी देन है, यूथ एक्सप्रेस गुलदस्ता है और सखी सहेली सर के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था। हमारे कुछ पुराने साथी मौजूद हैं, मैं उनका भी यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए जिक्र कर लूं कि यहाँ हमारी भूतपूर्व उद्घोषिका निमी जी मौजूद हैं और उसके अलावा गोपाल सिंह नेपाली जी की बेटी कमला कुंदर जो कि विविध भारती में हमारी साथी थी, कमलेश पाठक जी मौजूद हैं जो प्रोड्यूसर थी, ये सारे पुराने लोग यहाँ एक साथ मौजूद हैं और आपके साथ ये सारे काम भी कर चुके हैं। तो विविध भारती से जुड़ी कुछ यादें बांटिए।
1: विविध भारती से जुड़ी तो यादें ही यादें हैं, मतलब और खूब यादें हैं। मेरा बेहतर और बेहतरीन समय आकाशवाणी में अगर कहीं गुजरा है तो या तो जयपुर और ये फिर विविध भारती। ये वो चैनल है जिसे सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ, जिसको सुनते सुनते मैंने गुनगुनाना सीखा, गाना सीखा और कभी कल्पना नहीं की थी कि उसी चैनल को जिसको मैं सुन सुन के बड़ा हो रहा हूँ मैं कभी आऊँगा और इस चैनल में कार्यक्रम की जिम्मेदारी मेरी होगी और मैं उसको निभाऊंगा।
0: क्या बात,
1: तो
0: ये
1: सौभाग्य है मेरा और मुझे तीन अलग अलग अवसरों पर विविध भारती में काम करने का मौका मिला और हर बार बहुत अच्छी टीम मिली जिनकी दो सदस्य तो अभी भी बहुत सक्रिय हैं, यूनुस और ममता। बाकी भी वो दौर जब मैं 12 में रिटायर हुआ उससे पहले का जो दौर था बहुत क्रीम टैलेंट था विविध भारती का, अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग और अपना 100% देने वाले लोग। तो विविध भारती से विदा होते हुए मैं गर्व भी महसूस कर रहा था, खुशी भी महसूस कर रहा था, मुझे कहीं नहीं लगा कि मैं किस आयोजन किस ऑर्गेनाइजेशन

0: मैं इतने सामने नहीं, मैं बहुत शान के साथ, बहुत खुशी के साथ, संतोष के साथ यहाँ से गया हूँ।
1: वापस शायरी की दुनिया की तरफ लौटते हैं। अब मैं आपसे उस गजल की फरमाइश कर रहा हूँ जिसको सुनने के लिए सब लोग यहाँ पर जमा हैं, जिसे पंकज उधास ने गा के बहुत मशहूर किया था।
0: जी, ये वो गजल है जिसने सारी दुनिया में मेरी पहचान बनाई या मुझे पहुंचाया। आज भी मतलब मैं जाता हूँ उससे पहले ये गजल वहाँ होती है और लोग इसके लिए कहते हैं कि वो जरूर सुनाएं। मैं पेश कर रहा हूँ यूनुस।
1: इरशाद, इरशाद।
0: यहाँ

0: का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, यहाँ हर शख्स। रेखा शेर
1: इरशाद,
0: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा,
1: वाह वाह वाह,
0: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है। और ये शेर आज के इंसान के नाम
1: इरशाद।
0: न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका,
1: वाह
0: न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से
1: क्या बात,
0: डरता
1: क्या बात,
0: है,
1: वाह वाह वाह, वाह।
0: खिलौना है। शुक्रिया। और ये गजल का आखिरी शेर, खास शेर, वो बच्चे वाला शेर जितना प्यार से सुना गया, ये भी उतना ही मेरे हिसाब से सच्चा शेर है। अमीर हो गरीब हो, किसी मुल्क का इंसान हो, एक पल आता है कि वो कहता है बहुत हो गया, ऊपर वाले वापस बुला ले। लेकिन जब वो पल आता है तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, शेर है देखें। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान,
1: वाह वाह,
0: अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान, रिहाई मांगता है और रिहा होने से
1: क्या
0: डर।
1: बात, क्या बात, क्या बात है।
0: अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता है।
1: क्या बात है, क्या बात है। इस गजल से जुड़ी हुई एक बड़ी यादगार घटना है, उसके बारे में जरा बताइए।
0: ये गजल पंकज जी ने गाई, दुनिया में पहुंची। इसके साथ दो घटनाएं
1: अच्छा, दो हैं जी,
0: हैं।
1: मुझे मैंने एक सोचा था। जी,
0: एक घटना तो यह कि जब पंकज जी ने गाई, और उस वक्त एक सिर्फ दूरदर्शन ही था, ये प्राइवेट चैनल वगैरह तो उस जमाने में थे ही नहीं, तो एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम था आरोही,
1: जी,
0: है ना, उस
1: दूरदर्शन
0: वक्त।
1: का।
0: हाँ, तो उसमें ये सुगम संगीत के और एक से एक प्रोग्राम आते थे जिसमें जगजीत जी, पंकज जी, कौन कौन नहीं आया उसमें। तो ये गजल जब उन्होंने गाई तो उस वक्त

0: स्क्रीन पे राइटर का नाम नहीं आता था या नहीं आया था उस दिन, ये जो भी है। तो ये गजल गाई, मेरा एक जयपुर का एक पुराना दोस्त था, वो अपने घर में जैसे सब लोग देख रहे थे, वो देख रहा था प्रोग्राम। तो ये जब गजल आई तो दीप्ति जी, वो उसका रिएक्शन ये होता है, वो उसने मुझे बहुत बाद में बताया जब मिला, बोले हम लोग देख रहे थे और बैठ के, फिर मैंने कहा यार ये पाकिस्तानी लोग क्या खा के गजल कहते हैं इस तरह की।
1: वाह वाह, पाकिस्तानी लोग।
0: तो वो ये सोच नहीं पा रहा था कि ये हिंदुस्तान का कोई शायर इस तरह की गजल कह सकता है, ये कही होगी। तो बुरपुर बहुत बाद में बोला। और दूसरी बात ये कि जब ये पंकज दास जी सूरत में कंसर्ट में सुनाने गए गजल, मतलब एक कंसर्ट उनका चल रहा था, मजरू सुल्तानपुरी साहब उसके चीफ गेस्ट थे, जैसा आज ये दीप्ति जी हैं, मजरू सुल्तानपुरी ऑडियंस में बैठे हुए थे। तो उन्होंने ये गजल सुनाना शुरू किया, ये गजल अपनी, जब ये शेर आया तो मजरू साहब ने कहा कि पंकज फिर पढ़ो। तो दो तीन बार उन्होंने पढ़वाया। तो जब ये ऐसा कहा जाता है मुशायरे में या संगीत में, तो ये सुनाने वाले को, गाने वालों को लगता है कि कहीं कुछ गलत गा दिया मैंने या गलत बोल दिया, मतलब तलफ़ुज गलत हो गया, लाइन गलत बोल दी, कुछ ना कुछ गलत हो गया। तभी मुझसे बार बार कह रहे हैं कि फिर पढ़ो। तो उन्होंने फिर पढ़ दिया, तीन बार ये शेर पढ़ा। फिर उन्होंने बताया, पंकज जी ने बताया मुझे कि जब ग्रीन रूम में आए तो मजरू साहब, तो उन्होंने कहा कि ये गज़ल किसकी थी जो तुम सुने। तो उन्होंने बताया कि वो उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था, कि बॉम्बे के एक नौजवान शायर हैं, तो उनका ये है वो। तो बोले मेरी तरफ से उस नौजवान शायर को मुबारकबाद दे रहे, नई तरह की गज़ल है, अलग तरह की गज़ल है।
1: वाह क्या बात है, मजरू साहब की तरफ से ये बात है। वाह वाह वाह, क्या बात है। जगजीत सिंह के साथ आपकी बहुत सारी यादें हैं।
0: नहीं, जगजीत जी का प्यार मुझे बहुत मिला, और ऐसा प्यार मिला कि वो शायद किसी शायर के नसीब में ना हो। वो जो मैं घटना आपको बता रहा हूँ, वो ये खास बात यह है, मेरे पहला संग्रह गजल का उड़ान आया, दूसरा जो आसमान से आगे किताब आनी थी, तो मैंने जगजीत जी को फ़ोन किया कि जगजीत जी मैं चाहता हूँ कि इसका जो लोकार्पण या किताब का विमोचन जो भी कहते हैं ना, तो मैं आपके हाथों से करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने कहा कि अलग से प्रोग्राम या डेट वेट क्यों करते हो, नेहरू सेंटर में मेरा उनका केयर का एक सेंटर प्रोग्राम हुआ करता हर साल, कैंसर पीड़ितों के लिए वो कंसर्ट करते थे, तो मेरा वो फला जिनको वो नेहरू सेंटर प्रोग्राम है, उसी दिन आ जाओ, किताब ले आओ, फिर अपन कर लेंगे। तो ठीक है, मैंने कहा कि, और मैं किताब लेके चला गया वहाँ पे, लेकिन ये था कि वो बुलाएंगे और स्टेज पे सब हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें आवाज़ दूंगा, और फिर तुम किताब लेके आ जाना, और फिर अपन उसका। तो मैं ऑडियंस में बैठ गया जा करके, किताब लेकर के अपनी सारी, और उन्होंने वो गज़ल गाई, कंसर्ट चल रहा है उनका, उसमें दूसरी या तीसरी गज़ल गाई, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं,
1: वाह
0: तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो ये गज़ल गाई, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये जो गज़ल मैंने गाई ये हमारे प्यारे दोस्त शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है, और इत्तेफाक से वो यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, और आज उनकी किताब का भी हम चाहेंगे कि हो जाए। तो मैं किताब लेके गया, स्टेज पर गया, उन्होंने रिव्यू खोली और सबके सामने, ऑडियंस के सामने वो जो होता है एक तरीका, वो किया, क्लैपिंग वैपिंग हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने रोका इशारा, बोले राजेश रुकिए। तो मैंने कहा पता नहीं आप क्या बाकी है। तो फिर उन्होंने, उनका म्यूज़िक कंसर्ट चल रहा है, मतलब गजलें चल रही हैं, सुर साजिंदे स्टेज से सब, तो उन्होंने साउंड वाले को बोला कि ये एक माइक इधर लगाओ, स्टैंडिंग माइक। तो मैं, तो वो एक माइक लगाया, और फिर उन्होंने कहा कि ये राजेश वो गजल सुनाइए, जाने कितनी उड़ान बाकी है, जो आखिर में रिकॉर्ड किया।
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: कि जब मैंने गजल शुरू की, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, तो मैंने ये पढ़ाई है, तो जगजीत जी वो म्यूजिक के साथ शुरू हो गए,
1: वो गाने लगे। वाह वाह वाह,
0: वो गाने लगे। किसी शायर को इतना बड़ा ब्लेसिंग, इतना बड़ा आशीर्वाद, प्यार क्या होगा कि वो पढ़ रहा है और उसी वक्त वो सिंगर।
1: क्या बात है, अनमोल यादें, शानदार शानदार। यहाँ मुझे लगता है कि आप, आपसे कुछ सुना जाए अब वापस।
0: तो ये शेर मतलब देखें, ये कब चाह के मैं मशहूर हो जाऊं,
1: वाह
0: ये मेरी दुआ है अपने बारे में, ये कब चाह के मैं मशहूर हो जाऊं, ये कब चाह के मैं

0: बस अपने आपको मंजूर।
1: वाह वाह वाह, क्या बात, शानदार, बहुत बढ़िया, क्या बात।
0: अगर आप खुद को इस स्वीकार स्वीकृत नहीं है तो फिर मतलब क्या बाकी चीजों का।
1: वाह,
0: ये कब चाह के मैं मशहूर।

0: जाऊं, बस अपने आप को मंजूर हो जाऊं। और इशारे देखे खास
1: इरशाद,
0: बहाना कोई तो ऐ ज़िंदगी

0: लिए मजबूर
1: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है,
0: बहुत शुक्रिया। ये कब चाह कि मैं ऋषिर
1: इरशाद,
0: अगर हम अपने आप में टटोलें तो हम खुद अपने आप में कितना है, हम एक बहुत कुछ चीजें समझ चुकी हैं और हम खुद कितने रह गए ये देखें। ये कब चाह के मैं मेरे अंदर से घर दुनिया निकल जाए,
1: मेरे अंदर से घर दुनिया निकल जाए,
0: मैं अपने आप में भरपूर।
1: क्या बात है, क्या बात है, शानदार है, क्या बात है, क्या बात है।
0: मेरे अंदर से घर दुनिया निकल जाए, मैं अपने आप में भरपूर हो जाऊं, ये कब चाह के मैं। और इस गजल का आखिरी शेर, खास शेर
1: इरशाद,
0: आईने पे बहुत शेर आप लोगों ने सुने होंगे अलग अलग, ये कब चाह के मैं ना बोलूं सच तो कैसा आईना मैं,
1: वाह, ना बोलूं सच तो कैसा आईना मैं,
0: ना बोलूं सच तो कैसा आईना मैं, जो बोलूं सच तो चक ना चू।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, इसे फिर पढ़िए, वाह वाह वाह वाह।
0: न बोलूं सच तो कैसा

0: शुक्रिया।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं अब ऑडियंस के लिए तो फोरम ओपन करता हूं, आप में से कोई अगर सवाल पूछना चाहे तो ये माइक है और आप पूछ सकते हैं।
2: सर मेरा नाम धीरज पुरोहित है। सर मैं शायरी से जुड़ा हुआ ही एक प्रश्न पूछ रहा हूं और मुझे उसका मैं क्षमा चाहते हुए कूटनीतिक नहीं लेकिन सच्चा उत्तर चाहिए। दिल्ली के एक शायर हैं, उनका शेर इतना प्रसिद्ध हुआ जो कि मुझे बिल्कुल नागवार गुजर रहा है कि शायद ये शेर की श्रेणी में नहीं है। उनका शेर है कि कोई भी शेर अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई भी शेर अच्छा या बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। सर ये क्या सही है? यानी कोई भी मिठाई मिठाई नहीं होती, यानी जो मिठाई होती है वो सब एक ही कैटेगरी की होती है, उनमें भी तो विविधताएं होती है ना, तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं?
1: बड़ा मुश्किल सवाल है
2: लेकिन सर मैं आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति से जरूर।
0: नहीं बिल्कुल सही है पुरे जी, वो शेर की सच्चाई अलग है कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अच्छे गायक बुरे गायक में फर्क होता है, अच्छे शायर बुरे शायर में फर्क होता है, अच्छे कहानीकार बुरे कहानीकार में फर्क होता है, हर अच्छे अच्छे खिलाड़ी और बुरे खिलाड़ी में फर्क होता है। तो लेवल और स्तर का तो फर्क होता है, मतलब जैसे सुर में गा देने को सिर्फ गाना नहीं बोलते, गाने में असर होना चाहिए। असर
1: क्या प्यारी बात है
0: ना, गाने में असर होना चाहिए।
2: जी सर आपके आपके उत्तर का तात्पर्य यह है कि वो मुकम्मल शेर तो है लेकिन शेरों में भी वर्गीकरण जरूर है,
0: जिसमें असर है वही सच्चा शेर।
2: जी जी।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया
2: यार, ये सब बड़े बड़े शायर वहाँ पे आते रहे, तो वो जब मैंने देखा कि दो मिसरों में पूरी बात हो जाती है, और गीत जो है ऐसा आसान भी नहीं है कि आप गीत से लेकर आसानी से शायरी में आ जाए और दो पंक्तियों में कहना शुरू कर दे, लेकिन वो उस विधा ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया, बांधा। मैंने उसमें कोशिश की और वो मेरे यार दोस्तों को, सब हम उम्र लोगों को ठीक लगने लगी और बात कुछ जम गई, और फिर मैं वो कहने लगा तो फिर गज़ल का ही जादू मुझ पे सवार हो गया वो शेर कहने पे, तो वो मैंने की। तो फिर जब हुआ तो मैंने गजल को अपनाया और फिर शायद गजल ने मुझे अपना लिया। जी
0: क्या बात है।
3: नमस्ते सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई नया नया शायर बनना चाहता है तो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या क्या पढ़ना चाहिए, विचार कहाँ से आते हैं, क्योंकि कविताएं बहुत से लोग लिखते हैं और वो बहुत ही अलग अलग तरह की कविताएं आजकल हो रही हैं, वैसे ही शेर भी बहुत ही अजीब तरीके के हो रहे हैं जिनको शेर शायद नहीं भी बोला जा सकता है, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक अच्छी दिशा में बढ़ सके।
0: ये लड़की अपने लिए पूछ रही है।
2: नेहा बहुत अच्छा सवाल है बेटा, और खास तौर से आपकी जनरेशन के लिए, इस दौर में कुछ चीजें आसान भी हुई हैं और कुछ चीजें गलत भी हुई हैं। ये सोशल मीडिया का जो दौर है जिसमें ओपन माइक और सोशल मीडिया पे फेसबुक, ट्विटर है ना, और व्हाट्सएप और ये सब, इसमें आपने, आपका शौक है सिर्फ, और आपने दो लाइन लिखी और उनको मान लिया कि, जैसे दीप्ति जी ने कहा कि मान लिया कि ये शेर है बस, और उसको आपने पोस्ट भी कर दिया, और आपके जो जान पहचान के लोग हैं, हम उम्र लोग हैं या परिचित लोग हैं, वो उस पर वाह वाह भी कर देंगे, है ना, और वो दाद मिलना भी शुरू हो गई और सारा कुछ हो, और उससे एक गलत फहमी पैदा हो गई कि मैं तो एक्सेप्ट कर ली गई या कर लिया गया, मैं शायर हूँ। जब हम जैसे लोग शुरू हुए थे तो ये सब नहीं था, हम सिर्फ गोष्ठियों में होते थे, एक दूसरे को सुनते थे, सुनाते थे, और उसके बाद आत्मविश्वास जैसा कुछ चीज़ आती थी, फिर अखबारों को भेजते थे, पत्रिकाओं में भेजते थे, फिर वहाँ एक संपादक जैसी कोई चीज़ हुआ करती थी जो उसको देखता था कि वाकई ये गज़ल है या नहीं है, तो अब तो संपादक भी गायब हो गए, तो ये इतना आसान नहीं था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें सोशल मीडिया ने आसान तो कर दी हैं, लेकिन आपकी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। आपको अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, और लगातार पढ़ना चाहिए, लगातार सुनना चाहिए। ये जुनून का काम है, और वो अगर जुनून है तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे और सक्सेसफुल होंगे। जी
0: रेडियो की तरफ वापस लौट रहा हूँ सवाल के ज़रिए। जब अचानक ये तय हुआ कि सखी सहेली कार्यक्रम शुरू होना है, वो दिन याद है सर आपको?
2: जी मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, लेकिन वो जमाना याद है, और बिल्कुल हंगामों वाले दिन थे।
0: बिल्कुल अचानक सिग्नेचर ट्यून बन रही है, कॉन्सेप्ट बन रहा है,
2: डेट तय हो जाती है कि फलां से शुरू करना,
0: लॉन्च होना है बस, और उसके बाद अब आपके ऊपर है कि आप अपनी तैयारी,
2: तो उसके बाद फिर वो सिलसिला सिग्नेचर ट्यून से लेके यूनुस है और राजेश, अपने जोशी,
0: राकेश जोशी
2: एक्सपर्ट, ये दोनों लोग जो थे मशीनों के मास्टर और सिग्नेचर ट्यून के तो एक्सपर्ट हैं दोनों के दोनों। राकेश जी अभी मौजूद नहीं है, लेकिन ये विविध भारती की जितनी सिग्नेचर ट्यून्स हैं, ये इन दोनों का करिश्मा है, इन दोनों का कमाल है।
0: जी जी, और शुक्रिया।
2: तो फिर सिग्नेचर ट्यून भी बनी और सब चीज़ें, सिलसिला शुरू हुआ, और बहुत अच्छी टीम और बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्राम शुरू हुआ, और पहले ही प्रोग्राम से लोगों का दिल लोगों ने जीत लिया। थैंक यू।
0: बिल्कुल, यहाँ कमलेश जी मौजूद हैं, मुझे लगता है कि मैं अपना माइक उनको देता हूँ, सखी सहेली की शुरुआती याद के बारे में वो भी अपनी कुछ बात कहे।
4: सखी सहेली की याद तो ऐसी है कि वो कभी भूल ही नहीं सकते। जैसे ही हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया, लोगों की चिट्ठियाँ आना शुरू हुई और लोगों ने लिखना शुरू किया कि ये केवल महिलाओं के लिए क्यों है प्रोग्राम, पुरुषों के लिए क्यों नहीं है। और दूसरी एक बड़ी जो खास मेरे साथ घटना घटी, किसी ने चिट्ठी लिखी कि अगर ये महिलाओं का प्रोग्राम है तो कमलेश पाठक प्रोड्यूसर कैसे है। उसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि कमलेश पाठक खुद प्रोग्राम में बैठे एक बार तो बताएं कि पुरुष नहीं है, एक महिला है। और जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया तो लगा मेरा थोड़ा लोकल टच है बोलने में, तो शायद पसंद नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि उनको मेरा बोलना ही अच्छा लगने लगा और बहुत सारी चिट्ठियां आने लगी कि आपका जो लोकल टच है, जो क्योंकि विविध भारती बहुत रिमोट में भी सुना जाता था ज्यादातर, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। निमी जी आप बताइए।
5: मैं क्या बताऊं, मेरी बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं। कई बार मैं जब रिटायर हो गई उसके बाद भी मुझे प्रोग्राम करने के लिए बुलाया जाता था। वो ज़माना ऐसा था कि रिटायर्ड लोगों को भी बुलाते थे।
6: हम लोग रेडियो की दुनिया से मुशायरों की दुनिया में आते हैं। और सवाल मेरा ये है कि राजेश जी, आप पूरे विश्व में मुशायरे पढ़ रहे हैं और बहुत कामयाब हैं, बहुत नाम है आपका हर जगह, लेकिन ये मुशायरों की जो दुनिया है, पहली बात तो ये कि इसमें प्रवेश कैसे हुआ, दूसरी बात यह कि इतना साफ सुथरा लिखते हैं आप, तो वहां कैसे जगह मिली?
0: क्या प्यारा सवाल है, बहुत सही,
2: धन्यवाद दीप्ति जी। मैंने अब नेहा को जवाब देते हुए जो बात कही कि हमने जिस दौर में शुरू किया, हमारी ग्रूमिंग, हमारी स्कूलिंग कहना चाहिए शायरी में भी कुछ ऐसी हुई कि उस वक्त अदाकारी का कोई काम भी नहीं था। मतलब ये अदाकारी शुरू हुई है बहुत बाद में जाकर के, जो मैंने नाम बताया आपको, अली सरदार जाफरी, मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, बशीर बद्र, निदा फाजली, तो ये हमारे बड़े लोग थे, सीने गुलाम रब्बानी ताबा, तो ऐसे लोगों को तो सुन सुन के हम स्टेज की तरफ आकर्षित हुए
0: जी।
2: तो इनके कोई अदाकारी नहीं, शायरी है, प्योर शायरी है ना। और खुमार साहब तरनुम के इतने बड़े बादशाह
0: जी
2: है, मजरू साहब भी तरनुम सुनाते थे, तो ये हुआ। और फिर जो आपने कहा ना कि एंट्री आपकी कैसे हुई, तो मेरी एंट्री तो गीत से हो गई थी मंच पे, तो मंच का विश्वास जो आ गया था, ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करते हैं और ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया था गीत के। जयपुर में जो मेरा बड़ा मुशायरा हुआ, जिस मेरी एंट्री हुई और जिससे मुझे सब जगह जाने का एक तरह से वो पासपोर्ट मिला, वो था नेहरू सेंटर का मुशायरा, और निदा साहब ने उसकी निजामत की थी। उन्होंने मुझे पहला मौका दिया नेहरू सेंटर के मुशायरे में, ये 87 की बात है, 86 में बॉम्बे आया, 87 में नेहरू सेंटर का बड़ा मुशायरा जिसमें निदा साहब ने संचालन किया, और मैं उसके शुरुआती शायरों में से था। उस वक्त मंच पर सारे अली सरदार जाफरी, मजरू साहब, कैफी साहब, खुमार बाराबंकी, निदा साहब, बशीर बद्र, मुमताज राशिद, जफर गोरखपुरी, कोई बड़ा नाम लीजिए जो नेहरू सेंटर का मुशायरा ऐसा होता था, बड़ा मुशायरा
0: जी जी।
2: और सुनने वालों में आपको हैरानी होगी, सुनने वालों में होते थे और थे उस वक्त दिलीप कुमार,
0: वाह,
2: अजीत फिल्म एक्टर, तो ऐसे बड़े बड़े लोग, तो ऑडियंस खचाखच भरा हुआ नेहरू सेंटर, ये हर साल का उनका वो था। तो और मैं बिल्कुल बॉम्बे में, एक तरह से मेरी शुरुआत ही थी, नेहरू निदा साहब ने मुझे सौभाग्य मेरा कि उन्होंने मौका दिया, वो पहली गजल पढ़ी और वो गजल मुझसे दो बार सुनी गई, मतलब बार बार मुझे प्यार मिला उस गजल ने, इतना प्यार दिया, इतनी पहचान दी और इतना आत्मविश्वास दिया, और उससे फिर वो एक पहचान बात से बात निकलती है और लोगों से लोगों तक पहुँचती है, और वो उसकी कैसेट वगैरह, जैसे दुबई के कैसेट आने लगे, इधर इधर के कैसेट दुबई जाते थे, तो एक बात पहुंच गई कि भैया ये शायर है जो अच्छा पढ़ता भी है, सब कुछ है, तो इस तरह से एक एंट्री हुई। तो मुझे नाटक करने की या अदाकारी करने की और उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया गया और अब तक किया हुआ है।
0: बिल्कुल सर, तो उसी गंभीरता से अब आपकी अगली गजल हम सुनना चाहेंगे। कौन सी वाली? जो नेहरू सेंटर में सुनाई थी?
2: नहीं, वो सुना चुका पहले, वो जाने कितनी
0: उड़ान,
2: उड़ान
0: बाकी है।
2: हाँ,
0: वही थी।
2: हाँ।
0: तो कोई और गजल सुनते हैं।
2: ये गजल भी मेरे लिए खास गजल है। हाँ, तो ये उर्दू में बहुत पुरानी परंपरा है, ये बहादुर शाह जफर के ज़माने से बल्कि हो रही है, बड़े बड़े उस्ताद भी जो हैं वो तरही गज़ल कहते हैं, यानी कि एक मीटर दिया जाता है और उसमें हर एक शायर अपने अपनी गज़ल कह के लाता है। तो रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रज़ा लाइब्रेरी, जिसमें रिसर्च का काम होता है, तो उन्होंने एक तरह मुशायरा कराया, तो एक मीटर देते हैं, एक पंक्ति देते हैं, लाइन देते हैं, उस पर अब हर शायर अपनी अपनी गज़ल लेके आता है। तो हिंदुस्तान भर के शायर वहाँ पे अपने अपने क्षेत्र में जो प्रतिनिधि शायर थे, मुंबई से मैं गया था तो मैंने ये गज़ल कही, और मेरा सौभाग्य, मेरी खुशकिस्मती कि ये गज़ल वहाँ मुझसे बहुत प्यार से दो बार सुनी गई और सब दिग्गज मौजूद थे उर्दू दुनिया के वहाँ रामपुर में, तो उसने एक मुझे बहुत अलग तरह का आत्मविश्वास दिया। मैं पढ़ रहा हूँ। अब क्या बताएं, टूटे हैं कितने कहाँ से हम,
0: क्या
2: अब क्या बताए टूटे हैं कितने, कहाँ से हम खुद को समेटते हैं यहाँ से

से हम। और ये शेर, क्या जाने किस जहां में मिलेगा हमें सुकून, क्या जाने किस जहां

0: गर्मी से खफा आसमान से।
1: वाह वाह वाह,
0: शुक्रिया। अब क्या बताए तू। और ये गजल का खास शेर, एक लफ्ज शब्द होता है शराब, एक तो शराब है जो कि बहुत लोग पीते हैं, एक शराब यानी जो मृग जल होता है, यानी रेगिस्तान में पानी होता नहीं लेकिन पानी जैसा दिखता है, मिराज जिसे बोलते हैं, मृग मरीची का है ना जो कुछ है। हाँ, तो अब ये शेर देखें। अब क्या बताए टूटे हैं, अरे शेर, अब तो शराब ही से, अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास।
1: अब तो शराब से ही बुझाने लगे हैं प्यास,
0: अब तो शराब ही से।

0: क्या बात है
1: इसे फिर बढ़िए।
0: अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास लेने।

बताएं। और शेर, गजल का शेर जीत जी देखें खास। मिलते नहीं है अपनी, मिलते नहीं।

0: क्या बात है।
1: शुक्रिया। अब क्या बताएं। और एक अलग सा शेर है, एक जमाना था कि टीवी पर अक्सर वो नार्को टेस्ट का बहुत जोर था, इसका नार्को टेस्ट, ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, अपराधियों का ये अक्सर होता था। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि ऊपर वाले ने एक मशीन हर इंसान के बॉडी में फिट की हुई है जो ये बताती है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और ये शेर में ढल गया, देखें
0: इरशाद।
1: अब क्या बताएं टूटे कितने कहां से हम, लेकिन हमारी आंखों ने कुछ और

0: से हम
1: वाह वाह वाह क्या बात है,
0: अब क्या
1: बात
0: है? बताए टूट, और गजल का आखिरी शेर, अब क्या बताए टूटे हैं गम बिक रहे थे मेले में,
1: वाह
0: गम बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम पर,
1: क्या बात है, क्या बात है, गम बिक रहे थे,
0: गम बिक रहे

0: क्या महत्व आकाशवाणी का रहा है और आकाशवाणी की इस 90 बरस की यात्रा में ये जो पूरी यात्रा है इस पर आपकी क्या टिप्पणी है?
1: मैं आकाशवाणी परिवार का सदस्य हूं और रहूंगा। इसी ने मुझे एक सांस्कृतिक संस्था ने जिसको सुन मतलब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उस संस्थान में एक मामूली से कार्यक्रम, पहले मैं कैजुअल युवाणी जब शुरू हुआ था जयपुर में तो युवाणी का ऑडिशन देने गया था। एक युवाणी के आर्टिस्ट के तौर पर मैंने कार्यक्रम में भाग लेना शुरू किया और वो सुख अलग ही था कि जब आप ऑडिशन में सेलेक्ट हो गए हैं और आपको ये लगे कि अब आप आकाशवाणी में कवि के रूप में और नाटक कलाकार के रूप में कि आपकी आवाज़ अब आकाशवाणी पर आएगी, वो एक अलग थ्रिल था, वो एक ज़माना ही अलग था। तो मेरा तो सफ़र ही, हालांकि मैं रंगमंच पत्रकारिता सब कुछ की मैंने, लेकिन मेरा क्रिएटिव सफ़र जो जिसमें संगीत भी है, जिसमें नाटक भी है, जिसमें लेखन भी है और कार्यक्रमों का अलग अलग संयोजन भी है, तो मेरा जो क्रिएटिव जो सफ़र है वो शुरू से ही, जो मैंने इतना साल 1980 से लेके 2012 तक गुजारा अलग अलग पदों पर, अलग अलग केंद्रों पर और ख़ास तौर से विविध भारती, और मैं जयपुर को याद करूंगा कि जयपुर ने मेरी नींव रखी और विविध भारती ने मुझे एक वो आकाश दिया कि मैं सब जगह अपनी बात अपनी परिकल्पना को साकार कर सकूँ। तो विविध भारती के अलावा मैं आकाशवाणी के 90 साल की बात करूँ तो ये वो संस्थान है जो अगर दुनिया हिंदुस्तान के कोने कोने में कोई चीज पहुंचती है तो आकाशवाणी है। न अखबार पहुंचते हैं, टीवी तो बहुत बात की चीज है और बाकी तो सोशल मीडिया तो खैर अभी कल ही पैदा हुआ है सब कुछ। तो एक जमाना था कि पूरे हिंदुस्तान को जोड़े रखने वाली कोई चीज थी तो या तो फिल्म थी या आकाशवाणी, फिल्म में पहुंचती थी और यह आकाशवाणी, लेकिन फिल्म देखने के लिए आपको पैसा देना पड़ता था और आकाशवाणी के लिए आपको, जिसका सफर हिंदुस्तान को जोड़े रखने में, बनाए रखने में, और आज भी जितनी रीच हमारे इस माध्यम की है शायद किसी माध्यम की नहीं है, और इस माध्यम को जितना सम्मान दिया जाए, प्यार दिया जाए, सम्मान दिया जाए और इसकी इज्जत की जाए और इसका एहसान माना जाए, 90 साल होने के बाद या होने पर इस आकाशवाणी के लिए अपना धन्यवाद भी देता हूँ, कृतार्थ भी उसका और शुभकामनाएं भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत शानदार महफिल आपके साथ रही है और यूं लगता है जैसे बातों का सिलसिला कभी खत्म ना हो, लेकिन वक्त की अपनी एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। चलते चलते आपसे एक गजल सुनना चाहेंगे, आपके मन की गजल।
1: रंग मौसम का हरा था पहले,

0: कितना घना था पहले, बाद में मैंने बुलंदी को छुआ, बाद में मैंने बुलंदी को छुआ, बाद में मैंने बुलंदी को छुआ, अपनी नजरों से गिरा था पहले, रंग मौसम का हरा था पहले, पेड़ ये कितना घना था पहले। और ये शेर हम अक्सर घर के बुजुर्गों से कहते हैं कि आप रहने दें, आपको ये मालूम नहीं, आपको ये नहीं आता, हाँ आप इस ये और ज़माना है, हाँ अब ये नहीं चलता। और अब ये शेर देखें,
1: जी
0: हम भूल जाते हैं कि कभी हम भी उसी मोड़ पे आएंगे।
1: जी
0: और ये शेर देखें आप, रंग मौसम का हरा था पहले, जो नया है वो पुराना होगा,
1: वाह, जो नया है वो पुराना होगा।
0: जो नया है वो पुराना होगा, जो पुराना है नया था
1: क्या प्यारी बात
0: पहले,
1: है, वाह वाह वाह वाह वाह,
0: शुक्रिया। जो नया है वो पुराना होगा, जो पुराना है नया था पहले, रंग मौसम

0: और ये शेर खास तौर से हिंदुस्तान के लिए, मसला कब थी इबादत गाहें।
1: वाह,
0: मसला यानी प्रॉब्लम और इबादत गाहें हमारा पूजा स्थल। मसला कब थी इबादत गाहें, दिल में इंसान के खुदा था पहले।
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मसला कब थी इबादत गाहे, दिल में इंसान के खुदा था पहले, रंग मौसम का हरा था पहले। और ज़ुबैर का आखिरी शेर
1: इरशाद,
0: मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, आईना मुझ पे हंसा था।
1: ओ, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है,
0: बहुत शुक्रिया। मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, आईना मुझ पे हंसा था पहले, रंग मौसम का हरा था पहले। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: क्या बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है, बहुत शुक्रिया कि आप इस महफिल में आए और आपने सृजन भारती की इस महफिल को रोशन किया सर।
2: और अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, दीप्ति मिश्र जी को हम आमंत्रित करेंगे आज की हमारी मुख्य अतिथि साहिबा। मैं बताना चाहूंगी, एक शानदार शायरा, जानदार अभिनेत्री और कवयित्री के रूप में लोकप्रिय हैं दीप्ति जी। आपकी 4 किताबें आ चुकी हैं, बर्फ में पलती हुई आग है तो है, और बात दिल की कह दे कह तो दें, ये उर्दू में है, और एक किताब और है, यहाँ वहाँ कहाँ,
3: और एक और आ गई है तुम्हारे लिए।
2: तुम्हारे लिए स्वागत है। और आपकी रचनाओं को गुलाम अली साहब, कविता कृष्णमूर्ति ने, हरिहरन जी ने, उदित नारायण जी ने, श्रेया घोषाल, सोमा घोष, कविता सेठ और मधुश्री जैसी बड़ी कलाकारों ने अपनी आवाज भी दी है। तो दीप्ति जी आपका स्वागत है। इनकी चंद पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी लिखी हुई, जिससे तुमने खुद को देखा हम वो एक नजरिया थे, हमसे ही अब कतरा हो तुम, हमसे ही तुम दरिया थे। सारा का सारा खारापन हमने तुमसे पाया है, तुमसे मिलने से पहले तो हम एक मीठा दरिया थे, हम एक मीठा दरिया थे। दीप्ति जी
4: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या कहूँ, अभिभूत हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जहाँ पे राजेश रेड्डी साहब परफॉर्म कर रहे हैं उस कार्यक्रम में मैं मुख्य अतिथि हूँ। कि राजेश जी से मेरी पहली मुलाकात मेरे ख्याल से 2002 या 3 में एक रेलवेज का प्रोग्राम था जिसमें निदा साहब के साथ आप आए थे, वहाँ हम लोग की मुलाकात हुई, हम लोगों ने मुशायरा पढ़ा। उसके बाद बहुत एक लंबा सफ़र साथ में रहा, हम लोगों ने बहुत सारे मुशायरे साथ में पढ़े, यात्राएँ की। राजेश जी का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में थोड़े समय कहना चाहूँगी कि ये बड़े संजीदा किस्म के इंसान हैं, और बहुत चुप रहना, बहुत कम बोलना, बहुत रिजर्व रहना, तो इनको जानना बड़ा मुश्किल होता है। आप बरसों बरसों साथ रहिए लेकिन इनको खोल पाना, इनको जान पाना बड़ा मुश्किल होता है। और आज का ये कार्यक्रम वाकई बहुत अच्छा रहा, मैं बधाई देना चाहूँगी। इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहिए। मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो श्रोता हैं वो तो अच्छा सुनना चाहते हैं, लेकिन जो शायर है, जो कवि है, वो सहृदय श्रोता ढूंढता रहता है। वो चाहता है कि उसको ऐसे श्रोता मिले जहाँ पे वो अपना दिल खोल सके, उसको वो जगह नहीं मिलती तो वो अपने दिल के दरवाजे बंद रखता है और सिर्फ उतना खोलता है जितना सामने की पात्रता होती है। तो जब उसको ऐसा पात्र मिल जाता है तो उसका दिल खुल जाता है, और आज वही हुआ है। राजेश जी ने दिल खोल के जो है अपनी बात कही, यह है कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म और रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया।
5: क्या बात?
4: सच को मैंने सच कहा,

0: जब कह दिया तो कह दिया, अब जमाने की नजर में यह हिमाकत है तो है। जल गया परवानागर तो क्या खता है शम की, जल गया परवानागर तो क्या खता है शम की, रात भर जलना जलाना उसका किस्मत है तो है। और ये सब दोस्तों के नाम, सारे दोस्त जिसके भी दोस्त जहाँ भी हैं, कि दोस्त बनकर दुश्मनों से वो सताता है मुझे, दोस्त बनकर दुश्मनों से वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। और है कि कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। आखिरी शेर है, क़ुर्बत का मतलब होता है निकटता, समीपता, कनेक्शन, कि दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां, दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में क़ुर्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म व रिवाजों से बगावत है तो है।
1: आप सुन रहे थे सृजन भारती के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम के संपादित अंश, और इस कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी थी मंदाकिनी जी आपने
2: जी, और धन्यवाद ज्ञापित किया था आपने यानी जयंत साहब ने।
1: और इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार,
3: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह दोपहर के 12 बजने वाले हैं, हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के दौरान हुए महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदार देश बनकर उभरा है।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुक्वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट के अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम एक या दो नहीं कई सारे कलाकारों को याद करने वाले हैं। तो यादों की महफिल में बहुत सारे कलाकारों की यादों के साथ हाजिर हूं मैं विधि जैन। नमस्कार। पहला गीत हम सुन रहे हैं अभिनेता प्राण जी, इन पर फिल्माया गया यह गीत हम सुनते हुए आज याद करते हैं अभिनेता प्राण को उनकी पुण्यतिथि विशेष दिवस पर।

हम सुन रहे थे उपकार फिल्म का यह गीत, जिसे गाया मन्ना डे ने, इंदीवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल में हम लेकर आए हैं हमारी कुछ यादें कुछ अलग अलग कलाकारों के साथ। तो आज के दिन बहुत सारे लोगों की, किसी की जन्मदिवस है, किसी का पुण्यतिथि है, तो हम उन सभी कलाकार को याद कर रहे हैं। और आज ये फिल्मकार विमल राय का जन्मदिवस है, तो आइए सुनते हैं उनके द्वारा सजाए गए, पिरोए गए इन गीतों को।

हम सुन रहे थे विमल रॉय कृत फिल्म बंदिनी से आशा भोसले की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और सचिन देववर्मन के संगीत के साथ यह गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अगला गीत, जिस फिल्म को भी सजाया है विमल रॉय ने। फिल्म है सुजाता, एस डी वर्मन, सचिन देववर्मन ने इसे गाया है और सचिन देववर्मन ने ही उसे संगीतबद्ध किया है। मजरूह सुल्तानपुरी के हैं बोल।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल, और आज हमने यादों की महफिल में सबसे पहले सुना अभिनेता प्राण पर फिल्माया गया यह गीत, और अब हम सुन रहे हैं फिल्मकार विमल राय पर के द्वारा सजाई गई फिल्मों के गीतों को। इसके बाद और भी कई किरदार हैं जिनको आज हम याद करने वाले हैं, तो आइए सुनते हैं विमल राय कृत फिल्म दो बीघा जमीन। इस फिल्म से लता मंगेशकर मनाडे और साथियों की आवाज में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी का है संगीत। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आइए हम सुनते हैं एक और गीत जो कि है विमल रॉय कृत फिल्म परख से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, शैलेंद्र के हैं बोल और सलिल चौधरी का है संगीत।
1: सजा

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। अभी तक हमने सुना अभिनेता प्राण पर फिल्माए गए गीतों को। हमने सुना विमल रॉय, एक बहुत खूबसूरत फिल्मकार के द्वारा फिल्माई गई फिल्मों के गीतों को। और अब हम चल रहे हैं, आज याद कर रहे हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार को। तो आइए सुनते हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार पर फिल्माए गए इन गीतों को।

0: हम सुन रहे हैं झुक गया आसमान, फिल्म से सुन रहे थे ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ सजा हुआ है यह गीत। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब यह प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में आज का पंछी फिल्म से लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। सुनते हैं ये गीत।

0: हम सुन रहे थे गोरा और काला फिल्म से यह गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ यह गीत। आइए सुनते हैं संदेश।
1: 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं, और तो और पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
2: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
3: सखी सहेली
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। जैसा हमने आपसे कहा था कि आज हम बहुत सारे कलाकारों को याद करेंगे, तो आज हम याद करने जा रहे हैं कुछ गीतों के साथ गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित को। आज उनका जन्मदिवस है। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में ये गीत।

हम सुन रहे थे अपनापन फिल्म से यह गीत सुलक्षणा पंडित, किशोर कुमार की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ में।

हम सुन रहे थे उलझन फिल्म का यह गीत किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में, और आज का कार्यक्रम यादों की महफिल समाप्त होता है यहीं पर। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

हम सुन रहे थे मुकेश और साथियों की आवाज में यह गीत, जिसे हमने लिया फिल्म धर्म करम से, और इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, राहुल देव वर्मन का है संगीत। और हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, और बड़ा प्यारा सा प्रश्न था कि ये बताइए कि अगर आपके जीवन में, हम सबके जीवन में अगर अंक नहीं है तो हमारा जीवन कैसा होगा। हमारे एक श्रोता ने पहले ही हमें उत्तर दिया है, जिसे हमने सुरक्षित कर लिया और आप सबके साथ उसे हम साझा करने वाले हैं। पर कुछ बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हमारे श्रोताओं की आई हैं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, अंक नहीं होंगे तो हम समय, तारीख, उम्र, रुपयों का हिसाब नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बगैर अंक के मैसेज भेज पाना और पाना और भेजना असंभव होगा, और संचार व्यवस्था नहीं चलेगी, और विविध भारती राष्ट्रीय सेवा की ओर से सुरीला सफर भी ठप हो जाएगा। नहीं, हम इसको कुछ और तरीके से कर लेंगे ना, लेकिन पता तो पिन कोड पर ही आता है ना, तो नंबर तो चाहिए, अंक तो चाहिए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अंकहीन जीवन शून्य होता है, गणित में भी शून्य की जिससे गुना किया जाए, फलसफा फल

0: फलाफल शून्य ही होता है, शून्यता की पूर्ति संख्या ही करती है और बस जोड़ घटाव करते रहते हैं और त्वरित फल के लालच में गुणा मत करें। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता कहते हैं कि वह कल्पना ही नहीं कर सकते अंक के बिना। अंक है तो नदी की लंबाई, गहराई, पर्वतों की ऊंचाई, सागर की विशालता, फूलों की रचना, पत्तों की सजावट, हाथ की उंगलियों की, सभी तरफ अंक बैठे हैं बिना अंक के। सही बात है, दुनिया तितर बितर हो जाएगी। हमारे श्रोता कहते हैं कि हार जीत का निर्णय भी नहीं कर सकते। सही बात है। भगवान शिव ने तो द्वितीय चंद्र को मस्तक पर धारित किया है और वह कहते हैं कि चंद्रमा की गति विधि भी अंक पर आधारित है। जी बिल्कुल, सब कुछ अंक पर ही आधारित है। हमारे श्रोता कहते हैं कि जीवन में अंक नहीं तो जीवन शून्य हो जाएगा और ज्योतिष विधा अपना अस्तित्व खो देगी। आप भी सही हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि अंक नहीं होंगे तो बिना अंकों के, रंगों के बिना, जैसे चित्रकारी संगीत के बिना किसी एक धुन की तरह होगा। अंक केवल गणित का हिस्सा नहीं है, वह हमारे जीवन, अस्तित्व, समय, भावनाओं सबके हिस्सा हैं। घड़ी की सुइयां, कैलेंडर, तारीखें सब अर्थहीन हो जाएंगी। हम सभी अपनी आयु का हिसाब नहीं रख पाएंगे, ना किसी खास पल का जश्न मना पाएंगे। बिना अंकों के पते, बैंक खाते, पहचान पत्र सब गायब हो जाएंगे। आर्थिक व्यवस्था बिखर जाएगी। प्यार, दूरी, भावनाओं को माप नहीं पाएंगे। अंक एक दूसरे को जोड़ते हैं, लय देते हैं। बिना उनके बिना दुनिया केवल एक अराजक और दिशाहीन कोहरा बनकर रह जाएगी। बहुत बढ़िया, हमारे एक श्रोता ने बढ़िया उत्तर दिया। उन्होंने लिखा है, अंक ना होते तो हमें मैथ्स से छुट्टी मिल जाती क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ। कितने स्वार्थी होते हैं ना लोग, गणित से छुट्टी पाने के लिए अंकों को ही खत्म करने की बात करते हैं। पर फिर भी वह बहुत अच्छा लिख रही हैं। वैसे तो अंकों का आइडिया मानव मन में प्राचीन काल से ही होगा, बस उसकी प्रणाली आर्यभट्ट और अन्य गणितज्ञों ने बनाया है। इसके बिना सब कुछ अधूरा रहता, उम्र का कुछ पता ही नहीं चलता, है ना। कितनी अच्छी बात है। और प्रश्न बड़ा दिलचस्प है, कहती है बहुत कुछ लिखा जा सकता है लेकिन पोस्ट बड़ा हो जाएगा। जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, आज का सुरीला सफर अंकों से जुड़ा है। अगर देखा जाए तो अंक गणित का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, इसकी शुरुआत प्राचीन काल मेसोपोटामिया, सुमेरियन मिश्र और भारत में लगभग 3000 वर्ष पूर्व पहले व्यापार और निर्माण की जरूरत करने के लिए पूरी की गई थी। इसे व्यवस्थित वैज्ञानिक रूप देने के लिए ब्रह्मगुप्त ने 7वीं सदी में शून्य के उपयोग को स्पष्ट किया, ऋणात्मक संख्याओं के साथ अंकगणितीय नियमों को लिपिबद्ध किया। चलिए, आपने बहुत सही बात कही है। उसके साथ अंक नहीं होगा तो क्या होगा, हम सब जो जुड़ रहे हैं जुड़ नहीं पाएंगे, ऐसा लिखा। दशमलव शून्य हमने दिया है तो चांद पर नहीं जा पाएंगे, ये भी हमारे श्रोता कह रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने कही हैं कि अंक नहीं होंगे तो एक बड़ी सी इबारत भी लिखी है, लेकिन उस इबारत में से हम वही छोटी बात करते हैं कि वो कहते हैं कि संतुलन नहीं हो पाएगा, ब्रह्मांड नहीं चलेगा। अंकहीन होगा तो हम पाषाण युग में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, अक्षर हमें बोलना सिखाते हैं, अंक हमें जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं, और अंक ना हो तो जीवन शून्य हो जाएगा। बहुत सारी बातें आप सभी ने बताई और इन सभी बातों के बाद में हम आप तक गीत पहुंचाना चाहते हैं, जो अगला गीत है। एक बात मन में आती है कि किसी श्रोता ने लिखा कि अंकों की गिनती 3000 वर्षों पहले हुई, पर उसके पहले भी भारत में सभ्यता थी, वो सभ्यता बिना अंकों के कैसे होती, जरा विचार कीजिएगा। सभ्यता बहुत पुरानी है, जब विश्व कुछ नहीं जानता था तब भारत में महाभारत हो रही थी, और उसके पहले भी हमारी सभ्यताएं हुई हैं, तो अंक जाने कब से हैं और जाने कब तक रहेंगे। और हमने कहा था, हमारे एक श्रोता ने पहले ही उत्तर दे दिया है, तो उनका उत्तर ऐसा है कि आज के कार्यक्रम में बातें अंकों में होंगी और मुझे लगता है अधिकांश गाने भी अंकों में ही बजेंगे। जीवन से यदि अंक निकाल दिए जाए तो उम्र का आकलन नहीं होगा, न समय की गणना होगी, न रुपए पैसों की गिनती होगी, न दूरियों का अंदाजा लगा पाएंगे। बिना अंकों के आधुनिक टेक्नोलॉजी भी असफल हो जाएगी। आज मोबाइल, कंप्यूटर, एटीएम, सारी मशीनें अंकों पर आधारित हैं। आज का जो विकास है उस पर सर्वाधिक योगदान अंकों का है। फिल्मी गीतों में भी अंकों के पर आधारित बहुत गीत बने हैं और उन्होंने कुछ गीतों का नाम लिखा है। ये गीत आपके और आपके देश के नाम, बस बता दीजिए इस गीत में अभिनेता कौन है, अभिनेता का नाम बताइए और सुनिए ये गीत और विचार कीजिए अंकों के ऊपर। अगला प्रश्न आपके लिए यह देकर जा रही हूँ कि आपके जीवन में कौन सा अंक बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई एक अंक होता है, उसे कहीं भी लिखा हुआ देखकर, या घड़ी में देखकर, या चलते फिरते किसी गाड़ी में देखकर ऐसा लगता है, हाँ ये मेरा अंक है, ये मेरे पिता का जन्मदिन भी हो सकता है, ये मेरी बहन का कोई दिन हो सकता है, ये मेरा अपना कोई दिन हो सकता है, मेरे अपने का कोई दिन हो सकता है। जरा विचार कीजिए वो कौन सा अंक है जो आपके जीवन में बड़ा प्यारा है, आपको बड़ा प्यारा है, बताइए वो अंक, साझा कीजिए हमारे साथ और बताइए इस गीत के अभिनेता कौन है।
1: अब जीरो

हम सुन रहे थे ये गीत पूरब और पश्चिम फिल्म से, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा हुआ ये प्यारा सा गीत। और हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहला बड़ा प्यारा सा प्रश्न था कि इस गीत के जो अभिनेता हैं उनका नाम बता दीजिए, तो आप सबने सही उत्तर दिया, मनोज कुमार जी। उन्हें हम प्रेम से भारत भी कहने लगे थे शायद, है ना। और हमने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा था कि आपका पसंदीदा नंबर या अंक कौन सा है, तो हमारे एक श्रोता जो हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग अपने अपने अंक बताए हैं। मैं सभी के अंक पढ़ सकूं या ना पढ़ सकूं, परंतु आपका जो अंक है जो आपको बहुत बार दिख रहा है, हो सकता है वो आपको इसलिए दिख रहा है कि शायद उससे आपको कई बार प्यार मिल रहा हो, है ना। तो हमारे श्रोता लिखते हैं, किसी को दो अंक अच्छा लगता है, दो के बिना संसार अधूरा है, सही बात है। दस अंक किसी को अच्छा लगता है। और एक और बात इन्होंने लिखी है कि जो कंप्यूटर का एजुकेशन है वो बाइनरी नंबर सिस्टम्स पर चलता है, जीरो एंड वन। और सोचिए कि कितनी भी बड़ी संख्या है, उस पूरी संख्या को या आपके नाम को या किसी भी चीज़ को, बड़ी से बड़ी इमारत को भी और बड़ी से बड़ी इमारत को भी, सब कुछ को वन एंड जीरो में कन्वर्ट किया जाता है, बिट्स और बाइट्स में कन्वर्ट करके उसके बाद स्टोर किया जाता है। ये बड़ी कहानी है, पर नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है उनको, उसके बाद ही आप कंप्यूटर पर बात कर सकते हैं। इस बात का जिक्र इन्होंने यहाँ पर किया है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सात नंबर अच्छा लगता है, क्योंकि सात का अद्भुत महत्व है, सात दिन है, सात स्वर हैं, इंद्रधनुष के सात रंग हैं, सात महाद्वीप हैं, सात समुद्र हैं, सप्तर्षि सात हैं और विवाह के फेरे भी साथ होते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है, समय के साथ उसका पतन भी हुआ। अगर पतन नहीं होता तो शून्य से ही प्रारंभ करना नहीं पड़ता। जी पतन तो नहीं हुआ, हाँ, लेकिन बदलाव ज़रूर हुए हैं, उस बात को हम मानते हैं। और अब हमारे श्रोता ने उत्तर, कई सारे उत्तर दिए हैं। किसी ने कहा कि 9 उन्हें पसंद है क्योंकि वो पूर्णता का नंबर है, कोई कहता है कि उन्हें 7 नंबर पसंद है, किसी को 8 पसंद है, किसी को 3 पसंद है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ये वो कहती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि त्रिनेत्र होते हैं, त्रिशूल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई शिव जी के बारे में कि उनके साथ होता है। कोई कहता है कि शून्य उन्हें बड़ा पसंद है क्योंकि किसी भी अंक के आगे कितने भी शून्य लगा दो वो उसको बड़ा करता ही जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई पंगा लेने के लिए आता है तो शून्य से गुणा कर दो तो शून्य हो जाता है। और किसी को 6 पसंद है, किसी को कोई अंक 5, 25, 30, 29, कई सारे अंक पसंद है, किसी को 12, 21 पसंद है, किसी को 1 अंक पसंद है, सबको अलग अलग पसंद। कोई कहता है न्यूमरोलॉजी में अंकों का बड़ा महत्व है, लेकिन उसको वो ध्यान नहीं देते। कोई कहता है कि 13 अंक लोग गलत मानते हैं और 13 बहुत अच्छा अंक होता है, लेकिन भारतीय सभ्यता में 13 अंक को गलत माना ही नहीं गया शायद। किसी को 18 नंबर पसंद है और किसी को कोई और अंक पसंद है, सबके अलग अलग अंक पसंद है। और मैं सभी के अंकों का स्वागत करती हूँ क्योंकि हर अंक अति विशिष्ट है। अब मैं चल रही हूँ अगले प्रश्न की तरफ और अगले गीत की तरफ। अगला प्रश्न बहुत सिंपल है, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है और 100 करोड़ बराबर 1 बिलियन। ये तो हो गई अंग्रेजी संख्याएं। भारत की संख्याओं में आपको कहां तक की संख्या पता है? भारत की संख्याओं में करोड़ के बाद 100 करोड़ नहीं होता, कुछ और होता है, है ना। 10 लाख तो 10 लाख ही रहते हैं, वो मिलियन नहीं होते क्योंकि उसके बाद 11 लाख हो जाते हैं, है ना। तो आप बताइए, आपको भारत की सभ्यता की संख्याओं में कहां तक की संख्याएं पता है? जल्दी से हमारे साथ साझा कीजिए। और ये भी बता दीजिए कि अगले गीत के ये जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, यानी गायक जो है वो कौन से हैं, बताइएगा।

है कि ये जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ भी ना केवल और केवल अंकों पर आधारित है, और इस ग्रंथ में बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं, और इस ग्रंथ में जो भी बातें हैं, जैसे तात्विक विचार हैं, वैद्यक, अणु विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र, इतिहास, संस्कृति विवरण, वेद, भगवद गीता, सब कुछ समाहित है। और इसे लिखा था, पहले इस ग्रंथ को जो लिखा था वो कुमुदेंदु सूरी ने इसकी रचना की है, और इसके कई सारे अनुवाद किए गए हैं, और पहला कन्नड़ में, कन्नड़ लिपि में 2003 में अनुवाद किया गया था, और इसमें 6,00,000 पद्य हैं, और इस आकार के हिसाब से बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसके बारे में भी जानकारी मुझे मिली थी, तो ये सारी जानकारियाँ आप जो दे रहे हैं, मैं जो दे रही हूँ, हम सब इकट्ठी करते हैं और इन ग्रंथों के पढ़ने के लिए भी आगे बढ़ते हैं, ताकि हमें भी अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाए। और अब हमारे श्रोताओं ने कहा कि वो सुडोकू सॉल्व करते हैं, और मैं आपको बताऊं कि आप तो सॉल्व करते हैं, कई सारे बच्चे सॉल्व करते हैं, इस बात को देखा गया है कि जो सुडोकू सॉल्व करते हैं वो बच्चे बहुत होशियार होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हमारे श्रोता ने लिखा, पहले ज़माने में कोई इंसान को राजदंड के गुनाह में दंडित यानी दंड दिया जाता था, कौड़ी का दंड करते थे, तो हमारे यहाँ कहावत ये हो गई कि आदमी कौड़ी का भी नहीं है। जी, 5 सिद्धांतिका गणितीय पुस्तक है, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, वराह मिहिर के द्वारा रचित ये रचना है। जी बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम आपको अगले गीत की तरफ बनाते पहुंचाते हैं, और हमारे श्रोता ने बताया कि वो वर्ग पहेली सुलझाती हैं, बहुत अच्छी बात है, अंकों से वो दूर दूर तक नहीं जाती क्योंकि उन्हें कठिन लगती है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आप अंकों के पास जाते हैं तो अंक आपके दोस्त बन जाते हैं, और ये अंक आपके जीवन में बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं, तो अंकों से दोस्ती कीजिए। और सुनते हैं हम अगला गाना, 5 रुपया 12 आना। ये इस गीत के गायक कलाकारों के नाम बता दीजिए, और सुनिए ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। तो ये प्यारा सा गाना हम सुन रहे थे चलती का नाम गाड़ी फिल्म से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देवर्मन का संगीत और गायक कलाकारों के नाम हमने आपसे पूछे थे तो आपने बड़े मजेदार तरीके से उत्तर दिए हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले। बिल्कुल सही। अब हम चल रहे हैं अगली कुछ बातों की तरफ और मैं आपके लिए दो प्रश्न देने वाली हूँ। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि भगवान स्वामीनारायण ने अपने ग्रंथ वचनामृत में भूगोल का वर्णन किया है। बिल्कुल सही है। बचपन में एक आना 5 पैसे का एक सिक्का और 1 पैसे का तांबे का सिक्का मिलता था जी, 6 पैसे का मिलता था जिसमें मलाई बर्फ पोकचा मिल जाता था जी। बिल्कुल सही बात है। 1978 में मैट्रिक इम्तहान में गणित कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों में 100 में से 100 नंबर आए थे और इनका पसंदीदा विषय त्रिकोणमिति था। चलिए जल्दी से बताइए अगला प्रश्न यही है कि आपको गणित में कितने आए थे। ऐसे ऐसे सबके सामने गणित के अंक नहीं पूछने चाहिए, इस बात को मैं भी समझती हूँ, तो क्षमा कीजिएगा। हमारे श्रोताओं ने बताया कि ये फिल्म उन्होंने कल रात ही देखी और आज रात ही मतलब यानी कल रात ही उन्होंने देखी और बहुत हंसी वो इस बात पर। हमारे श्रोता ने बताया कि 18 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत गीता में और 18 अध्याय को पढ़ना समझना बहुत बढ़िया बात है। आपने भी बहुत रोचक बात साझा की। हमारे श्रोता लिखते हैं, अरे ओ संभा कितने आदमी थे सरदार दो, देखा गब्बर का फेमस डायलॉग भी अंकों पर आधारित जी। बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारे श्रोताओं ने लिखा है और हमारे श्रोताओं ने मैं जिस ग्रंथ की बात कर रही थी उस ग्रंथ के बारे में जिक्र भी किया था जिसके बारे में उन्होंने मुझे बताया। मैं आपके सामने अगला प्रश्न रख रही हूँ क्योंकि मैंने इतने सारे गीत आपको सुनाए हैं और तो एक दर्द देना तो बनता है, वो दर्द ये है कि बताइए रोमन अंकों में एक एक्स लिख दिया जाता है, एक्स अंग्रेजी अल्फाबेट का एक्स वाई जेड का एक्स है ना, तो एक्स का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए कि एक्स का मतलब क्या होता है और ये दर्द मेरी तरफ से आपके लिए।

इस गीत के साथ ही हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि एक्स का अर्थ क्या होता है रोमन अंकों में, और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, 10 होता है। और इस 10 के साथ मैं एक अंतिम प्रश्न मैं आप तक पहुंचा रही हूं, और ये अंतिम प्रश्न ये है कि अंकों की दुनिया में एक कविता है अंकों की, गुलजार ने लिखी है, वो कविता का शीर्षक अगर आप मुझे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो अगला गीत है, इस गीत के गीतकार का नाम बता दीजिए, और सुनिए ये गीत जो आप सबको पसंद है।

0: इंतजार।
1: कौन है
0: वो जिससे

हम सुन रहे थे तीजा फिल्म का यह गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाज में। हमने आपसे पूछा कि इसके गीतकार कौन है। गीतकार हैं जावेद अख्तर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ ये गीत। और हमने आपसे पूछा था गुलजार की वो कविता जिसे आप सुनते हैं और जिसमें अंकों की बात की गई है, तो एक शरीर में कितने, दो, दस तोला, बोसाकी का पंचतंत्र, ऐसी कई सारी कविताएं हैं और केवल एक ने नहीं कई सारे लोगों ने लिखी हैं और हम उन सबको सुन रहे हैं। ऐसे ही गणित और अंक आपके जीवन में सदा साथ रहे। हमारी श्रोता ने बताया कि उनको गणित में कम नंबर आते थे लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो शत प्रतिशत अंक लगभग लेकर आने लगे हैं। और ये बात सच है कि बच्चे मेहनत करते हैं तो माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती है। आज के इस कार्यक्रम सुरीला सफ़र में बस इतना ही। गणित के साथ पले, बढ़े, खेले और आगे बढ़े, बस यही जीवन है। बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार। आज त्रिवेणी में उस तैयारी की बात जो भीड़ में भी अलग से पहचान बनाती है। ये तो सच है कि भीड़ में भी केंद्र बिंदु बन के ज्यादातर तैयारी पहली तैयारी पहनावे की होती है। ये सच है कि सुरुचिपूर्ण पहनावे और रखरखाव से व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है और पहले पहल ध्यान भी आकर्षित करता है। लेकिन असली प्रभाव का पता तब लगता है जब कोई सूटेड बूटेड व्यक्ति या सजी सवरी महिला मुंह खोलते हैं, यानी बात करते हैं। बात करने का सलीका सिर्फ समाज में ही नहीं, घर में भी कमाल का असर दिखाता है। क्रोध में आपाद मस्तक डूबा घर का कोई सदस्य भी प्यार मनुहार से मान जाता है। यही तो है संवाद कौशल, यानी बातचीत का ढंग। बात कहने की कला का मतलब ना तो बातें बनाना है और ना ही बातों में उलझाना है, बल्कि अपनी बात इस तरह रखना है कि सुनने वाले व्यक्ति पर उसका पूरा असर हो। ये तभी होगा जब विचार स्पष्ट, शब्द और टोन संयत हो और अपनी बात कहने के साथ ही दूसरे को भी कहने का मौका मिलेगा।
1: सुनिए,
2: कहिए, कहिए,
1: सुनिए, सुनिए,
2: कहिए, कहिए ना।

0: सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए सुनिए
1: कहिए हाँ हाँ
0: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: पहले सोचो फिर बोलो, बचपन की ये सीख बड़े काम की है, क्योंकि इसी से समय स्थान और परिस्थिति का ध्यान रखकर बोलने की आदत पड़ती है। सामने सामने बातें हो रही हो या मंच से अपनी बात कही जा रही हो, बोलते वक्त समय पर नजर रहे, साथी किस तरह बात करनी है इसका भी ध्यान रहे, तभी तो बातों में वजन आता है। बिना सोचे समझे बोलने के बजाय चुप रहकर सुनना कहीं अच्छा है। बहुत पुरानी या पहले की बातों पर ध्यान देना यूं तो जरूरी है। उदाहरण के लिए अतीत का जिक्र किया जा सकता है अगर कोई सलाह देनी हो, लेकिन बातचीत का संदर्भ वर्तमान से जुड़ा रहे तभी बातों का असर होता है।

बातचीत में टोन यानी लहजा भी बहुत खास भूमिका निभाता है। कैसे किसी को संबोधित किया जाता है, किसी बात पर कैसे असरदार ढंग से हामी भरी जाती है या बिना किसी को चोट पहुंचाए असहमति प्रकट की जाती है, ये जताने में टोन साथ देती है। बात संयत ढंग से मीठे लहजे में कही जाए तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी बात रखी जा सकती है। तुलसीदास जी ने कहा भी है, कोयल काको देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो कर लेत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर से

0: हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे EPFO के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: EPFO की एमिनिस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो।

0: और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
2: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
4: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
5: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की ग्वो हन्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं पहला नगमा देवदास फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, साहिर लुधियानवी के हैं बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत।

0: हम सुन रहे थे राजहट फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।

0: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो है फिल्म झनक झनक पायल बाजे से। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें हैं। हसरत जयपुरी के हैं बोल और वसंत देसाई का है संगीत।

तत मुरल के धुन सुन आई दाते जमुना के तट पर जमुना के तट पर नीरत करत उठ हिरत फिरत उठ हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिग्दिगना दिग्दिगना दिग्दिगिधो दिग्दिगिधो दिग्दिगिधो राम तत तई राम तत तई राम तत तई।

का धगन का किट सक सक धगन का जी धगन का ता धा किट सक धगन का ता धगन का मान गई राधा

0: हम सुन रहे थे परिवार फिल्म का यह गीत, लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत बड़ा भाई फिल्म से, आशा भोसले और तलत महमूद ने इसे गाया, प्रेम सक्सेना ने इसे लिखा और नाशाद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत, जो है नया दौर फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और ओपी नैयर का है संगीत।

सौतन फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे थे। ये लता मंगेशकर ने गाया, सावन कुमार ने इसे लिखा और उषा खन्ना ने इसे संगीतबद्ध किया। इस गीत को मांगने वालों की बात, इनकी इस गीत को पसंद करने वालों के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब हम चल रहे हैं हमारे अगले गीत की तरफ। कई बार हमारे श्रोता हमें ही हैरत में डाल देते हैं और कहते हैं कि आप अपनी पसंद का कोई गीत सुना दीजिए। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं ने हमसे हमारी पसंद के गीत मांगे हैं उनका नाम हम आपके सामने बता देते हैं और उसके बाद सुनवा देते हैं अपनी पसंद का एक गीत। हमारे श्रोताओं में गांव नागड़ावास तहसील मालिया या मियाना से कुछ हमारे श्रोता हैं, गुलाम रसूल राउमा, दिलावर राउमा, रियाज राउमा, इरसाद राउमा और शम्स राउमा, इन सभी ने हमारी पसंद का गीत सुनने को कहा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे मेरा साया फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ ये गीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और बड़ा प्यारा सा कार्यक्रम मनचाहे गीत, जो हम सभी पसंद करते हैं। और उसी मनचाहे गीत में एक और चिट्ठी हमारे पास आती है, और बड़ा अच्छा लगता है जब ये पोस्ट कार्ड हमारे हाथों में बहुत समय के बाद वापस आते हैं, तो बड़ी खुशी।

मिलती है। और हमारे श्रोता हैं बोरोले नगर चौपड़ा महाराष्ट्र से, उनका नाम है मच्छिंद्र पाटिल, कल्पना पाटिल। उन्होंने फरमाइश की है अगले गीत की, यानी अगला गीत मांगा है उन्होंने, तो आइए सुनते हैं वो अगला गीत उनकी पसंद का।

हम सुन रहे थे वापस फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत हमारे अगले श्रोता की पसंद का, जो कि उन्होंने भेजा है उदयपुर से। ये खत हमारे पास आया है, एक पीला पोस्ट कार्ड जिस पर बहुत मोहब्बत से लिखा गया है कि ये गीत उन्होंने हमसे मांगा है। नाम है अशरफ खान, जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और मंजू निम्मी, इन सब ने मांगा है ये गीत नाग मंदिर फिल्म से। बहुत खूबसूरत सा गीत है, आइए सुनते हैं।

0: हम सुन रहे थे नाग मंदिर फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और कार्यक्रम मनचाहे गीत यहीं पर समाप्त होता है। आगे भी आपकी इसी तरह के पोस्ट कार्ड और चिट्ठियों का इंतज़ार रहेगा हमें। आप अपनी चिट्ठियां भेजते जाइए और हमारे साथ जुड़ते जाइए मनचाहे गीत कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत।

सूखा पेड़ किसी को छाया भी नहीं दे सकता, लेकिन यदि कोई स्वयं छाया बनकर सूखे पेड़ को धूप से बचाना चाहे तब उसे क्या करना चाहिए। इसी भाव भूमि पर खड़ा है ये सूखा पेड़, यानी आज का हमारा नाटक। तो आइए सुनते हैं लेखक और प्रस्तुतकर्ता लोकेंद्र शर्मा का नाटक सूखा पेड़।

0: और ये रिकॉर्ड प्लेयर, रिकॉर्ड बजाकर कहाँ चले गए सब?
1: सब नहीं गए, मैं हूँ।
0: ओहो जीजा जी, मगर आप ये अंधेरा करके क्यों बैठे हैं?
1: यूं ही बत्ती जलाने को मन नहीं किया, वैसे भी अंधेरे में संगीत अच्छा लगता है, नहीं?
0: अच्छा तो लगता है बाबा, मगर ये है गलत।
1: गलत क्यों? अरे ये बंद क्यों कर दिया?
0: गलत इसलिए श्रीमान जीजा जी, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, मैं घर आ चुकी हूँ। और बंद इसलिए किया क्योंकि आप शाम के समय सुबह का राग सुन रहे थे। देखिए देखिए खिड़की से बाहर।
1: भाई अब हम तुम्हारी तरह संगीत का हिसाब किताब तो जानते नहीं, बस कुछ सुनने को जी किया सो तुम्हारी अलमारी में से रिकॉर्ड निकाला और बजाने लगे। अब अकेले बैठे बैठे दीवार आखिर कब तक घूरे?
0: अकेले? मगर पल्लू कहाँ है?
1: कहकर तो गई थी कि क्लब जा रही है, मगर इस समय कहाँ है वो नहीं मालूम।
0: ओहो ये अच्छी छुट्टियां बिताने आए हैं आप दोनों मियां बीबी नैनीताल, एक पूरब को जाता है दूसरा पश्चिम को, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
1: समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आता मीनाक्षी, इसलिए मैंने तो समझने की कोशिश ही छोड़ दी है। पर एक बात बताओगी?
0: पूछिए।
1: कुछ चाय वाय पिलाने का प्रोग्राम हो सकता है क्या?
0: ओ श्योर श्योर, क्यों नहीं, जरा कपड़े बदल लूं, दिन भर के पहनी हुई साड़ी है ना।
1: अच्छी बात है, तुम साड़ी बदल कर आओ, तब तक मैं किचन में जाकर गैस पर पानी रखता हूँ।
0: क्यों आप क्यों, ये काम आपका नहीं है और आप तो वैसे भी मेहमान है मेरे।
1: मेहमान तो इस दुनिया में सभी हैं मीनाक्षी देवी।
0: बस बस रहने दीजिए, अब फिलॉसफी की क्लास मत शुरू कीजिए, वैसे ही दिन भर स्कूल में पढ़ा कर आ रही हूँ।
1: पढ़ा कर आ

0: रही हो क्या, इसीलिए मुझे भी स्टूडेंट समझकर डांटोगी?
1: नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप चुपचाप बैठिए, चाय मैं बनाऊंगी।
0: चाय भले ही तुम बनाओ मीनाक्षी, पर चुपचाप बैठने के लिए मत कहो। सारा दिन बीत गया है बिना बोले।
1: पल्लू क्या सुबह ही चली गई थी?
0: गई तो तीसरे पहर थी, मगर दो पहर तक सोई, उसके बाद घंटे भर नहाई, फिर घंटे भर सिंगार किया, फिर चली गई।
1: दिल्ली में भी ऐसे ही चलता है क्या?
0: कभी खुद ही आकर देखो ना।
1: यानी अगर खुद आकर देखना मुमकिन नहीं हो तो आप बताएंगे नहीं?
0: बताने जैसा कुछ है ही क्या?
1: सच कह रहे हैं, कुछ नहीं है।
0: देखो, अब तुम चाय बनाने की बात को गोल मत करो।
1: ओह सॉरी, मैं चेंज करके ये आई
0: और मैं किचन में ये गया।
1: जाइए, मगर कीजिएगा कुछ नहीं।
0: नहीं करूंगा बाबा, मगर वहाँ बैठकर तुम्हें चाय बनाते हुए देख तो सकता हूँ।
1: ओहो, मुझे देखने का प्रोग्राम है, तब तो जरा बन संवर कर आना पड़ेगा।
0: जैसे भी जाइए, अब आप जल्दी से जाइए और खटक।

0: पल्लू, क्या तुम सचमुच खाना नहीं खाओगी?
1: अरे कहा ना बाबा, मिसेस सिन्हा ने मुझे आज इतना इतना खिला दिया है कि लगता है कल तक भूख ही नहीं लगने वाली।
0: हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
1: अच्छा,
0: मालूम है आज जीजा जी ने अपने हाथों से आलू के पराठे बनाए हैं।
1: ओहो, तो फिर अभी तक खाए क्यों नहीं?
0: तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ना।
1: लेकिन प्रभाकर को तो मालूम था कि आज मेरा डिनर मिसेस सिन्हा के साथ है।
0: ये मिसेस सिन्हा से बड़ी जल्दी दोस्ती कर ली तुमने। अभी 10 दिन ही तो हुए हैं तुम्हें नैनीताल आए हुए।
1: अरे 10 दिन तो बहुत है यार, दोस्ती तो 10 मिनट में हो सकती है।
0: कभी कभी तो 10 बरस में भी नहीं होती पल्लू।
1: हाँ, नहीं होनी हो तो 10 जन्म तक नहीं होती। पर तू जाना, जाके पराठे खा ले, मैं तो जरा देर रजाई में बैठूंगी। हाथ पांव तो सुन हुए जा रहे हैं। बाप रे बाप, तेरी नैनीताल की रातें तो बहुत ही ठंडी हैं यार।
0: कॉफी पियोगी क्या?
1: कॉफी तो ऐसा कर, पहले तुम लोग जाके खाना खा लो।
0: मेरी एक बात मानिए जीजा जी।
2: कौन सी?
0: आप एक पराठे की दुकान खोल लीजिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे। मजा आ गया।
2: अच्छे लगे तुम्हें?
0: कह तो रही हूँ, मैं आपकी दुकान की परमानेंट ग्राहक बनने को तैयार हूँ।
2: ना बाबा ना, तुम जैसी पेटू को ग्राहक बनाकर दिवाला नहीं निकालना मुझे अपनी दुकान का।
0: क्यों क्यों क्यों?
2: क्योंकि तुम खाओगी उधार और मेरा हो जाएगा बंटा ढार।
0: बंटा ढार तो लगता है आज अपना हो गया है। ओ, इतना खा लिया है कि अब उठा भी नहीं जा रहा।
2: तुम मत उठो ना, बैठी रहो, कुछ देर और बातें करते हैं।
0: यहाँ डाइनिंग टेबल पर? मालूम है क्या टाइम हो गया है? 9 बज चुके हैं रात के, और सर्दी के मारे कुल्फी जमी जा रही है। चलकर बिस्तर में सोइए, पल्लू आपका इंतजार कर रही है।
2: करने दो, मैं भी तो करता हूँ रोज रोज उसका इंतजार।
0: 10 दिन हुए हैं आपको नैनीताल आए हुए, और इन 10 दिनों में एक दिन भी आप दोनों को नॉर्मल नहीं देखा। इतने खींचे खींचे, आखिर बात क्या है?
2: बात क्या है यही तो मेरी समझ में नहीं आता मीनाक्षी, क्या आखिर बात क्या है? कभी कभी जिंदगी में बात बस इतनी ही होती है कि कोई बात नहीं होती। नो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बना रहे तो बात भी बनी रहती है, लेकिन
0: क्या हुआ? कुछ कह रहे थे आप, लेकिन क्या?
2: इस लेकिन के आगे कुछ नहीं है मीनाक्षी। जिंदगी में आदमी बहुत कुछ चाहता है, पर उसके रास्ते में जगह जगह लेकिन खड़े होते हैं। सारी कामनाएं एक लेकिन तक आकर रुक जाती हैं। मैंने भी शादीशुदा जिंदगी के बहुत मीठे मीठे सपने देखे थे। सपनों में प्यार के बादलों पर उड़ा था, रोमांस की हवाओं में तैरा था, लेकिन सपना तो बंद आंखों से देखा जाता है ना। आंखें खोलने पर तो कमबख्त जिंदगी नजर आ जाती है।

0: जीजा जी, अरे कहाँ हैं?
1: मैं यहाँ हूँ मीनाक्षी, छत पर।
0: ओ ऊपर, मैं आपके लिए कॉफी लाई थी।
1: यहाँ ऊपर ही ले आओ, आज की धूप बहुत मजेदार लग रही है।
0: वो तो होगा ही, आज संडे जो है, संडे तो सूरज का दिन होता ही है।
1: संडे छुट्टी का दिन भी तो होता है, जिसकी बदौलत तुम दिन भर घर में ही होती हो।
0: लेकिन मैं दिन भर घर में हूँ, क्या इसलिए आप ऊपर छत पर आ गए?
1: वो बात नहीं है, एक तो धूप में अच्छा लग रहा था, दूसरे तुम्हारे घर की इस छोटी सी छत पर आकर लगता है जैसे यहां से सारी दुनिया दिखाई देती है। देखो ना, दूर दूर तक बिछी चांदी के माथे वाली पहाड़ियां, पहाड़ियों से गलबैया डालकर लेटे रास्ते, और ऊपर इस कोने से उस कोने तक तना हुआ नीला कच्चा आसमान। सच मीनाक्षी, इतना बड़ा आसमान मैंने कभी नहीं देखा। शहर के आसमान को तो इमारतों की ऊंचाइयां खा जाती हैं, लेकिन यहां बैठकर जी करता है कि इस ढेर सारे आसमान की ताजी हवा को तलछट तक पी जाऊं।
0: लेकिन श्रीमान जीजा जी, फिलहाल आपको ये कॉफी पीनी है।
1: कॉफी? हाँ हाँ हाँ, लाओ लाओ लाओ। भाई, इस कुनमुनी धूप में गुनगुनी कॉफी जानती हो कैसी लगती है?
0: जैसे रजाई ओढ़कर पानी के टब में बैठे हो।
2: भाई हंसो मत, अपन तो पहले ही कहते हैं कि कविताबाजी में बात करना अपने बस का नहीं। आपकी तरह कोई कवि या फिलोसोफर तो है नहीं हम, बस सीधे सादे म्यूजिक टीचर हैं। सरगम चाहे सीधी गवा लो चाहे उल्टी, वही सात सुर आते हैं अपन को तो।
1: सात सुर तो बहुत हो गए मीनाक्षी, जीवन को सुरीला बनाने के लिए तो एक सुर का आना ही काफी है।
0: सुर का आना नहीं, सुर का मिलना।
1: हाँ, शायद ठीक कहती हो। मेरी बेसुरी जिंदगी का शायद यही कारण है कि मेरा और पल्लवी का सुर कभी मिला ही नहीं।
0: वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं तार ढीला है। पर मैं पूछती हूं, क्यों? आखिर इसका कारण क्या है?
1: कारण? मेरे और तुम्हारे सुर के मिलने का कारण क्या है?
0: जीजा जी,
1: मन के तार सितार के तारों की तरह मुर्दा नहीं होते मीनाक्षी, उन्हें कसने के लिए किसी औजार की जरूरत नहीं पड़ती।
0: मैं नीचे जाती हूँ।
1: ठहरो मीनाक्षी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
0: कोई ऐसी बात मत कहिए जीजा जी, जिसे सुनना मेरे लिए गलत हो।
1: तुम मुझे नाम लेकर क्यों नहीं बुलाती?
0: यही कहना था?
1: नहीं, कहना तो पता नहीं क्या था, लेकिन ये बताओ, अपने मेहमान को नैनीताल की सैर नहीं करवाओगे?
0: जी,
1: मेरा मतलब है आज तुम्हारी छुट्टी है, मौसम भी अच्छा है, कहीं घूमने नहीं चल सकते क्या?
0: एक शर्त पर, कि आप मुझसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं करेंगे।
1: इस शर्त पर नहीं करूंगा कि तुम मुझसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं पूछोगी।
0: जाने दीजिए, शर्तों का बंधन कोई अच्छी बात थोड़ी ही है।

0: ओहो, बोर कर दिया आपने तो।
1: क्यों भाई?
0: पिछले घंटे भर से बस यही पूछे जा रहे हैं, इस पेड़ का नाम क्या है, इस फूल को क्या कहते हैं, ये किस चिड़िया की आवाज है, ये रास्ता कहाँ जाता है। इसके अलावा जैसे करने को कोई बात ही नहीं है।
1: है क्यों नहीं, चलो तुम्हारी बात करते हैं।
0: मेरी? मेरी कौन सी बात?
1: यही कि जब तुम यूं तुनकती हो तो।
0: तुनकती मतलब?
1: हाँ मतलब जब तुम यूं किसी बात पर चिढ़कर नाक सिकोड़ती हो
0: तो
1: बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे तुम पहाड़न हो।
0: पहाड़न हूँ, ये क्या बात हुई? मैं तो हूँ ही पहाड़न, पहाड़ में पैदा हुई, पहाड़ में पली बढ़ी और पहाड़ में ही एक दिन देखना मरूंगी भी।
1: अरे भाई अब देखो, ये मरने वरने की बात मत करो।
0: अच्छा बाबा, नहीं करूंगी, तो भी रहूंगी तो पहाड़न ही, आपकी तरह पहाड़ थोड़े ही हो जाऊंगी।
1: पहाड़? मैं तुम्हें पहाड़ जैसा दिखता हूँ?
0: हाँ, ज्वालामुखी पहाड़।
1: ज्वालामुखी पहाड़।
0: और नहीं तो क्या, जैसे ज्वालामुखी पहाड़ को ऊपर से देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके भीतर कितनी आग है। आपका भी वही हाल है, भला इस तरह आपको हंसता देखकर कौन कहेगा।
1: कहो ना, रुक क्यों गई?

0: कुछ नहीं, ऐसे ही पागल हूं मैं भी।
1: नहीं मीनाक्षी, पागल नहीं हो तुम। तुम एक बेहद सेंसिटिव लड़की हो। ये पानी की धारा देखती हो, बिल्कुल इस पानी जैसी हो तुम, एकदम स्वच्छ निर्मल। कुछ बोलोगी नहीं?
0: शाम होने वाली है।
1: हाँ, वो नीचे अंधेरा धीरे धीरे सिर उठा रहा है।
0: और ऊपर ऊपर आसमान में भी तो देखिए कितनी रोशनी है, जैसे किसी ने सोने की पुताई कर दी हो।
1: मगर ये केवल थोड़ी ही देर, अभी देखते ही देखते सब कालिक में बदल जाएगा।
0: हमेशा बुझी बुझी निराशा फैलाने वाली नेगेटिव बातें ही करें, ये क्या जरूरी है?
1: कतई नहीं, और खास तौर पर जब तुम साथ हो तब तो बिल्कुल नहीं।
0: तो फिर?
1: तुम्ही ने कहा था कि ज्वालामुखी पहाड़ हूं मैं क्या करूं, कभी कभी अनजाने में ही भीतर का लावा फूट पड़ता है।
0: अच्छा पहाड़ साहब, अब इधर से आइए।
1: इधर? मगर पहाड़ जी, ये रास्ता तो लगता है कि किसी भूतिया हवेली की तरफ जाता है।
0: जी नहीं, ये शॉर्टकट है मंदिर का।
1: मंदिर?
0: हाँ, देवी का मंदिर। आइए।

0: कितना अच्छा लगता है ना, यहाँ इस समय रोज इसी तरह पूजा होती है। ये मंत्रों का स्वर, लोबान का धुआं, मंदिर का आंगन, सब कितना अच्छा लगता है, नहीं?
1: मुझे नहीं लगता।
0: अरे क्यों?
1: देवी देवताओं पर मेरा कतई विश्वास नहीं है।
0: एकदम नास्तिक है।
1: टोटल। इन पत्थर की मूर्तों की जगह मैं इंसानों में ज्यादा विश्वास करता हूँ।
0: धीरे बोलो, अगर देवी ने सुन लिया तो नाराज हो जाएंगी।
1: फिर क्या करेंगी नाराज होकर?
0: वो जो देवी बैठी है ना घर में, पल्लू देवी, उसे आपके खिलाफ भड़का कर चंडी देवी बना देंगी। क्यों हंसे क्यों?
1: भाई पल्लवी को तुमने पल्लू देवी अच्छा कहा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो?
0: कुछ नहीं, आप हंसते हैं तो अच्छा लगता है।
1: अरे हंस लेते हैं हम भी कभी कभी, जब तुम जैसा कोई साथ हो तो।
0: वो नीचे किसी की शादी हो रही है।
1: हाँ, घोड़े पर दुल्हन बैठी हुई है।
0: घोड़े पर नहीं, घोड़ी पर। और दुल्हन नहीं, दूल्हा। जिसे आप घूंघट समझ रहे हैं वो सेहरा है जनाब।
1: अच्छा भाई, वो इतनी दूर है ना, तो मैं समझा के। और क्या है कि ये अंधेरा है ना, तो पेट्रोमैक्स की रोशनी में कुछ ठीक से। वैसे एक सच्ची बात बताऊं तुम्हें, मुझे शादी ब्याह के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए ये सेहरा और ये।
0: हद हो गई, आखिर आपने भी तो शादी की थी। घोड़ी पर बैठे थे या मोटर में?
1: कुछ और बात करूं मीनाक्षी।
0: सुबह से देख रही हूँ, जब भी आपकी और पल्लवी की शादी के बारे में कोई बात शुरू करती हूँ आप टाल जाते हैं। आखिर बात क्या है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
1: इतने दिनों से देख तो रही हो, अब भी क्या कुछ कहने पर ही समझोगी?
0: समझना नहीं, जानना चाहती हूँ।
1: जानकर क्या करोगी, और उससे होगा भी क्या?
0: होगा भी क्या, शायद ठीक सोचते हैं आप। मेरे किए क्या हो सकता है, और शायद इसीलिए आपकी शादी के बारे में सवाल करने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं।
1: नहीं नहीं, वो बात नहीं है, आखिर तुम बहन हो पल्लवी की।
0: हाँ बहन हूँ, मगर मौसेरी। पल्लवी मेरी मौसी की लड़की है।
1: तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें सगा मानता हूँ।
0: सगा? सगा मानते हैं किस रिश्ते से?
1: रिश्तों के क्या नाम होना जरूरी है मीनाक्षी?
0: पता नहीं।
1: कहने को पल्लवी मेरी पत्नी है, पर पत्नी क्या ऐसी होती है? सच पूछो तो मेरी और पल्लवी की शादी दो परिवारों के बीच

0: और मेरे बारे में पूछा है तो एक बात मैं भी पूछूंगा।
1: पूछिए।
0: तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की?
1: जी
0: अपना सवाल दोहराऊं मैं?
1: बर्फ का पहाड़ बंजर होता है प्रभाकर बाबू, बर्फ में फूल नहीं खिलते।
0: अगर बर्फ पिघलकर धरती में जज्ब हो जाए तो?
1: रोज रोज कहां होता है ऐसा। बस एक बार हुआ था मेरे साथ भी, कई बरस हो गए उस बात को, अब तो लगता है जैसे पिछले जन्म की बात है। तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, पल्लवी गर्मियों की छुट्टी में नैनीताल आई हुई थी और उस बार वो अकेले

0: साले तू हाय सच्ची मीना, तेरा गाना सुनकर तो साले दिल का इना मीना डिका हो जाता है।
1: रहने दे रहने दे, झूठी तारीफ करने से जुबान कट जाती है।
0: ओले, ये झूठी तारीफ है? मुझे अगर थोड़ा सा भी गाना आता ना तो हाय हाय हाय आशिकों की लाइन लगा देती।
1: छी, कैसी बातें करती है?
0: अरे तू क्या जाने, हाय हाय हाय सच कहूं मीनाक्षी, अगर तू ये चश्मा ना लगाती और तेरे चेहरे पर ये दो चार चेचक वाले दाग नहीं होते ना, तो अपनी सुरीली आवाज की रस्सी में 20 लड़के बांध सकती थी तू।
1: लगता है तूने कई बांध रखे।
0: अरे अपन को साला गाना आता ही कहाँ है मीनाक्षी।
1: नहीं आता तो सीख ले।
0: नॉट ए बैड आइडिया। अच्छा चल ठीक है, इधर ला अपना सितार।
1: सितार नहीं, तानपुरा।
0: अरे हाँ हाँ यार, वो एक ही बात है, सितार कहो या तानपुरा, पर वो किधर गई तेरी सरगम वाली वो कॉपी? पता नहीं कहाँ रख देती है। ये रही। अब बोल बोल ना यार, कौन सा राग गाऊं? अरे
1: नहीं,
0: बोल ना।
1: नहीं नहीं, ये कॉपी मुझे दे।
0: हाँ मेरा राग भी तो सुन लेना कॉपी में से। अरे छुपी रुस्तम, कॉपी में ये फोटो किसका है?
1: मैं कह रही हूँ दे दे ये फोटो मुझे।
0: तो ये बात है बच्चू, इस फोटो का जादू है। हाय हाय, मैं भी तो कहूँ गले में से ऐसे ऐसे मीठे सुर कैसे फूट रहे हैं।
1: मैं कहती हूँ पल्लू, फोटो मुझे दे दे।
0: अरे देती हूँ बाबा, देती हूँ ना, देख लेते कोई अच्छी तरह से।
1: बस हो गया, अब दे दे।
0: हो गया, ये तो मैं समझ गई जाने मन, पर ये बता मेरी जान कब हुआ?
1: देख पल्लू तू
0: कब से चल रहा है तेरा ये मामला?
1: 3-4 महीने से।
0: अच्छा तो ये भी तो बता दे, कौन है ये तेरा बांका?
1: लड़का है।
0: अरे हाँ हाँ, वो तो मैं भी देख रही हूँ, मगर इसका नाम क्या है?
1: शेखर।
0: शेखर तेरी क्लास में पढ़ता है?
1: सीनियर है।
0: ये भी गाना गाता है क्या?
1: नहीं, सुनने का शौकीन है।
0: हाय भाई, है तो बहुत शानदार, पर असलियत में भी इतना खूबसूरत है कि सिर्फ फोटो में ही दिख रहा है?
1: देख कर बताना।
0: अरे यार यही तो मैं पूछ रही हूँ, कब मिलवाएगी?
1: शाम को।
0: अच्छा

0: कल तुमने अपनी जिस बहन से मिलवाया था, क्या नाम है उसका?
1: पल्लवी।
0: हाँ, पल्लवी। कितना नया नाम है, नहीं?
1: नहीं, नया काहे को, हिस्टोरिकल है, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने का। जरा एक मिनट ठहरो ना।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: देखो ना, यहाँ से नीचे झील कितनी सुंदर लग रही है, जैसे चांदी का फर्श हो।
0: मालूम है, अगर यहाँ से पांव फिसल गया तो इस चांदी के फर्श तक पहुँचते पहुँचते हड्डी पसली के कितने टुकड़े होंगे।
1: अगर तुम साथ रहो तो फिर हो जाए टुकड़े, किसे परवाह है।
0: जाने दो, आगे चलते हैं।
1: ओके।
0: अच्छा ये बताओ कि अब वो यहीं रहेगी?
1: कौन?
0: अरे वही तुम्हारी हिस्टोरिकल बहन पल्लवी।
1: यहाँ? यहाँ क्यों रहेगी, वो तो दिल्ली में पढ़ती है ना, यहाँ तो सिर्फ छुट्टियां बिताने आई है।
0: मतलब महीने

0: भर रहेगी।
1: हाँ महीने भर तो जरूर रहेगी, मगर क्यों?
0: नहीं ऐसे ही, बहुत सुंदर है तुम्हारी बहन, बिल्कुल जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं से निकल कर आई हो।
1: सगी थोड़े ही है, मेरी मौसी की लड़की है।
0: आई नो, सगी होती तो तुम्हारी सूरतें इतनी अलग अलग थोड़ी ही होती। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये बालों के जूड़ी से क्या बना लेती हो? पल्लवी की तरफ पोनीटेल क्यों नहीं करती?
1: तुम्हें अच्छी लगती है तो अब किया करूंगी।
0: कल झील में बोटिंग के लिए चले?
1: कल बोटिंग? लेकिन पल्लवी आई हुई है ना।
0: तो क्या हुआ, उसे भी साथ ले लेंगे, एक से भले तो, दो से भले तीन।
2: अरे मीनू की बच्ची, अभी तक किताबों में घुसे हुए, कब तक पढ़ती रहेगी? तुझे मालूम है ना कल मैं दिल्ली वापस जाने वाली हूँ।
1: वो तो ठीक है पल्लू, मगर इम्तिहान भी तो सर पर है।
2: इसीलिए आजकल किताबों का कीड़ा बनी हुई है, बाहर आना जाना सब बंद।
1: तेरे पास भी तो फुर्सत नहीं है मेरे से बात करने की।
2: अरे यार मैं तो आई ही मस्ती मारने हूँ। और फिर अपना तो ये है कि मौज कर लो जितनी कर सकते हो, ये दिन कोई साले लौट कर तो आने वाले है नहीं।
1: अपना अपना नजरिया है, मैं तो समझती हूँ आने वाले कल को खुशनुमा बनाना हो तो आज थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है।
2: अरे रहने दे यार अपने ये फिलोसफी, हानि तो भूख आज लगी है और तू कहती है रोटी कल खाएंगे।
1: तुझे क्या पता, एक दिन उपवास रखो तो अगले दिन खाना खाने में ज्यादा मजा आता है।
2: अब छोड़ना यार ये बुढ़ियों वाली व्रत उपवास की बातें, आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग। इन्हीं बातों ने ना तुझे मरगिल्ली बना रखा है। देख देख देख, मेरे जैसे जिंदा दिल होती ना तो किताबों में आंखें गढ़ा कर चश्मे का नंबर बढ़ाने की बजाय रोज शाम को किसी बॉयफ्रेंड के साथ डिस्को में डांस करती हुई नजर आती।
1: ना बाबा ना, ये सब ना मुझे अच्छा लगता है और ना ही शेखर को।
2: शेखर को? तो क्या तू अभी तक शेखर के नाम की माला जप रही है?

0: वो हंसी आज भी जैसे मेरे कानों में गूंजती है प्रभाकर बाबू, जैसे वो हंसी पल्लवी की नहीं मेरी तकदीर की थी, जो किसी श्राप की तरह मेरी जिंदगी पर छा गई। कितनी मूर्ख थी मैं, जो आईने में अपनी सूरत देखकर भी किस्मत पर शक नहीं हुआ। मुझे इतना भी ख्याल नहीं आया कि रेगिस्तान में सैर करने कोई नहीं आता, सब अजंता एलोरा जाना चाहते हैं।
1: सब नहीं मीनाक्षी, सिर्फ वही जो शेखर होते हैं, और शेखर हर कोई नहीं होता।
0: क्या पता कौन कैसा है, ये परखने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। बाद में एक अजीब सा डर था जिसे सीने में दबाए जिंदगी की डगर चुपचाप चलते चलते 35 बरस पार कर गई हूं, मगर पल्लवी की वो हंसी जैसे आज भी किसी प्रेत की तरह दोनों हाथों से मेरी गर्दन दबाए हुए है।
1: मेरी तरफ देखो मीनाक्षी, मेरी आंखों में देखो, क्या इन आंखों में तुम्हें कहीं झूठ की छाया दिखाई देती है?
0: कहना क्या चाहते हो?
1: दिल की पूरी सच्चाई से मैं ये कहना चाहता हूं मीनाक्षी कि तुम बहुत सुंदर हो।
0: प्रभाकर,
1: एक दिन पल्लवी ने तुमसे शेखर को छीना था, क्योंकि शेखर की नजरों में पल्लवी ज्यादा सुंदर थी, और आज उसी पल्लवी का पति तुम्हारी सुंदरता के आगे बिकने को तैयार है मीनाक्षी।
0: नहीं, सूखे पेड़ से तो किसी को छांव भी नहीं मिलती प्रभाकर बाबू।
1: मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूं मीनाक्षी, मैं तो चाहता हूं कि अपमान के उस प्रेत से तुम्हें मुक्त कर दूं जिसने तुम्हारी गर्दन दबाई हुई है।
0: नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अपमान के जिस शहर ने मुझे जीवन भर तड़पाया है, उसे मैं पल्लवी के गले में कैसे उड़ेल दूं? पल्लवी आखिर मेरी बहन है, इस शहर को तो मैं किसी पेड़ की जड़ों में भी नहीं डाल सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। ढूंढ होकर जीने का दर्द मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा, कौन जानेगा।

0: सूखा पेड़। अभी आपने ये नाटक सुना। लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे लोकेंद्र शर्मा।
1: ये है विविध भारती।

जी विविध भारती का मुंबई केंद्र है, FM 102.8 और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Entrepreneur क्या होता है? Who is an entrepreneur? उद्यमी कौन है? उद्यमी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा में हुई है. एक उद्यमी वो होता है जो किसी उद्यम के जोखिम को व्यवस्थित, प्रबंधित और ग्रहण करता है. उद्यम एक उपक्रम है, विशेष रूप से एक जिसमें उत्पादन के न्यूनतम चार कारक अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी शामिल है. जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर एक व्यवसाय की कल्पना करता है, उपक्रम उद्यम स्थापित करने के लिए साहसिक निर्णय लेता है, उत्पादनों के विभिन्न कारकों को समन्वय करता है और इसे एक शुरुआत देता है. तो इसमें आर्थिक गतिविधि शुरू करने में जोखिम और नवाचार लेने की इच्छा शामिल है. उद्यमी व्यवसाय उद्यम के मालिक होते हैं जो पूंजी का निवेश योगदान करते हैं और व्यावसायिक जीवन के दौरान अनिश्चितताओं का जोखिम उठाते हैं. उद्यमी और उद्यम जुड़े हुए हैं. एक उद्यम की सफलता उद्यमी पर निर्भर करती है. वो एक्शन ओरिएंटेड और अत्यधिक प्रेरित है. उनके पास लाभ के लिए आवश्यक इनपुट संसाधन एकत्र करने के लिए व्यावसायिक अवसरों का मूल्यांकन करना और सफलता की गारंटी के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने की क्षमता है. उद्यमी उत्पादन का मुख्य कारक है. वो नवचार उन्मुख है. वो उत्पाद के संबंध में निर्णय लेता है, अर्थात क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करे, कहाँ उत्पादन करे और उपभोक्ता कौन है या बाजार कहाँ है या किसके लिए उत्पादन करना है. ये उद्यमी है जो उत्पादन के सभी कारकों को जुटाकर उत्पादन प्रक्रिया शुरू करता है. यह व्यवसाय की सफलता या विफलता या लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार है. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं. हमारा नंबर है 09515227039. आई रिपीट 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com. एक उद्यमी जिसके पास उच्च स्तर की प्रशासनिक क्षमता, रचनात्मकता, आत्मविश्वास, संगठनात्मक कौशल, जिम्मेदारी की इच्छा, उच्च स्तर की प्रतिबद्धता, लचीलापन, ऊर्जावान और मेहनती, दूरदर्शिता, साधन संपन्नता और चतुराई है, उद्यम चलाने में सफलता की बेहतर संभावना है. उद्यमी की व्यक्तित्व विशेषताएं एक सामान्य व्यक्ति या मनुष्य से काफी भिन्न होती है. ऐसी कुछ विशेषताएं जन्मजात होती है और कुछ अर्जित की जाती है. उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के तहत आमतौर पर आयोजित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों की मदद किसी व्यक्ति में लक्षणों को और

0: विकास किया जा सकता है यदि वे कुछ हद तक उसमें मौजूद हो। दोस्तों, मैं अब उद्यमी बनने के गुण बताऊंगा, क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक उद्यमी बनने के लिए कुछ गुण आपके पास जन्मजात होते हैं और कुछ गुणों को आप अभ्यास करके और अपने अनुभवों के आधार पर विकसित कर सकते हैं। हम यहाँ एक उद्यमी बनने की योग्यता व गुणों के बारे में बता रहे हैं जिसे आप अपने अंदर विकसित करके एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो आइए उद्यमी के विभिन्न गुणों और विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर के बारे में जानेंगे लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। सोचने की शक्ति, यदि आप ठीक से सोचने और विश्लेषण करने में सक्षम हैं तो इसका मतलब है कि आप एक उद्यमी बन सकते हैं। आप भी अपने बिजनेस को अरबों टर्नओवर में बदल सकते हैं। व्यापार करने के लिए पैसा ज्यादा मायने नहीं रखता, आपकी सोचने और समझने की शक्ति अधिक मायने रखती है। इसीलिए अपने आइडिया के बारे में सोचें, विश्लेषण करें और उसे लागू करें। निर्णय लेने की क्षमता, एक उद्यमी को व्यवसाय चलाने के लिए कई निर्णय लेने पड़ते हैं, इसीलिए आप में समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। सफल होने के लिए आपको सही समय और सही जगह पर निर्णय लेना होता है। यह क्षमता बिजनेस की यात्रा में आपका भविष्य तय करती है। निर्णय लेने की क्षमता एक उद्यमी की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है जो उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में संतुलित निर्णय लेने में मदद करती है और विभिन्न बिजनेस आइडिया पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। यदि आपके अंदर पूरी सृष्टि और लोगों के लिए कुछ करने की भावना हो तो आप उद्यमी बन सकते हैं, क्योंकि सफलता प्राप्त करना उद्यमी का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। आप बिना सेवा भाव के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप समाज को कुछ अच्छा नहीं दे सकते। समाज को कुछ मूल्य दिए बिना आप एक सफल उद्यमी कैसे बन सकते हैं? इसीलिए लोगों के बारे में अच्छा सोचें और उन्हें कुछ वैल्यू दें। धैर्य रखना, धैर्य एक उद्यमी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जब भी आप एक उद्यमी बनने के बारे में सोचें तो ये ध्यान रखें कि जब भी मैं उद्यमी बनूंगा धैर्य रखूंगा। जीवन में भी इसका बहुत महत्व है। धैर्य के बिना उद्यमी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि यह पहला परीक्षा होता है और उसके बाद सफलता मिलती है। आपको धैर्य रखते हुए सीखते रहना होगा और बाजार की जरूरतों के अनुसार अपनी सेवाओं में सुधार करना होगा। कड़ी मेहनत करना, अगर आप में मेहनत और लगन की ताकत है तो आप उद्यमी बन सकते हैं। उद्यमी बनने के लिए यह सबसे जरूरी गुण है। कड़ी मेहनत के बिना आप उद्यमी नहीं बन सकते, क्योंकि उद्यमिता का दूसरा नाम मेहनत है। एंटरप्रेन्योरशिप आपसे 100% मांगती है। 100% दिए बिना आप इसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप अपने मन में यह तय कर ले कि मुझे कड़ी मेहनत करनी है और सफल होना है। ईमानदारी रखना है, आप ईमानदार हैं, इसका मतलब है कि आप एक सफल उद्यमी बनने में सक्षम हैं। अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो आप निश्चित रूप में असफल होंगे और पैसे कमाने के लिए आत्मविश्वास नहीं बढ़ पाएगा। ईमानदारी के बिना कोई भी व्यवसाय बाजार में अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इसीलिए यदि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपको ईमानदार बनना चाहिए। कुशल प्रबंधन, सफल उद्यमी वह है जो उद्यमी के सभी परिस्थितियों को सफलतापूर्वक संभाल सकता है। यह व्यवसाय का नियम है कि प्रबंधन जितना बेहतर होगा उतना ही अधिक अच्छा प्रदर्शन और विकास होगा। उद्यमिता की नींव बिजनेस प्रशंसा और प्रबंधन पर टिकी हुई है। यदि आपका व्यवसाय अच्छा है लेकिन इसे ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया तो यह निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। इसीलिए प्रबंधन कौशल में सुधार करें। मिलकर काम करने की शक्ति, एक सफल उद्यमी वह है जो अपने सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करता है, उनके सुख दुख में सहायक बनता है, सभी को अपने परिवार के सदस्यों की तरह मानता है और सभी के साथ मिलकर काम करता है। परिस्थितियों के अनुसार बदलना, एक उद्यमी हमेशा परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो निश्चित रूप से अधिक प्रतिस्पर्धा या नई तकनीक के कारण असफल हो जाएगा। कुशल नेतृत्व, एक सफल उद्यमी की पहचान उसकी नेतृत्व योग्यता है। एक सफल उद्यमी वो है जो सही समय और सही जगह पर सही निर्णय लेता है। नेतृत्व गुण हर इंसान में होता है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेने वाला और साथ मिलकर काम करने वाला व्यक्ति ही एक वास्तविक उद्यमी होता है। अगर आप में ये उद्यमशीलता की योग्यता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप में ये गुण नहीं है तो आप सीखकर और अभ्यास करके इसे अपना सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। With this, we conclude today's program. I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat, 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। जी विविध भारती का मुंबई केंद्र है, FM 102.8 और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के।

0: बहुत मजेदार बातें हुई हैं और चूंकि मेरा काम इन बातों को एक दिशा देना है, मुझे पीछे का एक सूत्र याद है जो हम छोड़ के चले आए थे कि इसकी बात आगे करेंगे, डॉक्टर श्रीराम लागू और सदाशिव अमरापुरकर के रिश्ते की बात।
1: हाँ जी, डॉक्टर लागू अब कैसे बताऊं मैं, जैसा मैंने मेरे शो में भी कहा हुआ है, उन्होंने कन्यादान प्ले जो था वो एक साथ किया,
0: तेंदुलकर वाला,
1: और उसमें डॉक्टर लागू को निर्देशित किया था पापा ने।
0: ये बहुत बड़ी बात मानी जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लागू एक दर्जे के कलाकार थे और उनको डायरेक्ट करना कोई आसान काम
1: नहीं, और उन्होंने मानना कि ये युवक है और ये मुझे डायरेक्ट करेगा, ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। तो उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ था, जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर लागू ऑलरेडी सामाजिक कामों में काफी बिजी थे और काफी इन्वॉल्व थे, तो ये जो बात है ना जो पापा के अंदर थी, पर उस बात को हवा देना, उस चिंगारी को हवा देने का काम डॉक्टर लागू और नीलू भाऊ ने किया कि हम कलाकार हैं और हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हमें निभानी है। तो इस तरह से पूरी तरह से उन्हें सामाजिक विचारधारा में और सामाजिक कामों में खींचने का काम डॉक्टर लागू ने किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि डॉक्टर लागू अगर नहीं होते तो शायद हमारा परिवार फिर से अहमदनगर, मतलब अहिल्यानगर हम जैसे कहते हैं, फिर से अहिल्यानगर जा चुका होता। क्यों? क्योंकि जब हमें वो किराए का घर छोड़ना पड़ा और पापा ने सीएम के पास जाकर, तेंदुलकर साहब ने उन्हें चिट्ठी दी थी, तो म्हाड़ा का घर भी अगर लेना हो तो आपको डिपॉजिट भरना पड़ता है, और उस समय इतना पैसा नहीं था पापा के पास कि हम घर ले पाए या डिपॉजिट भर पाए। तब पापा ने जाकर डॉक्टर लागू को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 2 मिनट के अंदर लाके उन्हें वो पैसे दे दिए थे और वो फिर वो डिपॉजिट भर पाए और हमारा घर हो पाया। ये एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन डॉक्टर लागू की हमारे परिवार के जीवन में रही है। और दूसरी एक जो बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो डॉक्टर लागू की वजह से पापा करने लगे और कर पाए, वो बात ये थी कि जो भी तुम कहना चाहते हो वो ठीक ठीक कहो। अभी ये हुआ है कि हम लोग काफी डिप्लोमेटिक हो गए हैं। एक समय था जब

0: कलाकार पॉलिटिशियंस सब लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाया करते थे। आज वो दौर नहीं रहा। तो वो समय था जब डॉक्टर लागू ने पापा को बताया था कि तुम कलाकार हो, तुम नेशनल लेवल पर काम कर रहे हो, तुम काम बहुत करोगे, अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको सबको खुश रखना होता है, पर ये कभी मत भूलना कि तुम्हें ये जो शोहरत मिली है, तुम ये जो मशहूर हुए हो, ये एक इट्स अ वेपन, इसका इस्तेमाल तुम्हें किस चीज के लिए करना है ये तुम डिसाइड करोगे। तो इसलिए कभी भी जब भी मौका मिले और सच की और तुम्हें खड़ा रहने का चांस मिले तो डेफिनेटली खड़े रहना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख जो डॉक्टर लागू ने खुद के बर्ताव से भी हमेशा सामने लाई हुई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वो डॉक्टर लागू से सीखे पापा, ये बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो सीखे पापा को मिली वो उन तक सीमित नहीं रही, वो उन्होंने अपने बर्ताव से, अपने जीवन से और अपनी बातों से हम तक भी वो पहुंचाई। मुझे याद है जब पापा गुजर गए थे और निखिल वागड़े जी आए थे कि श्रद्धा सभा में, और तब उन्होंने कहा था कि अब हम मराठी न्यूज चैनल्स अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा बड़ा नाम बचा ही नहीं है जो हमें रिएक्शन देगा,
1: विरोध करेगा,
0: जो विरोध करेगा या सामान्य आदमी को, नागरिक को क्या लग रहा है इसके बारे में बात करेगा। ऐसी आवाज ही नहीं बची है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो पापा ने बखूबी निभाई। जब अण्णा हजारे जी का अनशन उन्होंने किया था दिल्ली में, तब भी महाराष्ट्र में वो हवा बनाए रखने में पापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उस वक्त।
1: घर की एक बात मुझे याद आई कि बाद के दिनों में ऐसा हुआ था कि किसी ने उनको सुझाव दिया था कि सरकार कलाकार कोटे से बड़े घर या बंगलो देती है और उन्होंने रिफ्यूज किया था कि मैं वो नहीं कर सकता।
0: करेक्ट। सो पापा एक ऐसे कलाकार है, आई थिंक एक अकेले ऐसे कलाकार है जिन्हें म्हाड़ा के 2% में से घर मिला था। और जब उन्होंने खुद का घर खरीदा बाद में, तब उन्होंने वो म्हाड़ा को वापस कर दिया।
1: गजब।
0: हालांकि उन्होंने उसके लिए पैसे भी भरे थे, सब कुछ था, पर उनका कहना था कि जब मुझे जरूरत थी तब मुझे ये मिला था, तो आज किसी और को अगर ये जरूरत है तो ये जरूरत पूरी होना ज्यादा जरूरी है।
1: वो आराम से बेच सकते थे, पैसे ले सकते थे।
0: बेचकर वो ले सकते थे, बिकॉज हम वहां पर 7-8 साल रहे थे, तो जो 4 साल का लॉक इन पीरियड होता है वो भी निकल चुका था, तो वो बेच सकते थे, पर उन्होंने नहीं बेचा, उन्होंने वो वापस कर दिया।
1: गजब।
0: और इसी तरह उस समय अंधेरी में, जो अभी बहुत ही बड़ा एरिया है लोखंडवाला का, उस वक्त म्हाड़ा के छोटे छोटे छोटे छोटे बंगले हुआ करते थे जिनके काफी स्टूडियोज बन चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों ने वहां पर वो छोटे छोटे म्हाड़ा के घर लेकर बहुत सस्ते में, क्योंकि मिल रहे थे,
1: आज भी मौजूद है,
0: और वहां पर बंगले में स्टूडियोज और ये सब बनाए। तो उस समय जो पापा के सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा, सदाजी हम भी ले लेते हैं, एक स्टूडियो बना देते हैं उधर, डबिंग स्टूडियो रहेगा, एडिटिंग स्टूडियो रहेगा, एक इनकम शुरू हो जाएगा। तो पापा ने कहा, क्यों मैं करूं ये सब, अगर मैं ये करता हूं तो कोई और जो व्यवसाय के तौर पर करना चाहता है उसका मैं रोजगार छीन रहा हूं जो मुझे नहीं करना है। तो आपके बच्चों के लिए ये, वो मेरे बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ, वो बड़े होंगे, उनको जितना कमाना है कमाएंगे, नहीं कमाना है नहीं कमाएंगे, दे डोंट नीड टू डू दिस, मैं उनके लिए जागीरें बना के नहीं रखूंगा, ये उनका एक कहना होता था। तो हाँ, उनको हर बार इलेक्शन जब भी होता था तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से उनको बुलावा आता था कि आप हमारी ओर से खड़े रहिए, आप हमारी ओर से। पापा ने कभी नहीं किया, या कोई भी सामाजिक संस्था में भी उन्होंने कोई भी डेजिग्नेशन नहीं लिया। तो वो कहते थे, जो काम करना है ना वो मुझे बताओ, मैं करता हूं, मुझे ये डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, आपने मुझे चेयरमैन बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, ये मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज उसके साथ जो जिम्मेदारी आती है, लीगल हैसल्स आते हैं, वो कौन करेगा? बिकॉज जैसा मैंने कहा, वो कलाकार थे,
1: बिल्कुल,
0: उन्हें उनकी कला में रस था और जो अच्छा काम करना है उसमें रस था।
1: क्या बात है।
0: पापा का ये हमेशा कहना होता था कि मेरे बच्चों को जो भी कमाना है वो खुद के बलबूते पर वो कमा लेंगे, मैं उनके लिए जागीरें नहीं रखूंगा। और ये मेरे ख्याल से ये हमारी फैमिली का ही
1: ट्रेडिशन
0: है, बिकॉज मेरे दादाजी का भी यही कहना था कि मैं तो धर्मादाय कर दूंगा सब कुछ, तुम्हें देखो जो करना है, जैसे खुद का घर चलाना है तुम चलाओ, ऐसे ही पापा का भी था। तो जैसा मैंने कहा कि सामाजिक काम भी दादाजी करते थे, वही हमारे घर में चलता आया है, और ये भी वैल्यूज आई थिंक वहीं से आई हुई है।
1: बिल्कुल। रीमा जी, अब हम अपनी बातचीत के लगभग आखिरी आखिरी मकाम पर आ पहुंचे जहां एक कठिन बात करनी है, और वो है कि जब सदाशिव जी बीमार पड़े और वो जो पूरा आखिरी दौर है, जाहिर है वो सब आपने देखा है, उन दिनों को थोड़ा याद करें।
0: उन दिनों को याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि पापा की आवाज उनकी ताकत थी, और जब वो बीमार हुए और उनको इंटरस्टेशियल लंग डिसीज करके एक डिसीज होता है जिसमें अपने जो फेफड़े होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, तो सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आप में दम सांस नहीं है तो आप आवाज भी नहीं निकाल पाते। तो इसलिए उनकी आवाज धीरे धीरे धीरे धीरे
1: कमजोर
0: होती गई, और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ट्रैजिक था। और उस समय उनकी उम्र ही क्या थी, ही वॉज 63, 63 साल के थे वो। आगे और बहुत 10-15 साल तो कम से कम वो काम कर पाते अगर
1: बिल्कुल
0: उन्होंने डिसाइड किया होता तो। लेकिन वो डिसीज हुआ, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, इसलिए वो बात नहीं कर पाते थे। और वो इतने ऑनेस्ट थे कि उनके पास प्रोड्यूसर्स तब भी आते थे कि सदाजी ये छोटा रोल है, आप ये कर दीजिए। कई कलाकारों को हम भी जानते हैं जो बीमार होते हुए भी काम करते रहते हैं, पर पापा उनको बोल देते थे कि देखो अगर तुम्हें लगता है मैं उसी तरह से बोलूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये मेरी आवाज की हालत है। इस तरह से वो बहुत ओपनली और क्लियरली बात बताते थे। वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट हम सबके लिए था, बिकॉज आप सोचिए कि एक पहाड़ जैसा आदमी जिसको आपने बचपन से इतना स्ट्रॉन्ग, इतना क्या कहते हैं,
1: जुझारू
0: एक्चुअली और रियल लाइफ में भी सिर्फ पर्दे पर नहीं देखा हुआ है, वो जब आपके सामने धीरे धीरे धीरे धीरे वीक होता जाता है तो ये आप सहन नहीं कर पाते, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही तकलीफ वाला दौर था, पूरे 6 महीने जब वो बीमार थे तब। और मैं क्या कहूँ, तब लोगों ने, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब आप मशहूर होते हो तो जैसे प्यार भी करते हैं लोग, तो लोग ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है और उसकी भी एक निजी जिंदगी है। तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी उस वक्त के लोग ये चाहते थे, जैसे अभी धर्म जी के बारे में भी हुआ कि उनका आईसीयू में उनका वीडियो निकाला गया, तो वैसे लोग चाहते थे, मुझे चैनल से फोन आते थे कि रीमा उनका एक आईसीयू में एक फोटो निकाल के आप भेजो। ओके, या लोग मिलने आते थे, तो उस समय मोबाइल फोन्स, कैमरा फोन्स आ गए थे, 2014 की बात कर रही हूँ मैं। तो हम ये देखते थे कि जो भी अंदर जा रहा है पापा से मिलने उसके साथ कोई ना कोई हो, बिकॉज हम ये नहीं चाहते थे कि कोई फोन निकाले, वीडियो निकाले, फोटो निकाले और सर्कुलेट करे, बिकॉज वो एक कलाकार थे,
1: ये होना ही नहीं चाहिए।
0: हाँ,
1: कोई भी रीजन हो, नहीं
0: और नहीं, और लोग उन्हें जिस तरह से याद लोगों ने रखना चाहिए, वो उनकी बुलंद आवाज, वो उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग, उनकी दहशत जो पर्दे पे वो पैदा करते थे, वो याद रखे। ये क्यों याद रखना है?
1: बिल्कुल,
0: जैसे इवन धर्म जी के बारे में जब हुआ तो इतना बुरा लगा कि ही मैन, ही इज द ही मैन ऑफ द इंडस्ट्री,
1: राइट,
0: और उनको इतना वीक दिखाकर आप क्या हासिल कर रहे हैं?
1: देखिए, समय और उम्र किसी को नहीं बख्शते हैं,
0: exactly.
1: तो इसलिए उसका लिहाज कर लेना चाहिए
0: बहुत,
1: और लोगों
0: बहुत
1: को अपनी प्राइवेसी में छोड़
0: देना चाहिए
1: ऐसे समय।
0: बिकॉज पापा अहमदनगर को अपने दिल में रखे हुए थे, तो ये बात तो पक्की थी कि उनका जो भी अंतिम संस्कार है वो अहमदनगर में होगा। तो जब हम अहमदनगर गए और हमारी जो हवेली है उसके आंगन में ही पापा को रखा हुआ था दर्शन के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 2-3 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी। और वो लाइन रुकी नहीं रही थी। अल्टीमेटली एक 4-5 घंटे के बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि अभी बस, अभी जाना जरूरी है, बिकॉज ऑलरेडी मुंबई से हम वहां गए थे, काफी समय बीत चुका था। तो उस समय लगभग 50-60 हजार लोग पापा के अंत्य यात्रा में थे, और वो सिर्फ अहमदनगर से थे ऐसा नहीं,
1: दूर दूर से आए थे,
0: दूर दूर से आए थे। और बाद के जो 15-20 दिन है, पूरा महीना जो हम लोग रखते हैं, पूरे महीने तक हमारी हवेली में लोग आ ही रहे थे, माथा टेक ही रहे थे और जा रहे थे। राजस्थान से लोग आए, पश्चिम बंगाल से आए, कहाँ कहाँ से आए, कुछ नहीं, सिर्फ उनके दर्शन करने हैं, बस उनकी हवेली देख ली, उनके बच्चों को देख लिया, उनके भाई को देख लिया, बस। ये जो लोगों की दुआ मिली है उस वक्त, और ये जो प्यार हमें दिखा है, क्योंकि पापा बाहर जाकर किस किस के लिए क्या क्या करते थे ये कभी घर आकर हमें बताते नहीं थे, पर उसके बाद आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि पापा की याद किसी ने ना निकाली हो। कोई ना कोई वो याद निकालता ही है, और हर एक 2-3 महीने में ऐसा कुछ किस्सा पता चलता है कि अरे पापा ने ये भी किया था, पापा ने ऐसा भी किया था, ये भी मदद की थी, ये कब किया था उन्होंने।
1: गजब।
0: तो ये जो बात है कि जब इंसान हम उसके बच्चे होते हैं, हम एक तरीके से उसको देखते हैं। वो मेरे लिए मेरे पिताजी थे, वो एक हीरो थे, बहुत महान कलाकार थे, अग्रीड, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरे पापा थे। तो मेरी कुछ पर्सनल शिकायतें, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज वो उनके साथ थे ही, मैं ना नहीं कहूंगी। लेकिन अब लगभग 11 साल हुए हैं, और अभी 11 साल के बाद भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उनका कोई रेफरेंस ना निकलता हो। तब आपको पता चलता है कि जो इंसान आप अपने पिताजी समझते थे वो सिर्फ आपके पिताजी नहीं थे,
1: वो पूरे संसार के लिए क्या थे।
0: एग्जैक्टली। और सिर्फ एक कलाकार भी नहीं थे वो, ही वॉज सो मच मोर। तो एक थोड़ी सी समझ आ जाती है कि फिर आप इंसान को एक ही दायरे में ना देखें, उसके कई मायने हैं, और उन सारे मायनों में आपने देखना चाहिए इंसान को। तो ये आज भी मैं सीख रही हूँ उनसे, आज भी सिखा रहे हैं वो मुझे।
1: क्या बात है।
0: जैसे आज हम बातचीत कर रहे हैं तो मुझे लगा नहीं था मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन जब एक एक एक एक एक एक आप पूछते गए तो ऐसी भी काफी सारी चीजें मैंने कही जो आज तक मैंने कहीं पर नहीं कही थी।
1: बिल्कुल।
0: अर्थात आकाशवाणी घर ही है हमारा। अभी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि हमने रुकना चाहिए।
1: यहाँ एक गाना बजाते हैं, रहे ना रहे हम महका करेंगे।

0: रीमा जी, उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम यादों के उजाले बिखेरते हैं। आपकी यादों में पिताजी किस तरह से सामने आए, ये सुनते हुए और आपसे बातें करते हुए लगातार मुझे सदाशिव जी की बातें याद आ रही थी जो विविध भारती में उनके आने पर उन्होंने बताई थी और बहुत दिलचस्प बातें थी। तो अब तक आपने पिताजी के बारे में बताया, अब संग्रहालय से पिताजी की आवाज निकालते हैं और हम सब मिलकर सुनते हैं सदाशिव अमरापुरकर की बातें। और हाँ, ये बातचीत हमारी साथी कांचन प्रकाश संगीत ने सदाशिव जी से की थी बरसों पहले, तो संग्रहालय से ये आया ऑडियो।
1: अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
2: अच्छा।
1: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
2: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
1: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताज़ा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
2: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर, ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारी पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50 टका हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियां खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
1: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
2: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा यह इंसान, यह आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी उसके पीछे आज भी चर्च है तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द गिर्द जाते रहे हैं?
2: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांदबीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांदबीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
2: और क्रिएटिव है
1: जी।
2: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
2: जी,
1: है ना सदाशिव जी? इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें?
2: जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
2: और उसके बोल है, मेरे दिल में है एक बात।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे
1: जी,
0: तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था, और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले, और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी, और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था, और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं क्रिकेटियर बन जाऊंगा। और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज की गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे, और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे, और इसकी कंपटीशन थी, और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक

0: काम करने का मौका मिला, हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
1: उस समय।
0: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
1: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
0: नहीं। नाटक करता रहा, धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
1: जी।
0: हम मतलब हवा में दौड़ते थे।
1: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
0: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-20 25-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
1: जी।
0: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था, क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग।
1: तो वो पलट के नहीं देखती थी?
0: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया, हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो
1: आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
0: जी।

0: चलिया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना, थिएटर की जो बात है वो वहाँ से आपकी शुरुआत हो गई, और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके MA वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
2: नहीं, मैं BA होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ PDA में नाटक करता रहा
1: जी।
2: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन PDA का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये PDA में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो PMT की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले, एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए। और थिएटर करने लगा, तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
2: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
2: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने, क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
2: नहीं, अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
2: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी, नया होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड, और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, होता जी, है हेलो फरमाइश।
2: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं, किसी होटल में चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो,
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
2: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी,
2: बहुत पुरानी, गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगा?
2: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
2: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
2: जी। जी,
1: जी।

0: तो ये सदाशिव जी की आवाज देखिए ना, इंसान चला जाता है, यादें रह जाती हैं, और विविध भारती में तो ऐसा होता है कि आवाजें रह जाती हैं, और कितनी ही आवाजों के उजाले हमारे स्टूडियो को और हमारे संग्रहालय को रोशन करते हैं। रीमा जी, बहुत सारी बातें हुई हैं और अब वो वक्त है जहां आपको एक बहुत जरूरी काम करना है और वो ये काम करना है कि एक बेटी होने के नाते कहना है कि इतने वर्ष बाद भी क्या हैं आपके पिता आपके लिए। हो सकता है कि ये एक ऐसी बात हो जो आप उनसे कभी ना कह पाई हो, अपने घर आकाशवाणी में आप कह पाएंगे।
1: एक बेटी होने के नाते मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं बहुत बहुत बहुत नसीबों वाली हूँ कि पापा जैसे पिताजी मुझे मिले। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत बड़े कलाकार थे, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने कभी भी हमें शब्दों में सिखाया नहीं। उन्होंने जो भी किया उसमें से वो चाहते थे और वो हमें खुला छोड़ देते थे कि तुम्हें जो सीखना है इसमें से सीखो। इसी वजह से आज भी, अभी उन्हें गुजरे हुए 11 साल हो गए, आज भी जब कोई घटना याद आती है, कुछ किस्सा याद आता है, तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसमें से जो मैं सीखती हूँ वो मैच्योर होता जाता है, वो नया नया मुझे सीखने को मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि मैं लकी इसलिए भी हूँ कि ये आज़ादी उन्होंने मुझे दी, हम सब बहनों को इनफैक्ट दी, कि आपको जो करना है वो आप करो, सिर्फ सही करो, कभी भी कुछ गलत मत करो जिससे किसी इंसान को दुख पहुंचे या कुछ गलत हो। उनका सिर्फ एक ही कहना होता था कि आप जो करते हो वो करने के बाद रात में जब आप घर पे आते हो और बिस्तर पर लेटते हो तो एक भी मिनट आपका ऐसा नहीं गुजरना चाहिए कि यार ये मैंने क्या किया। बिस्तर पर लेटते ही आपकी आंखें बंद हो जाए और आपको नींद आ जाए शांति से, ऐसा आपका बर्ताव पूरे दिन में हो, फिर वो आपके काम में हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, कहीं पर भी हो। तो ये जो सीख है, ये जो पापा ने दी है, और ये उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि शब्दों में नहीं, उनके खुद के बर्ताव से उन्होंने हमें

0: दिखाई है। और साथ ही में मैं ये कहूंगी कि उन्होंने जो लॉयल्टी उनके अंदर थी, वो उनकी बीवी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, उनके पिताजी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, हम बच्चों के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, वैसी ही लॉयल्टी उनके काम के प्रति भी उनकी थी। जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना उतना मैं ये समझ पा रही हूँ कि उनके जीने के और उनकी पर्सनालिटी के काफ़ी सारे ऐसे पहलू थे जो जब वो थे तब मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैं पापा से ये कहना चाहूँगी कि पापा, आपने जो भी करके रखा है एज एन आर्टिस्ट, एज अ फादर, वो शायद समझते समझते पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन आज भी रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा याद आता है, कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है आपके, कोई मीम हो या कोई रील हो, कि एक ऊर्जा मिलती है आगे जाने की। और ये ऊर्जा हमारे साथ इतने प्रकार से है, आपके होने से ये नसीब वालों को ही मिलता है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि आप मेरे पापा थे। मैंने बहुत झगड़ा किया हुआ है पापा के साथ, काफ़ी बार हम काफ़ी झगड़ते थे, लेकिन वो भी एक फ्रीडम उन्होंने हमें दिया था, उनसे झगड़ा करने का फ्रीडम। बुरा लगता है कि मेरी बेटी उन्हें मिल नहीं पाई, खैर वो अलग अलग तरीके से उसे मिलते रहते हैं।
1: क्या बात है रीमा जी। पिताजी इतने मशहूर कलाकार थे और उनका कामयाबी का झंडा बहुत बुलंद था, जब आपके सामने करियर का सवाल आया तो उनके सामने जाके क्या ऐसा कुछ हुआ कि मैं भी इंडस्ट्री में?
0: हाँ, एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया है पूना से, कोखले इंस्टीट्यूट से। तो पापा एकदम सेट थे कि अभी सबसे छोटी बेटी है वो इकोनॉमिक्स कर रही है, वो शायद उसमें पीएचडी करेगी, हो गया, एवरीथिंग इज सेट। पर मैं जब पूना में जॉब कर रही थी तब पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ और तब जाके मैंने राशुमान देखी, अकीरा कुरोसावा की। और सिनेमा की ताकत जो है वो सडनली मुझे ऐसे लगा कि यार ये करना चाहिए। मैंने अगर पीएचडी किया तो मैं रिसर्च पेपर लिखूंगी, वो किसी मैगजीन में छप के आएगा, खत्म, ऐसा कुछ करना चाहिए। और मैंने जाकर पापा से ये कहा तो सबसे पहले तो पापा की रिएक्शन थी, पर तुझे तो इकोनॉमिक्स करना था। मैंने कहा हाँ करना था, लेकिन अभी मुझे ये करना है। तो फिर वो कहते थे फिर तू एक्टिंग कर ले। आई सेड मुझे एक्टिंग नहीं करनी। क्यों एक्टिंग क्यों नहीं करनी? बिकॉज वो एकदम ऑफेंड हो गए कि एक्टिंग क्यों नहीं करनी तुझे। तब मैंने उन्हें वो औरंगाबाद वाला किस्सा याद दिलाया कि आपको याद है आप अजंठा नहीं देख पाए थे, तो मुझे कैमरा के सामने नहीं जाना है, मैं कैमरा के पीछे रह के जो भी करना है करूंगी। ओके
1: राइट।
0: तो फिर पापा ने कहा कि ठीक है, फिर आपको अगर करना ही है ये तो उसमें पहले आपको सीखना जरूरी है। फिर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में मैं जाकर सीख कर आई, फिर मैंने असिस्टेंटशिप की और फिर मेरा करियर जैसे बनना था वैसे बना। पर अगेन जैसे पापा का सामाजिक एक ये रहता था, वैसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझ में भी है। तो मैं एनजीओज के साथ ज्यादा काम करती हूँ, कमर्शियली मैं थोड़ा कम काम करती हूँ।
1: बहुत सारी बातें पिताजी के बारे में हुई और कई ऐसे पहलू सामने आए जिनके बारे में शायद कभी किसी ने नहीं जाना था, तो इसीलिए सार्थक होता है ये कार्यक्रम जिसका नाम उजाले उनकी यादों के है। तो आपके जरिए यानी रीमा की यादों के जरिए पिताजी सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले आपने सजाए, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे ये लंबी बातचीत करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच। ऐसे होता है ना, कभी कभी डर लगता है कि हम बहुत ज्यादा उनकी बातें करेंगे तो रो देंगे, इसलिए कई बार हम खुद से भी दूर भागते हैं और बातें नहीं करते हैं। पर यहाँ बुलाकर वो पुराने दिन, किस्से, घटनाएं और पापा, उनको याद दिलाया, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन आपने जिस तरह से मुझसे बातचीत की है वो बहुत ही मुझे, इट हैज बीन एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस।
1: थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और मशहूर हस्ती की यादों के उजाले लेकर। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले।

जी विविध भारती का मुंबई केंद्र है, एफएम 102.8 और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। कुछ ही पलों में होगा मराठी में समाचार, जिसे हम मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

ये हवा, रंग, तबस्सुम, ये महकती खुशबू खूब फैले हैं फिजा में तेरे परचम सारे। तेरे दर पे ही रहूं है यही तमन्ना मेरी, बीत जाए तेरी गलियों में ही मौसम सारे। नींद आती नहीं, देखा है जब से तुमको, तेरी आंखों में नजर आते हैं मरहम सारे।

मैं तुम्हारी आंखों से एक बार खुद को देखना चाहती हूँ, तुम्हारी पसंद को समझकर खुद को बेहतर और संवारना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे दिल में गहरे, बहुत गहरे डूबकर निकलना है और वहाँ से समेट कर लाई गई मोहब्बत की खुशबू को लेकर बीच आंगन में किसी फूल की तरह खिल उठना है, नए रंग और नई खुशबू के साथ। और मैं जब जब भी ऐसा सोचती हूँ, मुझे दुनिया दूर तक खूबसूरत दिखाई

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। इस बार जब आओ तुम यहां उदास सूनी झील में चांद तारों को साथ लेकर, तो मैं भी नजर आऊंगी तुम्हें के चाहत लौट कर आने के वादे पर एतबार करती है। तो जैसे बारिश की बूंदे जमी पर गिर के समा जाती है उसमें, वैसे ही समा जाऊंगी मैं भी तुम में।
1: तड़प ये दिन रात की कसम।

लिखा, कई कई बार लिखा, पानी पर लिखा, नदी पर लिखा, नदी में चलती नाव पर भी लिखा, कुछ लिखा किनारे बैठकर, ख्वाबों में तैरते हुए बहते हुए लिखा, कुछ मझधार में लिखा, कुछ लिखा डूबकर, और लिखा कि प्यार नहीं सिखाता प्यार से इनकार, और सिखाता है प्यार ही डूबना प्यार में। ये प्यार घाटे का वो सौदा है आखिर में जो फायदे से भर देता है, मुनाफे की किताबों में इसका कोई खाता नहीं, फिर भी ये दिवालिये दिल को मोहब्बत के बेशकीमती

रहूंगी मैं तुम्हारे साथ जिस तरह जिंदगी के साथ सांसें, जमी के साथ आसमां, नदी समंदर के साथ लहरें पानी, फल फूलों के साथ डाली, चिड़ियों के साथ चंचल चहकार, सूरज के साथ रोशनी, खेत खलियानों के साथ हरियाली, बगिया के साथ माली, राजा के साथ रानी, मोहब्बत के साथ मेल मिलाप के जज्बात, उसी तरह रहूंगी मैं

0: साथियों, अब वक्त आ गया है कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। तरानी नए पुराने कार्यक्रम लेके हम हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।

पुराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। दोस्तों, आज अभिनेता प्राण की पुण्यतिथि है, तो उनको विविध भारती परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं और उनको याद करते हुए कार्यक्रम में कुछ गाने उनकी ही फिल्मों से शामिल कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना मन्ना डे की आवाज़ में उनकी ही फिल्म से।

देख ले जिस दिन माइकल को रात को सेठ नहीं सोता, खुद चोरी करता है लेकिन चोर से डरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है।

इतना पैसा चाहिए आखिर जीने के लिए। लोग दीवाना है जो यूं इस पैसे पे मरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है।

से साठ हो सकते हैं, जो करता है पाता है। अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: एक भी गाइए ना।
1: दिल की उमंग है जवान,
0: गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं।
1: पामा पधा पगा सपा, दिल की उमंग है जवान, गाइए।
2: दिल की उमंग है जवान,
0: बहुत

अभी आप सुन रहे थे अभिनेता प्राण की फिल्मों के गाने। तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे समाचारों के बाद। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि यह अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वो इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 250 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल्स में चीन की गुआ हांग्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मेल्डोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफिनी से जारी है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल आज इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: इस गाने के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको बता दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका भाग 12। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मुजुमदार, संवादिका ममता सिंह, संपादन सहायक झवना सोलंकी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। विशेष जयमाला में आज सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा शाम 7:00। आज आप सुनेंगे महावीर चक्र से सम्मानित शिपाई इमली आकुम एओ की शौर्य गाथा। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष में साज और आवाज। रात्रि 8:00 हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका कॉलोनी कल्याण मंडल, लेखक एमपी लेले, निर्देशन स्वतंत्र कुमार ओझा। चित्रलोक का समय रहेगा रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9:00 सुनिए आपके लिए आज के फनकार। आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है निर्माता निर्देशक बिमल रॉय पर, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। रात्रि 10:00 सुनिए छाया गीत आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। टलती जाए रात आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। और रात्रि 11:00 कार्यक्रम होगा विविधा। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सुबह 6:05 पर सुनिए वंदनवार। सुबह 6:30 और शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा में। रामचरितमानस आप सुनेंगे 6:35 पर। कल प्रसारित होगा भाग 248। सुबह 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता। सुनिए नई श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार गायिका विदुषी आरती अंकलीकर का पहला भाग, प्रस्तुति रूपाली रूपक। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7:00। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 और दोपहर 2:00 सुनिए त्रिवेणी। आलेख और स्वर दीपा महेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। आज की फनकार का समय रहेगा 9:30। कार्यक्रम केंद्रित है निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10:00 पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के। इसमें सुनिए रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का भाग 4, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। रंग तरंग आप सुनेंगे सुबह 11:00 और रात्रि 11:00। यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1:00 कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3:00 कार्यक्रम होगा सखी सहेली, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। दोपहर 4:00 सेहतनामा में सुनिए प्रोस्टेट और अन्य बीमारियां। इस विषय पर डॉक्टर उमेश ओझा से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग, संपादन सहयोग काजल बदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छाया गीत आप सुनेंगे शाम 5:00। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। जयमाला का प्रसारण होगा शाम 7:00। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से। कल की फिल्म है अदालत। हवा महल का समय रहेगा रात्रि 8:00। कल हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका दादाजी का चश्मा, लेखक चंद्रशेखर पांडे, निर्देशन राजेश रेड्डी। चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9:00 सुनिए आपके लिए 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता प्राण पर। छाया गीत आप सुनेंगे रात्रि 10:00। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। और रात्रि 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात। ये थी रूपरेखा।

आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम संध्या रंजन।

अभी आपने सुना साया फिल्म का गाना, के और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीत सईद कादरी का था, संगीत अनु मलिक का। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में अमर फिल्म का गाना। गीत शकील बदायूनी ने लिखा है, संगीत नौशाद का है।

0: श्रोताओं नमस्कार, संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 12वीं और अंतिम कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार, पंडित जी आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: पंडित जी, ये जो बांसुरी दिख रही है, पांच तरह की बांसुरी है इसमें, तो ये जो एक तो शंख बांसुरी है
2: जी,
1: और एक सबसे छोटी वाली बांसुरी को क्या कहेंगे?
2: ये हाई पार सप्तक।
1: गजब,
2: यहाँ तक चला गया, इसके ऊपर भी मैं जा सकता हूँ।
1: हाँ।
2: थोड़ी सी शार्प हो जाएगी।
1: अरे गजब,
2: मैं पीछे।
1: हाँ।
2: सिक्किम का जो ये है।
1: जी जी जी, बिल्कुल। हाँ।

0: जी क्या बात है, बढ़िया। और उससे जो बड़ी वाली है उस वो कौन सी?
1: ये पन्ना बाबू की बनाई हुई मेन क्लासिकल सोलो इसमें बसता
0: जी।
1: पन्ना बाबू के बांसुरी जो बनाई है ये, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं थोड़ा सा हंस ध्वनि आपको सुना रहा
0: हूं। जी जी सुना।
1: और बंदिश मेरे गुरुजी की है
0: जी। प्लीज
1: कल्पेश भाई आप शुरुआत करिए।

0: वाह, राघवंश ध्वनि पे ये बांसुरी की तान थी, अद्भुत थी, मोहित कर दिया, मंत्रमुग्ध कर दिया आपने। तो हम आखिर में विदा के रूप में विदा नहीं करेंगे, बल्कि आप इस कड़ी को, इस श्रृंखला की विदा में आमद करेंगे कि आप फिर आते रहिए।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे शास्त्रीय संगीत में एक परंपरा है, राग भैरवी से अंत करते हैं
0: जी।
1: आज की कड़ी आखिरी कड़ी है, इसी उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि फिर आना है
0: जी।
1: तो भैरवी में एक जगजीत सिंह जी के भी बहुत सारे सुपरहिट गजलों में मैंने बजाया, उस स्टेज में गाते थे फयाज खान साहब को याद करके
0: जी।

0: अद्भुत तान छेड़ी आपने पंडित जी, और साथ में जो गायन का सुर भी साधा बड़ा ही मोहक था, बहुत अच्छा लगा। तीन ताल में निबद्ध ये बंदिश थी, अजीत जी ने बड़ी खूबसूरती से इसे अंजाम दिया, और आज ये इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी है। अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस कड़ी को, इस श्रृंखला को खत्म ना होने दें, और कड़ियाँ इसमें जोड़ते जाएं और मालाएं पिरोते जाएं, लेकिन समय की बाध्यता है। तो आज इस आखिरी कड़ी में हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, सबको धन्यवाद कहते हैं। अजीत पाठक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े मनोयोग से आपने तबला संगत की, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद, नमस्कार। कल्पेश जी, आपने बहुत ही मोहक ढंग से बांसुरी पर संगत कर रहे थे पंडित जी के साथ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: रोनू दादा, आज इस श्रृंखला में जितनी कड़ियां पिरोई गई हैं, इन कड़ियों में जो बांसुरी की तान आपने छेड़ी है, जो जानकारियां दी हैं, इसके लिए मेरे पास फिलहाल शब्द नहीं है, बस इतना श्रोताओं को बता दें कि ये अद्भुत श्रृंखला है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका ममता जी, हम लोग भी यहाँ पर आकर बहुत प्रसन्न हुए, और लगा ही नहीं कि कैसे पूरा दिन बीत गया, और हम चाहते हैं कि विविध भारती के स्टूडियो में बार बार आएं और इसी तरीके से माँ सरस्वती की सेवा करें।
0: जी, हम सबका सौभाग्य है, पूरे विविध भारती परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, नमस्कार,
2: धन्यवाद।
3: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 12वीं और अंतिम कड़ी। इस श्रृंखला के लिए आमंत्रित कलाकार थे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की ममता सिंह ने। आपको बता दें, बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, आपको ये श्रृंखला कैसी लगी? हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से अपने उद्गार हम तक अवश्य पहुंचाएं। आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

था सन 1999 जब हमारी सेना के फौजी साथियों ने भारतीय सेना के इतिहास में सुनहरे हरफों में लिखी विजय की एक और दास्तान। एक ऐसा युद्ध, एक ऐसी जंग जिसकी तलवारों का लहू आज भी लाल है, जिसके ख्याल से ही दुश्मन की धमनियों में बहता रक्त जम जाता है। जंग के इतिहास में लड़ी गई तमाम जंगों में, बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में और सबसे ऊंचे क्षेत्र में लड़ी गई जंग की घटनाओं में शामिल है कारगिल युद्ध। कारगिल, जो भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कारगिल जिले में स्थित एक नगर है, जिसे सींचती है सुरू नदी की निर्मल धाराएं। कश्मीर घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित ये स्थान श्रीनगर से लगभग 205 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका सामरिक महत्व कहीं ज्यादा है और इस वजह से इसकी उत्तर पूर्वी सीमाएं और ये इलाका बेहद संवेदनशील भी माना जाता है। साथियों, जाबाज भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गाथाएं स्वर्ण अक्षरों से इतिहास के पन्नों पर अंकित हैं, फिर लाजमी भी है कि दुश्मन ने हर मोर्चे पर शिकस्त खाई होगी, लेकिन फिर भी बाज आने का नाम नहीं लेता। वक्त बदला, तारीखें बदली, जमाने आए और गए, लेकिन उत्तर पूर्वी भारतीय सीमाओं से दुश्मनों की घुसपैठ के सिलसिले जारी रहे। कई बार खदेड़े जाने के बाद भी दुश्मनों का भारतीय सरहद में रेंग रेंग कर घुसने का सिलसिला चलता रहा और इस बार चरवाहे के भेष में सीमा पार से भारतीय सरहदी क्षेत्र कारगिल में घुसने की दुश्मनों की खबर पक्की थी।

1999 मई के महीने में यह खबर पुख्ता हो गई कि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा से सटे भारत से ही अलग हुए राष्ट्र के घुसपैठिए सैनिक काफी तादाद में कारगिल की चोटियों पर डेरा डाले हुए हैं। मशकोह घाटी में 15,000 फुट की ऊंचाई पर डेरा जमाए कबायलियों के भेष में पड़ोसी देश के दुश्मन सैनिकों ने इस इलाके को कब्जे में करने की पूरी कवायद शुरू की। भारतीय सेना ने भी बिना वक्त गंवाए अपनी सेना के सभी डिवीजनों को सावधान करते हुए कारगिल के इलाके में कार्रवाई का आदेश जारी किया। इस बाबत 4 मई सन 1994 के नागा रेजिमेंट की बटालियन में शामिल होने वाले सेना में अनवरत सेवा देने वाले नागालैंड की सुहानी सरजमी के धाकड़ सिपाही सूबेदार इमल्याकुम आओ को भी तत्काल प्रभाव से कारगिल क्षेत्र में तलब किया गया। 2 नागा रेजिमेंट को नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से को महफूज करने और पॉइंट 4875 की दुर्गम चोटी पर दुश्मन सैनिकों की मोर्टार पोजीशन को ध्वस्त करने और दुश्मनों को बेदम करने का जिम्मा सूबेदार इमल्याकुम को सौंपा गया।

0: फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भारतीय सेना के जाबाज फौजी सिपाही इमलियाकुम आओ की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharati.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
2: वेगाच्या वेडानं पाखरू गडप होत, एका चुकीमुळे आयुष्य दूर जात। मद्यपान करून गाडी नको रे धरू, आई बाबांची स्वप्न नको भंग करू। झेब्रा पट्टीवर थांब रे जरा, आपलेच लोक वाट पाहती घरा। जीवन अनमोल आहे, वेग टाळा, सुरक्षित प्रवास हाच खरा।

गौरतलब है कि शत्रुओं ने लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर डेरा जमाया था। उनकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, तादाद दुश्मनों की कितनी है, उनके हथियारों का जखीरा कितना है, इस बात का आकलन सिपाही इमल्याकुम आओ ने अपने तजुर्बे से कुछ हद तक लगाया। लक्ष्य को किसी भी तरह से हासिल करना और पॉइंट 4875 पर तिरंगा फहराना ही अब सिपाही इमल्याकुम और उनके साथियों का मिशन था। सिपाही इमल्याकुम ने इन बर्फीली ढलानों पर अपने सैनिकों के साथ पोजीशन ली। सैनिकों में कुछ गोरखा जवान भी साथ थे जो खुकरी और क्लीवर चलाने में दक्ष थे। वो तारीख थी 8 जुलाई सन 1999 जब दिन में ही इस मिशन को अंजाम देने का निर्णय इमल्याकुम आओ ने लिया और नागा बटालियन को पहली रक्षा पंक्ति में तैनात किया। उधर चोटी पर बैठे दुश्मन सैनिक भी लामबद्ध तरीके से हमले की फिराक में थे। परिस्थितियां अत्यंत विपरीत थीं। सर्दी की धुंध और बर्फीले पहाड़, बेहद संकरे नाले जो बर्फ पे पैर टिकाने और आगे बढ़ने का रास्ता थे। भारतीय सैनिकों की सुगबुगाहट पाकर ऊंचाई पर बैठे शत्रुओं ने मोर्टार और रखे हुए असलाहों और ऑटोमेटिक हथियारों से रह रहकर हमले शुरू किए।

भारतीय सैनिकों पर ऊपर से मोर्टार्स दागे गए, लेकिन ये मिशन जितना खतरनाक था हमारे सैनिकों के हौसले उतने ही बुलंद। हालात की नजाकत को देखते हुए, अपने सैनिकों को सावधान करते हुए, दुश्मन सैनिकों को चकमा देते हुए सिपाही इमलियाकुम बड़ी चतुराई से आगे बढ़ते रहे। बर्फीली ढलान से आगे बढ़ते हुए चोटी तक के फासले को तय किया। यहीं दुश्मनों द्वारा कब्जा की गई इस दुर्गम ऊंचाई पर डेरा डाले दुश्मनों की पहली लाइन के एक संतरी को बड़ी फुर्ती से इमलियाकुम ने मौत की घाट उतारा। अफरा तफरी में एक और दुश्मन संतरी आगे बढ़ा, इसे भी सिपाही इमलियाकुम ने मौत की नींद सुला दिया। दुश्मन खेमों में खलबली मच गई और शत्रु सैनिकों ने इमलियाकुम और उनके सिपाहियों पर मशीन गन और ऑटोमेटिक हथियारों से हमले करने शुरू किए।

0: वक्त गवाए भारतीय सैनिकों ने भी उन पर अपनी मशीन गन का मुंह खोल दिया। सिपाही इमलियाकुम घायल होने के बावजूद आगे बढ़ते रहे, अपनी गोलियों से कई दुश्मनों को मौत की नींद सुलाया, उन पर हथगोलों से निशाना साधते हुए उन्हें मार गिराया। दुश्मन अब काफी करीब था। घायल अवस्था में उन्होंने दुश्मन के साथ गुत्थम गुत्था में कुछ और को मार गिराया और कई को अपनी संगीन का निशाना बनाया। उनकी इस फुर्ती और हौसले को देखते हुए दुश्मन खेमे में अफरा तफरी मच गई। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भारतीय सेना के जाबाज फौजी सिपाही इमलियाकुम आओ की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती

0: सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
1: विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आज आप सुन रहे हैं भारतीय सेना के जाबाज फौजी सिपाही इमलयाकुम आओ की शौर्य गाथा। बर्फीले ढलान की आड़ में कुछ भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाला। धीरे धीरे ये बर्फीली वादियां दोनों तरफ की गोलाबारी से गूंज उठी और सफेद बर्फ की हसी वादियों में लहू का लाल रंग साफ नजर आने लगा। आगे बढ़ते भारतीय सैनिकों में कई हताहत हुए और कुछ ने मातृभूमि की आन बान और शान में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। जो बिछड़ गए उनके जज्बों को सलाम कर साथ ही सैनिक मोर्चों पर डटे रहे। जैसे ही शत्रु सैनिकों के अड्डे की थाह का पता चला, सिपाही इमलयाकुम ने भारतीय सैनिकों के साथ दुश्मनों पर तेजी से धावा बोल दिया और अपनी मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए कबायलियों की खाल में छुपे शत्रुओं को निशाना बनाया। बस एक ही एहसास, बस एक ही मिशन, देश की सुरक्षा और सामने आ रहे दुश्मनों का खात्मा।

दुश्मनों के बलाबल का अब तक सिपाही इम्लियाकुम को काफी कुछ आकलन हो चुका था। शत्रुओं को निशाना बनाते भारतीय सैनिकों ने ये धावा दिन के उजाले में इतनी फुर्ती से अंजाम दिया कि बर्फीले नाले में कई दुश्मन सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। शत्रु खेमों में भगदड़ मचने से कई शत्रु सैनिक दुम दबाकर इधर उधर भागते हुए हमारे सैनिकों का निशाना बने। कई का सफाया भागने के दरमियान हो गया। अब तक सिपाही इम्लियाकुम आओ भी बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन दुर्गम परिस्थितियां कब हमारे सैनिकों का रास्ता रोक पाती हैं।

0: मंजिल करीब थी। दुश्मन अपने हथियारों और मोर्टार ठिकानों को छोड़ भाग खड़ा हुआ। बचे सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया गया। 20 मिलीमीटर और 21 मिलीमीटर मोर्टार्स के साथ गोला बारूद और हथियारों का एक बड़ा जखीरा, साथ ही कुछ खुफिया दस्तावेज सिपाही इमलियाकुम ने अपने कब्जे में लिए और दुश्मन के एक बड़े डंप को नष्ट कर दिया। नागालैंड की सरजमीन के एक छोटे से गांव मोकोकचुंग के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आए सिपाही इमलियाकुम आओ ने अपने साहस और पराक्रम से शौर्य की अजीमोशान दास्तान लिखी, जिस पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: हमें

इस करिश्माई जीत को दर्ज करने के बाद भी इम्लयाकुम ने सेना में कई और सफलताएं हासिल की और लगातार नई ऊंचाइयां छूते रहे। साथियों, 8 जुलाई सन 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान .4875 को अपने कब्जे में लेने, इस आमने सामने की लड़ाई में कमाल के युद्ध कौशल, सैन्य संचालन क्षमता, सफल कूटनीति और अदम्य साहस के लिए सिपाही इम्लयाकुम आओ को भारत सरकार ने महावीर चक्र से सम्मानित किया।

साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के शेर दिल जवान फौजी सिपाही इमल्याकुम आओ की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुति सहयोग दीपक केसावलेकर और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। अब दीजिए इजाजत, जय हिंद।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे अकॉर्डियन केपर्स पर रेवा चंद शर्मा की फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं मेरे जीवन साथी और शोर।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ों में शोर फिल्म का गाना। गीत संतोष आनंद ने लिखा था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। अब इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज़ कार्यक्रम समाप्त होता है।

श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharti.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।

जी, विविध भारती का मुंबई केंद्र है, FM 102.8 और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म का गीत, आतिफ असलम की आवाज़ में, इरशाद कामिल के बोल और प्रीतम का संगीत। आतिफ असलम का साथ दिया है चिन्मय श्रीपदा ने।

जी विविध भारती का मुंबई केंद्र है, एफएम 102.8 और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं जावेद अली की आवाज़ के साथ। फिल्म का नाम है राज 3, गीत और संगीत है राशिद खान का

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम का शेष भाग ब्रेक के बाद।

ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं काइट्स फिल्म का गाना के की आवाज में। गीत नासिर फराज का है, संगीत राजेश रोशन का,

आइए अब सुनते हैं अमित मिश्रा और शिल्पा राव की आवाजों में ए दिल है मुश्किल फिल्म का गाना। गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, संगीत से सवारा है प्रीतम ने।

0: ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में केदारनाथ फिल्म का गाना, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत अमित त्रिवेदी का।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द

0: हल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फुक्वाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
2: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
3: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख

0: अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। ये आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
2: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुआओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील है। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रखा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक

मंच पर लाएगा ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सके। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक के गाए कामचोर फिल्म के इस गाने के साथ। गीत इंदिवर का है, संगीत राजेश रोशन का।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में पिघलता आसमान फिल्म का गाना। गीत माया गोविंद ने लिखा है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गाना आत्माराम फिल्म से है। इसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। गीत विश्वेश्वर शर्मा का है, संगीत है शंकर जयकिशन का।

आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में हम सब उस्ताद हैं फिल्म का गाना। गीत असद भोपाली ने लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का,

कार्यक्रम के अंत में सुनिए स्वयंवर फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, गीत गुलजार का है, संगीत राजेश रोशन का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

बिमल रॉय के पिता हेमचंद्र रॉय की पूर्वी बंगाल के सुआपुर में जमींदारी थी, जो आज के बांग्लादेश का हिस्सा है। बचपन की पढ़ाई लिखाई हुई थाना धामराय के अरमानी टोला स्कूल में। बचपन में बिमल दा को चित्रकारी करने और वायलिन बजाने का शौक था। उन दिनों सुआपुर की जमींदारी में दुर्गा पूजा के मौके पर मंचित किए जाने वाले नाटकों में भी बिमल रॉय भाग लिया करते थे। इन्हीं में से एक नाटक था मिस्र कुमारी। 1957-58 में इसी कथा को बिमल दा ने सेल्यूलॉइड पर उतारा था। यह फिल्म थी यहूदी।

बिमलदास जिन दिनों ढाका के जगन्नाथ कॉलेज में पढ़ रहे थे, पिता हेमचंद्र रॉय का देहांत हो गया। जमींदारी की देखभाल करने वाले मैनेजर ने अमानत में खयानत करते हुए जमीन जायदाद हड़प ली और बिमलदास का परिवार सब कुछ लुटाकर खाली हाथ कोलकाता चला आया।

0: वक्त की इस बेरहम मार से घायल बिमलदा को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर परिवार के लिए रोजी रोटी जुटाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। दक्षिण कोलकाता के चक्रबेदिया रोड पर उन्होंने एक किराए का मकान ले लिया और संघर्ष में जुट गए रोजी रोटी के।
1: ये है

बिमल दा रोज ही न्यू थिएटर्स और अन्य स्टूडियोज के चक्कर काटने लगे। बस किराए के पैसे बचाने के लिए पैदल चलते। खैर, न्यू थिएटर्स में बिमल दा संपर्क में आए प्रमथेश बरुआ के, जिन्होंने बिमल दा को फिल्म अधिकार की स्टिल पब्लिसिटी से संबंधित काम की जिम्मेदारी सौंपी। न्यू थिएटर्स में बिमल दा फिर नितिन बोस के सहायक हो गए और न्यू थिएटर्स में ही उन्होंने सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ निर्देशन की बारीकियां सीखी। सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम करते हुए बिमल दा ने न्यू थिएटर्स की जिन फिल्मों को सेल्यूलॉइड पर उतारा वो थी गृहदाह, माया, मुक्ति, बड़ी दीदी, अभिनेत्री और प्रमथेश चंद्र बरुआ निर्देशित देवदास।

0: अब दिल भी।
1: न्यू थिएटर्स के श्रेष्ठतम छायाकारों में शामिल बिमल दा अपने अनुभवों के आधार पर फिल्म निर्देशन में अपनी प्रतिभा को आजमाना चाहते थे। जल्द ही उन्हें मौका मिला और उन्होंने न्यू थिएटर्स के लिए निर्देशित की फिल्म उदेर पौथे। फिल्म की नामावली में स्थापित नाम थे कंपोजर आरसी बोराल और तत्कालीन बांग्ला रंगमंच के नामी कलाकार विश्वनाथ भादुड़ी के। कई लोगों ने इस फिल्म के बुरी तरह फ्लॉप हो जाने की भविष्यवाणी कर डाली। फिल्मों से जुड़े लोगों और समीक्षकों ने भी इसके विरोध में ही विचार व्यक्त किए। 1 सितंबर 1944 को फिल्म उदेर पौथे कोलकाता के चित्रा सिनेमा घर में रिलीज हुई और इस फिल्म ने न्यू थिएटर्स की पहले की सभी फिल्मों की कामयाबी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चित्रा सिनेमा घर में यह फिल्म एक वर्ष तक हाउसफुल चली। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसका हिंदी संस्करण बनाया गया हमराही। इसके बाद बिमल दा ने जो दो और फिल्में निर्देशित की वो बुरी तरह असफल रहीं। फिल्में थीं अनजानगढ़ और मंत्रमुग्धा। न्यू थिएटर्स के लिए उन्होंने आखिरी फिल्म निर्देशित की पहला आदमी, जिसके प्रीमियर के लिए बिमल दा जब मुंबई आए तो दादर के चेतना सिनेमा में उनकी मुलाकात हुई अपने मित्र हितेन चौधरी से, जिन्होंने सावक वाचा और अभिनेता अशोक कुमार को बिमल दा के नाम की सिफारिश की फिल्म निर्देशन के लिए। और इस तरह मुंबई में बिमल दा ने बॉम्बे टॉकीज के लिए पहली फिल्म निर्देशित की माँ। यह फिल्म जिस अमरीकी फिल्म से प्रेरित थी वो थी ओवर द हिल्स। लीला चिटनिस को दी गई मुख्य भूमिका और रोमांटिक लीड में अनुबंधित किया गया तब की एक जूनियर आर्टिस्ट मीना कुमारी को, जिनके बदले बाद में श्यामा को रख लिया गया और उनके नायक बनाए गए भारत भूषण। मुंबई में अपनी इस पहली फिल्म के लिए बिमल दा को मिले कोई 25,000 रुपए। इस बीच अभिनेता अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज से नाता तोड़ चुके थे। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति परिणीता के अधिकार उनके पास थे। अशोक कुमार यानी दादा मुनि ने परिणीता के निर्देशन के लिए बिमल दा को अनुबंधित कर लिया। यह फिल्म बेहद कामयाब रही और बिमल दा की प्रतिभा को मिला सम्मान और सराहना।

0: भारतीय महानगरों में यूरोपीय सिनेमा की चर्चित फिल्में भी दिखाई जाने लगी थी, जिनके माध्यम से भारतीय फिल्मकार परिचित हुए। डीसिका, रोजेलिने और कुरुसावा जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के फिल्मकारों की कृतियों से। एक दिन बिमलदा, ऋषिकेश मुखर्जी और एक दो अन्य साथी मुंबई के इरोस थिएटर में फिल्म रोशमोन देखकर बेस्ट की डबल डेकर बस से मालाड लौट रहे थे। सब खामोश थे। ऋषिदा के मन में सवाल उठ रहा था, ऐसी फिल्म हम क्यों नहीं बना सकते। उन्होंने बिमलदा से अपने मन की बात कही। बिमलदा ने फौरन कहा, लिखेगा कौन। खैर, आपसी बातचीत के बाद तय हो गया कि ऐसी एक फिल्म बनाई जाएगी और इस तरह रोशमोन की प्रेरणा से बेस्ट की डबल डेकर बस में जन्म हुआ बिमल रॉय प्रोडक्शंस का। इस बैनर की पहली फिल्म थी दो बीघा जमीन। फिल्म दो बीघा जमीन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इसी शीर्षक की एक कविता से प्रेरित थी, जिसे लिखा था सुप्रसिद्ध संगीतकार सलिल चौधरी।
1: गुरु तक तक तक तक तगिन तगिन गिन गिन रे, जग जग जग जग

सन 1953 में यह फिल्म केवल 4 हफ्तों के लिए मुंबई के मेट्रो थिएटर में रिलीज की गई, जहां इसके प्रीमियर में आए फिल्म इंडस्ट्री के नामी गिरामी सितारे। फिल्म के प्रीमियर के आंखों देखा हाल की रेडियो के लिए कॉम्पेयरिंग कर रहे थे बलराज दत्त यानी जाने माने अभिनेता सुनील दत्त।

दो बीघा जमीन को हालांकि उदेर पौधे जैसी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस फिल्म की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। चीन और तत्कालीन सोवियत संघ में भी इस फिल्म को सराहा गया। 1954 में कान फिल्म महोत्सव में इसे सोशल प्रोग्रेस के लिए मिला कार्लोवी वेरी पुरस्कार। ब्रिटिश अखबार मैनचेस्टर गार्जियन और न्यू क्रॉनिकल में भी समीक्षकों ने इस फिल्म की भूरी भूरी प्रशंसा की। निरूपा रॉय और बलराज साहनी के अभिनय, शैलेंद्र के गीतों, सलील चौधरी के संगीत और बिमल दा के निर्देशन ने दो बीघा जमीन को बना दिया हिंदी सिनेमा का एक मास्टरपीस।

लेकिन नौकरी असफल रही। बिमलदा अपने बैनर के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। 1954 में बिमलदा ने अपने दोस्त हितेन चौधरी के लिए फिल्मांकन किया बिराज बहू का। अपने बैनर के लिए बिमलदा ने शरद बाबू के उपन्यास देवदास के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसी उपन्यास पर प्रमथेश बरुआ की फिल्म का छायांकन बिमलदा ने ही किया था, जिसमें नायक थे कुंदनलाल सहगल।

अपने बैनर तले निर्मित की जाने वाली फिल्म देवदास में पारो और चंद्रमुखी की भूमिकाओं के लिए विचार किया गया नरगिस और मीना कुमारी के नामों पर, लेकिन चुना गया सुचित्रा सेन और वैजयंतीमाला को। नायक की भूमिका के लिए चुने गए दिलीप कुमार। चुन्नीलाल की भूमिका दी गई मोतीलाल को। गीतकार थे साहिल लुधियानवी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।

0: बिमल रॉय प्रोडक्शंस का भविष्य इस फिल्म के जरिए दांव पर लगा हुआ था। '58 में निर्मित पुनर्जन्म पर आधारित फिल्म मधुमती बेहद कामयाब रही और मधुमती ने बिमल रॉय प्रोडक्शंस को गहरे आर्थिक संकट से निकालकर किनारे पहुंचा दिया।
1: मैं तो

1959 में निर्मित बिमलदा की फिल्म सुजाता एक और बेहद खूबसूरत और मासूम सी फिल्म है। सुनील दत्त और अभिनेत्री नूतन की जोड़ी के काम को इस फिल्म में बहुत पसंद किया गया। फिल्म सुजाता बिमलदा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है।

बिमल दा ने 1960 में बनाई फिल्म परख, जो लीक से हटकर फिल्म थी और इसे भी लोगों ने खूब पसंद किया।

0: बंदिनी बिमलदा की एक और बेहतरीन कृति है। नूतन, अशोक कुमार और धर्मेंद्र अभिनीत ये फिल्म हिंदी सिनेमा की अनमोल धरोहर है। इसी फिल्म से बतौर गीतकार शुरुआत की थी गुलजार ने।
1: गोरा गोरा

और बंगाल फैमी। बतौर कैमरामैन बिमल दा ने जिन कथा फिल्मों का छायांकन किया उनके नाम हैं मीरा, गृहदा, नाला थांगल, देवदास, माया, मुक्ति, चम्बेदी कली, बड़ी दीदी, अभिनेत्री, उदय पौथे और हमराही। हमराही उदय पौथेर का ही हिंदी संस्करण थी। बिमल दा की अधूरी फिल्म सहारा को उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने चैताली नाम से पूरा किया। बिमल दा एक और फिल्म बनाना चाहते थे, अमृत कुंभेर सौंधाने, लेकिन यह फिल्म एक सपना बनकर ही रह गई। 8 जनवरी सन 1966 को बिमल दा की जिंदगी की रील चलते चलते थम गई। जिंदगी मौत की बंदिनी बन गई। बिमल दा नहीं रहे, लेकिन अपनी महान कृतियों के रूप में वो जो कुछ छोड़कर गए हैं उसके लिए सिनेमा उनका सदैव ऋणी रहेगा।

विमलदा ने बाहर के जिन बैनरों की फिल्में निर्देशित की वो थी अनजानगढ़, मंत्रमुग्धा, जिसमें उनके सह निर्देशक थे सुदीश घटक। इनके अलावा पहला आदमी, माँ, परिणीता, विराज बहु, बाप बेटी और यहूदी। बतौर कैमरामैन और सहायक कैमरामैन उनकी डॉक्यूमेंट्रीज थी हाउ केरोसिन टिन्स आर मेड, ग्रैंड ट्रंक रोड,

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मन की उड़ान धरती और आसमान के परे है। मन की उड़ान शहरों, समंदरों, पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से। बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन, तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता रहा सदियों से। सदियों के सफर में तुम हो हमारे मन का।

तुम्हें देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना, होठों में उंगली दबाकर दूर कहीं देखते चले जाना।

तुम्हारे साथ मौसम सुहानी हो जाती है, तुम्हारे साथ बारिश गुनगुनाती है, तुम्हारे साथ ठंड बहुत अलग है और तुम्हारे साथ गर्मियां भी चमकीली हैं। ये बारिश तुम्हारे बिना बस बरसता हुआ पानी है। पानी और बारिश में फर्क होता है।

कहीं कोई आवाज नहीं हुई, कुछ टूटा जरूर पर बेआवाज। दिल टूटने की आवाज नहीं होती, दिल बेआवाज टूटता है। चेहरों पर नकली मुस्कान का लेबल चिपकाए जीते रहते हैं लोग, एहसास नहीं होने देते कि उनका दिल

समय सिकुड़ जाता है कभी और कभी फैल जाता है। विज्ञान इसे भली न माने, पर देखो ना, तुम्हारे साथ के लम्हे कितने कम हैं और तुम्हारे बिना कितना लंबा हो जाता है वक्त। वक्त का ये सिकुड़ना और फैलना बेचैन करता है हमें, पर थाम भी तो नहीं सकते हम वक्त को। ये वो मुसाफिर है जिसे बस चलते ही जाना है।

0: दुनिया की रीत है, प्यार की राहों में दुनिया अड़चने खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों, रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए, इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी उनका इंतजार करती है।
1: ओरे माजी